अभी आप सुन रहे थे तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। गायक कलाकार थे लता मंगेशकर, भूपेंद्र सिंह, ए हरिहरन और साथी संगीत रचना सतीश भाटिया की। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून इन हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ। आइए अब सुनते हैं देशगान।

0: राजेंद्र राणा और साथियों की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे देश कान और अब FM शिमला पर वक्त हो चला है FM न्यूज़ हेडलाइंस का।
1: नमस्कार, FM न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं पूनम भारद्वाज।

0: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय आह्वान पर लोकभवन शिमला को ईंधन संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने बताया कि लोकभवन शिमला में प्रत्येक रविवार को पेट्रोल फ्री संडे के रूप में मनाया जाएगा, जिसके तहत रविवार के दिन कोई भी सरकारी वाहन ईंधन का उपयोग नहीं करेगा। राज्यपाल ने अपने आधिकारिक काफिले के वाहनों को तत्काल प्रभाव से आधा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संकट की समाप्ति और वैश्विक ईंधन की कीमतों के स्थिर आने तक वे किसी भी सरकारी कार्य के लिए राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर का उपयोग नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य के विकास में पेंशनरों और कर्मचारियों के अमूल्य योगदान को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। वे कल शिमला में उनसे मिलने आए हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने विभाग अध्यक्षों को 4 दिन के भीतर चतुर्थ श्रेणी के पेंशनरों के बकाया का भुगतान व पेंशन भोगियों और कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी मामलों को 4 दिन में निपटाने के लिए कहा है। प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला स्थित कमला नेहरू अस्पताल को IGMC शिफ्ट करने पर रोक लगा दी है। इस मामले में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की हिमाचल इकाई द्वारा दायर की गई एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया। अदालत ने सरकार से इस संबंध में विस्तृत जवाब भी मांगा है। कर्नाटक के मैसूर में आयोजित विधानमंडल निकायों के कार्य संचालन और प्रक्रिया नियमों के एक समान मॉडल विषय पर आधारित बैठक कल संपन्न हो गई। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इस बैठक में हिस्सा लिया और बताया कि बेहद महत्वपूर्ण विषय पर गहन व विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि यह समिति 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट लोकसभा सचिवालय को सौंपेगी। कुलदीप पठानिया ने कहा कि यदि 28 राज्यों सहित 8 केंद्र शासित प्रदेशों में संसदीय प्रणाली के कार्य संचालन में एक रूपता आ जाए तो उसके दूरगामी परिणाम होंगे। इस अंक में इतना ही, नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम शिमला।
1: और अब आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
3: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
2: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी। ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे।
4: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
5: People to people connect.
2: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो

0: दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देश ब्रिक्स A20 लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर आधारित सत्र में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर सत्र आयोजित किया जाएगा। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। सबसे अधिक 15 लोगों की जान भदोही जिले में गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने यह मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से समावेशी विकास विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह है आकाशवाणी FM शिमला 103.7 MHz पर और अब समय है चिंतन का।

एक शहर में चार साधु आए। एक साधु शहर के चौराहे में जाकर बैठ गया, एक घंटाघर में जाकर बैठ गया, एक कचहरी में जाकर बैठ गया और एक शमशान में जाकर बैठ गया। चौराहे पर बैठे साधु से लोगों ने पूछा, बाबा जी आप यहां आकर क्यों बैठे हो? क्या और कोई बढ़िया जगह नहीं मिली आपको? साधु ने उत्तर दिया, यहां चारों दिशाओं से लोग आते हैं और चारों दिशाओं में चले जाते हैं। किसी आदमी को रोको तो वो कहता है रुकने का समय नहीं है, जरूरी काम पर जाना है। अब यह पता नहीं लगता कि जरूरी काम किस दिशा में है। सांसारिक कार्यों को भोगते भोगते जीवन बीत जाता है, हाथ कुछ नहीं लगता। ना तो सांसारिक कार्य पूरे होते हैं और ना भगवान का भजन ही होता है। इसलिए हमें यह जगह बैठने के लिए बढ़िया दिखती है जिससे सावधानी बनी रहे। घंटाघर में बैठे साधु से लोगों ने पूछा, बाबा जी आप यहां क्यों बैठे हो? साधु ने कहा, घड़ी की सुइयां दिन भर घूमती रहती हैं पर 12 बजते ही हाथ जोड़ देती हैं कि बस हमारे पास इतना ही समय है, अधिक कहां से लाएं। घंटा बजता है तो वो बताता है कि तुम्हारी उम्र में से 1 घंटा कम हो गया। जीवन का समय सीमित है, प्रतिक्षण आयु नष्ट हो रही है और मौत नजदीक आ रही है। अतः सावधान होकर अपना समय भगवान

भगवान के भजन में और दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। इसलिए साधु के बैठने की ये जगह हमें बढ़िया दिखती है, जिससे सावधानी बनी रहे। अब कचहरी में बैठे साधु से लोगों ने पूछा, बाबा जी आप यहां क्यों बैठे हो? साधु ने कहा, यहां दिन भर अपराधी आते हैं और पुलिस उनको डंडे मारती है। मनुष्य पाप तो अपनी मर्जी से करता है, पर दंड दूसरे की मर्जी से भोगना पड़ता है। अगर वो पाप करे ही नहीं तो फिर दंड क्यों भोगना पड़े? इसलिए साधु के बैठने की ये जगह बढ़िया दिखती है, जिससे सावधानी बनी रहे। आखिर में शमशान में बैठे साधु से लोगों ने पूछा, बाबा जी आप यहां क्यों बैठे हो? साधु ने उत्तर दिया, दुनिया में कोई भी आदमी सदा नहीं रहता, सबको एक ना एक दिन यहां आना ही पड़ता है। यहां आने के बाद फिर आदमी कहीं नहीं जाता, यहां आकर उसकी यात्रा समाप्त हो जाती है। कोई भी आदमी यहां आने से बच नहीं सकता, अतः जीवन रहते रहते परम लाभ की प्राप्ति कर लेनी चाहिए, जिससे फिर संसार में आकर दुख ना पाना पड़े। इसीलिए मुझे ये जगह बैठने के लिए बढ़िया दिखती है, जिससे सावधानी बनी रहे।

0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, वाचक थे डॉक्टर हुकम शर्मा।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।
0: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप ट्यून इन है आकाशवाणी FM शिमला के साथ। और आज उस फ्रीक्वेंसी पर आप कौन से प्रोग्राम्स किस समय सुन पाएंगे, इस बारे में अब आपको जानकारी दे दें।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:15 पर आप सुनेंगे जानकारी और मनोरंजन का पिटारा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला। FM न्यूज़ हेडलाइंस के साथ खुद को अपडेट कीजिए। सुबह 7:57 पर, 8:30 पर और 9:57 पर।

देश और दुनिया के ताजा समाचार सुनिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रातः 8 बजे समाचार प्रभात, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, प्रातः 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज और रात 9 बजे न्यूज एट 9। हिंदी में समाचार का वक्त रहेगा दोपहर 12 बजे, दिन में 1 बजे, दिन में 2:15 और रात्रि 11 बजे। अंग्रेजी में समाचार अब सुन पाएंगे दोपहर 12:05 पर, दिन में 1:05 पर, शाम 7:05 पर और रात 11:05 पर। आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे सुबह 9:20 पर, 11 बजे, दिन में 3 बजे, शाम 6 बजे और रात 7:45 पर।

आज सुबह 8:45 पर FM शिमला पर आप सुनेंगे प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। HPV वैक्सीन विषय पर डॉक्टर अर्चित शर्मा से आप सुनेंगे सपना ठाकुर की बातचीत।

12:10 पर, दिन में 1:10 पर, रात 8:30 पर और रात 9:30 पर। हिमाचल प्रदेश की एक सुंदर पर्यटन नगरी की सैर पर चलिएगा हमारे साथ कुदरत के रंग प्रोग्राम के माध्यम से सुबह 9:30 पर। FM शिमला पर सदाबहार गाने आप एंजॉय कर सकते हैं सुबह 10 बजे और रात 10:30 पर। पुराने फिल्मी गाने आप सुन सकते हैं सुबह 11:05 पर, दिन में 3:10 पर सुनिए ओल्ड हिट्स और रात 8 बजे भूले बिसरे गीत।

संगीत के विविध रंगों से सजा सबरंग कार्यक्रम पेश किया जाएगा दिन में 2 बजे। यंग लिसनर्स के लिए प्रोग्राम युववाणी लेकर हाजिर होंगे दिन में 3:30 पर। शाम 4 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स।

बॉलीवुड की एंटरटेनिंग मूवीज, उनसे जुड़े किस्से, कहानियां और गाने एंजॉय कीजिए एक फिल्म से प्रोग्राम में रात 9:15 पर। FM शिमला पर गजलों की रुमानी महफिल सजेगी रात 10:00।

0: लोक संगीत का आनंद आप ले सकते हैं सुबह 8:32 पर, 11:30 पर, दिन में 2:30 पर, शाम 5 बजे सुनिए मंडियाली लोकगीत और शाम 5:20 से आप सुनेंगे विभिन्न हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम। तो ये है एफएम शिमला के आज के खास प्रोग्राम, जिन्हें एंजॉय करने के लिए आपको ट्यून इन रहना है हमारे साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।
1: सुरीला सफर संगीत का, साथ हो मनमीत का, घर आंगन में महके जो, क्या कहना उस प्रीत का।

0: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। मस्त चुनो, मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप जुड़े हैं एफएम शिमला के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर और ये वक्त है गुड मॉर्निंग शिमला प्रोग्राम का।

इतिहास के पन्नों से वर्तमान की सुर्खियों तक, हिल्स क्वीन के आकर्षण से मौसम के मिजाज तक, यहाँ बातें भी होती हैं ढेर सारी, गाने और तराने भी हैं बेशुमार। आपकी जानी पहचानी फ्रीक्वेंसी एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़, तो यूं ही ट्यून इन रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

कुदरत का एक बड़ा ही सरल सा नियम है दोस्तों, खेत में अगर बीज ना डाले जाएं तो प्रकृति उस जगह को घास फूस से भर देती है। ठीक उसी तरह इंसान के दिमाग में अगर सकारात्मक विचार ना भरे जाएं तो वहाँ नेगेटिव थॉट्स अपनी जगह बना लेते हैं, और इसीलिए हर दिन यहाँ FM शिमला पर हमारे गुड मॉर्निंग भी एक पॉजिटिव थॉट के साथ शुरू होती है। और आज का कोट ऑफ द डे है कि इंसान के शब्दों पर नहीं उसके इरादों पर गौर कीजिए, कोई डांट कर आपका भला चाहता है तो कोई मुस्कुरा कर जड़ काटता है, समय का इंतज़ार कीजिए वो नकाब भी हटाता है और सच्चाई भी बताता है। तो इसी पॉजिटिव मैसेज के साथ बातों का ये सिलसिला शुरू होता है। ये है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला, मैं हूँ आपके साथ स्वाति डोगरा, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए FM शिमला के साथ।

0: आकाशवाणी के साथ जुड़िए और अपने उत्पाद और सर्विसेज यानी सेवाओं से जुड़े अपने कारोबार के बारे में सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें।
1: शुभवाणी, लाभवाणी, जनजन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।
2: आप ट्यून इन है FM शिमला के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला। इतिहास से वर्तमान का सफर तय करती तारीखें कई महत्वपूर्ण घटनाओं की साक्षी बनती है। तो आइए अब जानते हैं 14 मई से जुड़े कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में। 14 मई 1908 में चार्ली फर्नास नामक व्यक्ति ने पहले हवाई जहाज यात्री के रूप में उड़ान भरी। उत्तरी कैरोलिना में विल्बर राइट के साथ उन्होंने उड़ान भरी थी। राइट ब्रदर्स के मैकेनिक के रूप में काम करने वाले चार्ली ने कई छोटी उड़ानें भरी, जिनमें से एक उड़ान 2 मील से भी लंबी थी और इसी उड़ान की वजह से चार्ली फर्नांस विश्व के वो पहले पैसेंजर बन गए जिन्होंने हवाई उड़ान भरी। दुनिया को अपने आविष्कारों से रोशन करने वाले थॉमस एल्वा एडिसन ने 1879 में यूरोप की एडिसन कंपनी की स्थापना की। एडिसन इलेक्ट्रिक एल्यूमिनेटिंग कंपनी नामक इस कंपनी की स्थापना शुरुआती विद्युतीकरण और अपने आविष्कारों को व्यावसायिक रूप देने के लिए की गई थी। 14 मई 1929 को थॉमस एल्वा एडिसन के सम्मान में पोस्टल स्टैंप भी जारी की गई थी।

गुड मॉर्निंग शिमला प्रोग्राम आप सुन रहे हैं एफएम शिमला पर। हिस्ट्री ऑफ द डे की हम बात कर रहे थे और अब बात करें साल 1973 की, तो उस वर्ष में अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने सेना में महिलाओं के समान अधिकार को मंजूरी दी। इस फैसले का मतलब ये था कि महिलाओं को पुरुषों के साथ ही सेना में सेवा देने का अधिकार मिलेगा। 1796 में पहली बार चिकन पॉक्स की वैक्सीन 8 साल के एक बच्चे को दी गई। इंग्लैंड के डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने दुनिया की पहली चिकन पॉक्स वैक्सीन बनाई थी। उन्हें इम्यूनोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। उनके द्वारा बनाई गई वैक्सीन चिकित्सा विज्ञान में नई क्रांति लेकर आई थी। 14 मई 1973 को अमेरिका ने अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन स्काई लैब लॉन्च किया, जो पहला मानवयुक्त अनुसंधान स्टेशन था। और भारतीय इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि साल 1954 में तत्कालीन भारतीय लोकसभा अध्यक्ष की घोषणा के बाद हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम दिया गया। 1992 में भारत ने गैर कानूनी गतिविधियों संबंधी अधिनियम के तहत लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी लिट्टे पर प्रतिबंध लगा दिया। और 1879 में 463 भारतीय गिरमिटिया मजदूरों का पहला समूह फिजी पहुंचा। साल 2010 में भारत और रूस के मध्य रक्षा, परमाणु ऊर्जा, व्यापार और निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि 22 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये थी आज की तारीख से जुड़े कुछ रोचक ऐतिहासिक तथ्य। प्रोग्राम में और क्या है खास जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं जी, ये जानने के लिए यूं ही ट्यून इन रहिए हमारे साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम शिमला पर।

ये गाने आप एंजॉय कर रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर. प्रोग्राम है ये गुड मॉर्निंग शिमला. और अब कार्यक्रम में जिक्र उन फेमस इंडियंस का जिनका आज जन्मदिन है. उन मशहूर भारतीय हस्तियों में शामिल है मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति छत्रपति संभाजी, पद्मभूषण से सम्मानित मशहूर हिंदी और बांग्ला फिल्मों के निर्देशक मृणाल सेन, और 2017 की मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर भी आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. और आज अगर हमारे श्रोता साथी अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं या फिर अपना जन्मदिन आज मना रहे हैं, तो आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं. और 14 मई की ये जो तारीख है आपकी लाइफ

0: में कुछ हैप्पी मोमेंट्स लेकर आती है जिन्हें आज आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: प्रदेश के सशक्त प्रचार प्रसार माध्यम आकाशवाणी पर आप अपने कारोबार में ला सकते हैं बढ़ोतरी।
2: यदि आप जुड़े हैं किसी स्टार्टअप या मेक इन इंडिया या किसी पंजीकृत सेल्फ हेल्प ग्रुप से, तो आप आकाशवाणी पर सस्ते दामों में विज्ञापनों के माध्यम से अपनी मेहनत को जन जन तक पहुंचाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं। शुभवाणी, लाभ वाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।

डॉक्टर एपीजे कलाम ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। गौर करें तो उनकी कही ये बात हर उस व्यक्ति के लिए इंस्पिरेशन है जो कड़ी मेहनत से अपने ड्रीम्स या अपने लाइफ गोल्स को अचीव करना चाहते हैं और तब तक चैन से नहीं सो पाते हैं जब तक अपनी मनचाही उपलब्धि हासिल ना कर लें। लेकिन सोते समय ख्वाब देखना ह्यूमन ब्रेन की एक नॉर्मल प्रक्रिया

सकते हैं, लेकिन अब एक ऐसी तकनीक आ गई है जिससे आप अपने ड्रीम्स भी कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लेखन से लेकर कैलकुलेशन तक ना जाने क्या कुछ करवाया जा सकता है, और अब इसकी मदद से आप सपनों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। एक स्टार्टअप कंपनी ने एक ऐसा डिवाइस लॉन्च किया है जिसकी मदद से आप अपनी इच्छा अनुसार सपने देख सकते हैं। इस डिवाइस को सिर पर लगाया जाता है जिससे एक तार जुड़ा होता है। इस नई तकनीक से लूसिड ड्रीम को ट्रिगर किया जा सकता है, जो एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें आप जानते हैं कि आप ख्वाब देख रहे हैं और उसे कंट्रोल किया जा सकता है। आमतौर पर जब आप ख्वाब देख रहे होते हैं ना, तो उस समय लूसिड अवेयरनेस की कमी होती है, और ड्रीम्स कंट्रोल करने वाला ये जो डिवाइस है, इसमें कुछ सेंसर भी लगे हैं जिनकी मदद से मेंटल एक्टिविटी को समझने में आसानी होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नई तकनीक के साथ बना ये डिवाइस सपनों की याददाश्त, क्लैरिटी और उन्हें कंट्रोल करने की ताकत रखता है। नए ज़माने के साथ बदलती इस दुनिया में हर दिन कोई ना कोई नया आविष्कार होता रहता है दोस्तों, जो इंसान की क्षमताओं और संभावनाओं को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाता है, जिसने हमारी ज़िंदगी को ना थोड़ा और सरल बना दिया है। लेकिन इन सब के बीच हमें ये नहीं भूलना है कि इन नई तकनीकों का इस्तेमाल हमें समझदारी से करना है और इनके दुरुपयोग से बचना है। गुड मॉर्निंग शिमला प्रोग्राम आप सुन रहे हैं एफएम शिमला पर, और यहाँ पर बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, साथ ही चलते रहेंगे ये बढ़िया बढ़िया से गाने। तो सुनते रहिए एफएम शिमला, मुस्कुराते रहिए यूं ही।

ये जो बिना पास के अगर आप प्रतिबंधित और सील्ड रोड पर वाहन लेकर के जाते हैं, नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो आपको भारी जुर्माना राशि देनी पड़ सकती है और जेल जाने का भी जो है प्रावधान किया गया है। तो जी, अगर आप शिमला में ट्रैवल कर रहे हैं, शिमला की ओर ट्रैवल कर रहे हैं, हमारे जो शिमला आइट्स हैं वो, उनको भी मैं ये बता दूं कि ये जो नया जो ये रूल आया है, या फिर ये कहें हम कि ये जो नई जुर्माने की जो नई राशि बढ़ा दी गई है, इसके बारे में ज़रूर गौर करें अगर आप अपना व्हीकल लेकर के जाते हैं। और जो टूरिस्ट बाहर से यहाँ पर घूमने आते हैं, उनके लिए ख़ास तौर पर हिदायत है कि आप जब कभी भी किसी भी स्टेट में आप अपना पर्सनल व्हीकल लेकर घूमने जाएं, तो वहाँ के जो ट्रैफिक रूल्स हैं ना, उनके बारे में आप ज़रूर पढ़ लें, ताकि आपको किसी सिटी में आकर या किसी दूसरे राज्य में जाकर कोई जो है ट्रैफिक रूल्स के रिगार्डिंग कोई आपसे गलती ना हो जाए और आपको जो है कुछ फाइनेंशियल लॉस ना हो, यानी आपको कोई जुर्माना ना भरना पड़े। बहरहाल, इसी इन्फॉर्मेशन के साथ गुड मॉर्निंग शिमला प्रोग्राम में आज बस इतना ही। प्ले कर रही हूँ प्रोग्राम का ये आखिरी गाना, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

ये गाने आप एंजॉय कर रहे हैं FM शिमला पर, प्रोग्राम है ये गुड मॉर्निंग शिमला। और जी हिल्स क्वीन के जो आकर्षण है ना, वो टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। यहाँ पर मौसम के अलावा भी बहुत कुछ होता रहता है। शिमला अगर आजकल के दिनों में आप घूमने आ रहे हैं तो गेयटी थिएटर में आर्ट एग्जीबिशन लगी है, वो आप देख सकते हैं। आज उसका आखिरी दिन है। और इसके अलावा हमारे वो सैलानी साथी जो शिमला के ठंडे मौसम का जो है, इस मौसम को एंजॉय करने के लिए शिमला आते हैं और अपने व्हीकल्स में आते हैं, उन सभी को मैं बता दूं कि शिमला में प्रतिबंधित और सील्ड रोड पर अगर आप ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं तो अब आपको भारी भरकम जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माने की जो राशि है वो बढ़ा दी गई है। और

0: इसी गाने के साथ गुड मॉर्निंग शिमला प्रोग्राम में आज बस इतना ही। आप सुन रहे हैं एफएम शिमला और आपको हम एक बार फिर से बता देते हैं कि आज सुबह 8:45 पर एफएम शिमला पर आप सुनेंगे प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर, एचपीवी वैक्सीन विषय पर डॉक्टर अर्चित शर्मा से बातचीत करेंगी सपना ठाकुर। एफएम शिमला के प्रोग्राम्स एंजॉय करने के लिए यूं ही ट्यून इन रहिए हमारे साथ। और अभी एफएम शिमला पर वक्त हो चला है एफएम न्यूज़ हेडलाइंस का।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं पूनम भारद्वाज। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच की प्रक्रिया पूरी हो गई है। जांच के दौरान 742 नामांकन पत्र खारिज किए गए हैं। अब 85,462 प्रत्याशी चुनावी मैदान में रह गए हैं। आज और कल नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि रहेगी। 15 मई को ही प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। नगर निगम और शहरी निकायों के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता आज धर्मशाला में चुनाव प्रचार करेंगे। इस दौरान कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र भी जारी करेगी। इसमें धर्मशाला के विकास के लिए आगामी रोड मैप पेश किया जाएगा। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में आज शाम को पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होगा। एचपीसीए और पंजाब किंग्स के प्रबंधन ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। मैच शाम 7:30 पर शुरू होगा। मंडी नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। भाजपा नेता व विधायक अनिल शर्मा ने कल संकल्प पत्र जारी करते

0: हुए कहा कि पार्टी का लक्ष्य मंडी को आधुनिक, सुरक्षित, व्यवस्थित और पर्यटन की दृष्टि से विकसित शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि ये संकल्प पत्र केवल घोषणाओं का दस्तावेज नहीं बल्कि आने वाले 5 वर्षों में मंडी नगर निगम के विकास की ठोस कार्य योजना है। प्रदेश में नगर निगम व शहरी निकायों के चुनाव के लिए 17 मई को होने वाले मतदान को लेकर निर्वाचन विभाग द्वारा सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में कल राज्य के विभिन्न स्थानों पर चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को मतदान प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न चरणों की विस्तृत जानकारी दी गई। करीब 16,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित बारालाचा ला दर्रे से होकर गुजरने वाला दारचा सरचू मार्ग हल्के वाहनों के लिए कल खोल दिया गया है। लाहौल स्पीति जिला प्रशासन और सीमा सड़क संगठन की 70 आरसीसी इकाइयों के संयुक्त प्रयासों के इस महत्वपूर्ण मार्ग को यातायात के लिए बहाल किया गया। उपायुक्त किरण बढ़ाना ने बताया कि अगले 3 दिन तक यदि मौसम और सड़क की स्थिति सामान्य रही तो इस मार्ग को भारी वाहनों की आवाजाही के लिए भी शुरू किया जाएगा। इस अंक में इतना ही, नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: और अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
3: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
4: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
5: यूएई हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल यूएई भारत के लिए कच्चे तेल का 4था सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। एलएनजी के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5 MMTPA LNG की आपूर्ति की जाएगी।

0: MMPPA-LNG to India.
1: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच आबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
2: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
3: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
2: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमरीका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
4: आलू, प्याज, सब्जियां, फल, खाद्यान्न और तिलन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी लाभ पहुँचाएगा। अब किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
7: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
2: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
8: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5,

0: और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेचिंग पहुंच गए हैं। 2 दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमेरिकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
2: अमेरिकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमेरिका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की यह पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराइकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच कटौती नहीं, स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और 1 दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क शेष से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि यह अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है, सीबीआई ने मारे कई जगह छापे, एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, 4 और गिरफ्त।

0: लगातार 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है, तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है, धान का समर्थन मूल्य 72 रुपए बढ़ाकर 2441 रुपए किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले यूएई जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार, ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करें। पत्र के अनुसार, दिल्ली बनी केंद्र, भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप, हुड्डा के गढ़ से लेकर तीनों निगमों तक भाजपा का दबदबा, पीएम मोदी ने जताया आभार। लोकसत्ता की सुर्खी है, सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल बढ़ा। देशबंधु ने महंगाई का एक और झटका शीर्षक से लिखा है, अमूल ने बढ़ा दिए दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर। दैनिक जागरण की सुर्खी है, 12वीं में अव्वल बेटियां ही बेटियां, पत्र के अनुसार सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियां स्क्रीन पर जांची गई, 7 साल में सबसे कम रहा रिजल्ट।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। 2-day meeting of BRICS foreign ministers to begin in New Delhi today. Assam government to introduce Uniform Civil Code Bill in State Assembly on 26th of this month. India bans export of sugar until September this year to cool domestic prices. West Bengal government lifts all restrictions on interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, food grains and other essential commodities. Heavy rain and dust storm leaves 60 people dead across Uttar Pradesh. Praveen Sood gets 1-year extension as CBI director. And Virat Kohli slams record 9th IPL century as Royal Challengers Bengaluru beat Kolkata Knight Riders by 6 wickets in Raipur. And now the news in detail. A 2-day meeting of BRICS foreign ministers will begin today in New Delhi. The meeting will be chaired by External Affairs Minister S. Jayashankar. BRICS foreign ministers and heads of delegation from member and partner countries will participate in the meeting. They will also call on Prime Minister Narendra Modi. Global leaders have arrived in the national capital ahead of the BRICS foreign ministers meeting. The leaders who arrived here yesterday include Foreign Minister of Iran, Syed Abbas Araghchi, Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Thailand, Sihasak Phuangketkyo, Foreign Minister of Cuba, Bruno Rodriguez Perella, and Deputy Minister of Foreign Affairs of Vietnam, Nguyen Minh Hang. Other leaders who arrived were Foreign Minister of Malaysia, Dato Seri Utama Muhammad bin Haji Hassan, and UAE's Minister of State, Ministry of Foreign Affairs, Khalifa Shaheen Al-Marar. A report.
3: During the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. On the second day, BRICS member and partner countries will participate in a session themed BRICS at 20, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. This will be followed by a session on the reforms of global governance and multilateral system. The BRICS foreign ministers held their last meeting on the margins of 80th session of the United Nations General Assembly on 26 September 2025. The meeting was chaired by India in its capacity as the incoming BRICS chair for 2026. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
2: The Assam government will introduce the Uniform Civil Code or UCC bill in the State Assembly on the 26th of this month. Chief Minister Himanta Biswa Sarma made the announcement while addressing media after chairing the first cabinet meeting of his second term as Chief Minister. Mr. Sarma said, a special session of the Assam Assembly will be held from the 21st to 26th of May, during which the newly elected

0: U.S. President Donald Trump given a red carpet welcome in China. The AsianAid carries his picture during the welcome ceremony. The paper headlines, Trump in China on three-day visit to hold Xi talk on Iran war and trade. The Times of India writes, dealmaker and dragon, Trump seeks to do business with Beijing. The Hindu in its editorial title, Testing Troubles, writes that leaks and breaches have destroyed the National Testing Agency's credibility. The K. Radhakrishnan Committee, which was constituted to recommend reforms in the examination process, recommended restructuring of the NTA and creating strong institutional linkages with state and district authorities in order to produce a secure test administration apparatus. And finally, the Times of India writes, in a rare and emotional moment during proceedings linked to passive euthanasia, the Supreme Court praised the family of Harish Rana for donating his corneas and heart valve after permission was granted to withdraw life support, observing that his life continues in others through the noble act. And with that, it's back to you, Saira.
1: Thanks, Subhadra. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Two-day meeting of BRICS foreign ministers to begin in New Delhi today. Assam government to introduce Uniform Civil Code Bill in State Assembly on 26th of this month. India bans export of sugar until September this year to cool domestic prices. West Bengal government lifts all restrictions on interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, food grain and other essential commodities. Heavy rain and dust storm leaves 60 people dead across Uttar Pradesh. Praveen Sood gets 1 year extension as CBI director. And Virat Kohli slams record 9th IPL century as Royal Challengers Bengaluru beat Kolkata Knight Riders by 6 wickets in Raipur. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and NewsOnAir app. And with that, we end the morning news. Have a great day.
2: मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी एफएम शिमला और अब आप सुनेंगे एफएम न्यूज हेडलाइंस।
3: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं पूनम भारद्वाज। राजधानी शिमला में बंधित और प्रतिबंधित मार्गों पर ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब भारी जुर्माना लगेगा। बिना परमिट प्रतिबंधित और सील्ड रोड पर वाहन चलाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना होगा। नियमों के उल्लंघन पर जेल का भी प्रावधान किया गया है। वहीं सड़कों के परमिट की फीस को भी बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में विधि विभाग ने कल अधिसूचना जारी कर दी। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए एचआरटीसी की करीब 400 बसें चुनावी ड्यूटी पर लगाई जाएंगी। राज्य चुनाव आयोग ने निगम प्रबंधन को पत्र लिखकर बसों की मांग की है। निर्वाचन आयोग ने निगम प्रबंधन से चुनाव ड्यूटी पर भेजी जाने वाली सभी बसें अच्छी स्थिति वाली भेजने को कहा है, ताकि दुर्गम और दूरदराज के क्षेत्रों में किसी प्रकार की तकनीकी खराबी से मतदान प्रक्रिया प्रभावित न हो। वहीं दूसरी तरफ एचआरटीसी ने भी आयोग से बसों की एवज में कुल राशि का 50% एडवांस जमा करवाने की मांग की है। राजधानी शिमला के कच्ची घाटी में कल एक शोरूम में आग लगने से कई वाहन जलकर नष्ट हो गए। अग्निशमन विभाग की टीम की कड़ी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस घटना में लाखों की संपत्ति को नुकसान हुआ है, हालांकि कोई जानी नुकसान नहीं है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। यह प्रश्नोत्तरी अगले महीने आयोजित होने वाली सीमावर्ती ग्राम सहभागिता कार्यक्रम में युवाओं की भागीदारी के लिए चयन का पहला चरण है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। राज्य पथ परिवहन निगम के चालकों व परिचालकों ने वेतन मिलने के बाद अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। हालांकि निगम की चालक व परिचालक यूनियन के अध्यक्ष मानसिंह ने चेतावनी दी है कि अगर हर महीने की 1 तारीख को कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला तो 2 तारीख से वे आगामी सेवाएं नहीं देंगे। इस अंक में इतना ही। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे एफएम न्यूज हेडलाइंस 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप ट्यून इन एफएम शिमला के साथ और ये वक्त है लोक संगीत कार्यक्रम का। तो कार्यक्रम का शुभारंभ इस लोक भजन के साथ आवाज़ कमलेश ठाकुर की।

0: शुभ वाणी, लाभ वाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी पर आप अपने जिले की, अपनी बोली में अपने व्यवसाय कारोबार के बारे में विज्ञापनों के माध्यम से सस्ते दामों पर प्रचार प्रसार करवा सकते हैं।
0: जी हाँ, आकाशवाणी शिमला पर शाम 4:20 से 7:05 तक प्रसारित होने वाले विभिन्न बोलियों के कार्यक्रमों में विज्ञापनों के प्रसारण हेतु आकाशवाणी शिमला से संपर्क करें।
1: नियम और शर्तें लागू।

0: नरोत्तम और साथियों की आवाज़ों में अभी आपने सुना ये लोकगीत, और इसी के साथ अभी के लिए लोक संगीत कार्यक्रम में बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून इन हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। एचपीवी वैक्सीन विषय पर डॉक्टर अर्चित शर्मा से बातचीत कर रही हैं सपना ठाकुर।
1: नमस्कार, रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम के आज के संग में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। आज हम बात करेंगे एचपीवी वैक्सीन की, ये क्यों जरूरी है, किस उम्र में लगानी चाहिए और इससे क्या फायदे होते हैं। इस विषय को लेकर आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर अर्चित शर्मा। आप इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। डॉक्टर अर्चित शर्मा, स्टूडियो में आपका स्वागत है। डॉक्टर अर्चित, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एचपीवी है क्या।
2: एचपीवी एक वायरस है जो जननांग, जनन मार्ग व इवन पुरुषों में भी लंबे समय तक अगर बना रहे तो वह वॉर्ट्स जैसी अल्पायु बीमारियों के अलावा धीरे धीरे दीर्घकालीन समय में कैंसर का कारण बन सकता है।
1: डॉक्टर अर्चित, अब बात आती है कि एचपीवी शरीर में कैसे काम करता है और वैक्सीन से कितनी सुरक्षा मिलती है अगर इसको लगाया जाए।
2: एचपीवी जो वायरस हैं वो तरह तरह के स्ट्रेन्स के रहते हैं, इसमें 6, 11, 16, 18, 31, 33 जैसे स्ट्रेन शामिल हैं, जिसमें अगर हम आज देखें तो सर्वाइकल कैंसर में 80% कारक 16 व 18 वहां स्ट्रेन पाया जाता है। नए सर्वाइकल कैंसर में 31 और 33 भी पाया जा रहा है, पर 80% में सर्वाइकल कैंसर है। इवन पुरुषों में भी यह जो है वो प्रोस्टेट और अन्य कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और यहाँ पर हमें एचपीवी वैक्सीन इसलिए आवश्यक है ताकि एचपीवी वायरस से जो आज हमें वॉर्ट्स या दिक्कतें आ रही हैं, जननांग में दिक्कतें आ रही हैं, वो ना हो और दीर्घकालीन में सर्वाइकल कैंसर भी ना बने।
1: तो डॉक्टर अर्चित, जैसे कि हम एचपीवी वैक्सीन की बात कर रहे हैं, तो इसकी आखिर जरूरत क्यों महसूस हुई, ये कितनी गंभीर समस्या है इस समय।
2: सालाना तकरीबन 80,000 नए मामले सर्वाइकल कैंसर के आ रहे हैं, जिनमें से 40,000 जो है वो मृत्यु को अल्टीमेटली देर आर डेथ्स अलॉट। अब इवन आपका 2030 तक ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये सर्वाइकल कैंसर के केसेस 10 गुना यानी 8,00,000 और मृत्यु 4,00,000 होने वाली है। इसमें 88% सर्वाइकल कैंसर के केस जो है वो आपके एचपीवी से जुड़े हुए हैं। साथ ही 99.7% सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 और 18 से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जो एचपीवी वैक्सीन है, जो आज हम जो वैक्सीन हम सरकारी प्रचलन में बात कर रहे हैं 6, 11, 16 व 18, उसमें 4 स्ट्रेन हैं, वो तकरीबन इन 99.7% प्री कैंसरस लीजन्स को रोककर 88%

0: स्वीडन सर्वाइकल कैंसर का कम कर सकती है। और यही चार स्ट्रेन की जो वैक्सीन हम आज यूज कर रहे हैं वो एडिड प्रोटेक्शन 31-33 जैसे नए स्ट्रेन की भी देती है। तो एक तरह से आप चार स्ट्रेन 6, 11, 16, 18 की वैक्सीन लेने के साथ साथ आप उन चार स्ट्रेन से तो प्रोटेक्टेड है ही है, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन रही है, साथ ही साथ आपको 31-33 जैसे एक्सटेंडेड वर्जन की भी थोड़ी इम्यूनिटी मिल जाती है जो आज की डेट में आप में HPV के संक्रमण ना होने देने के लिए बहुत ही कारगर है। और HPV की जो कारक है जब ये कैंसर करता है तो बहुत ही एसिम्प्टोमेटिक यानी शुरू में आपको लक्षण नहीं महसूस होंगे, बहुत दीर्घकालीन स्थिति में जाके आपको सर्वाइकल कैंसर का पता लगेगा, पर तब को स्थिति आपके हाथ में नहीं होगी, आपके हाथ से जा चुकी होगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप वैक्सीन लगा लेते हैं तो आप आज ही अपनी किशोरावस्था से ही उस वायरस के संक्रमण से अपने शरीर को बचा लेते हैं।
1: डॉक्टर अर्चित, हिमाचल सरकार कौन सी वैक्सीन मुफ्त दे रही है?
0: हिमाचल सरकार अभी गार्डासिल 4 जिसमें HPV 6, 11, 16 व 18 चार स्ट्रेन है उसकी एकल खुराक, सिर्फ एक खुराक 0.5 मिलीलीटर की बाईं ऊपरी बांह पे मांसपेशी के अंदर इंट्रा

0: उस वायरस के संक्रमण से अपने शरीर को बचा लेते हैं।
1: डॉक्टर अर्चित, हिमाचल सरकार कौन सी वैक्सीन मुफ्त दे रही है?
0: हिमाचल सरकार अभी गार्डासिल 4, जिसमें HPV 6, 11, 16 व 18 चार स्ट्रेन हैं, उसकी एकल खुराक, सिर्फ एक खुराक 0.5 मिलीलीटर की बाई ऊपरी बाह पे मांसपेशी के अंदर इंट्रामस्क्यूलर लगाई जा रही है। यह एक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन मतलब इसमें वायरस जैसे कण तो हैं, परंतु ये एक एक्टिव इन्फेक्शन नहीं कर सकता है आप में। ये केवल आपके शरीर में एंटीबॉडीज उत्पन्न करने जितना इम्यून रिस्पॉन्स ही प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि वो एंटीबॉडीज आपको, अगर आपको HPV संक्रमण होता है तो आपके HPV संक्रमण को रोकेगा, तथा कहीं तो आपको भविष्य में कैंसर होने के भी इसमें चांसेस जो है वो 88% रिड्यूस, मतलब इट इज अ वेरी इफेक्टिव मेडिसिन।
1: और ये वैक्सीन कहां लगवा सकते हैं?
0: आज ये वैक्सीन हिमाचल सरकार में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में अभी कैंपेन में कोल्ड चेन पॉइंट से लेकर आपके जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो आपके निकटतम घर के निकट आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, जहां पर ये फिक्स्ड डे यानी किसी एक फिक्स्ड डे पे आपके किशोरियों के लिए तथाकथित उपलब्ध है। किशोरियां वहां पर अपनी आशा के जरिए खुद का पंजीकरण करके अपने आप को HPV वैक्सीन वहां पर लगवा सकती हैं, जिसकी केवल एक खुराक है। उन्हें केवल एक बार इसका वैक्सीनेशन अपने निकटतम आम में लगवाना है। निकटतम कोल्ड चेन पॉइंट या नागरिक अस्पताल जो भी आपके निकट है, जो भी आपके अस्पताल के निकट है, वहां पर आप इसे, घर के निकट है, वहां आप इसे लगा सकते हैं।
1: और समय क्या निर्धारित किया गया है इस टीकाकरण का, जो वैक्सीन है?
0: ये टीकाकरण पंजीकरण उपरांत सुबह 10 बजे से लेके दोपहर 3 बजे तक रहता है, और आपको टीकाकरण उपरांत 30 मिनट तक वहीं पे
1: निगरानी
0: पे निगरानी हेतु रहना है।
1: क्या ये वैक्सीन सुरक्षित है? तो क्या मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स के दौरान भी इसे लगवा सकते हैं? क्या इससे भविष्य में प्रेगनेंसी या फर्टिलिटी पर असर पड़ता है? प्रेगनेंसी और स्तनपान के दौरान क्या करें?
0: सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा सवाल है। वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। 2006 से आज दुनिया भर में 50 करोड़ से अधिक खुराक सुरक्षित रूप से दी जा चुकी है। केवल अत्यंत दुर्बल मामलों में, जहां स्पेसिफिक बॉडी जो है वो एक रिएक्टेंट होती है उस वैक्सीन को, वहां पे एनाफिलैक्सिस हुआ है। अदरवाइज 50 करोड़ लोग ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं। हम साउथ ईस्ट एशिया में भी 10वां देश हैं, और पीरियड्स के दौरान यह पूरी तरह सुरक्षित है। वैक्सीन का पीरियड्स पर कोई असर नहीं है, इससे कोई भी लक्षण ना बढ़ते हैं ना घटते हैं, आप इसे लगा सकते हैं। उसी तरह आपका फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी पर, वैक्सीन का प्रजनन क्षमता का पर कोई असर नहीं है। भविष्य में अगर आप गर्भावस्था भी करना चाह रहे हैं तो उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है। तभी तो सरकार ने किशोरावस्था में ही इसे एड्रेस किया है, ताकि अभी ही अगर आप कल को कंसीव कर रहे हैं तो आप में HPV इन्फेक्शन ना हो, जबकि गर्भावस्था में भी इस तरह की इन्फेक्शन हो सकती है, आपको पुरुष से भी यह संक्रमण हो सकता है। प्रेगनेंसी में, अगर आज आप प्रेगनेंसी में हैं तो गर्भावस्था के दौरान यह वैक्सीन नहीं दी जाती है। उसी तरह से अगर स्तनपान और ब्रेस्ट फीडिंग है, तो स्तनपान और ब्रेस्ट फीडिंग का भी आपका HPV वैक्सीन से कोई लिंक या कोई लेना देना नहीं है। स्तनपान करती हुई महिलाएं भी सुरक्षित रूप से वैक्सीन ले सकती हैं। केवल अगर कोई प्रेगनेंसी में है तभी उसे आज वैक्सीन नहीं लेना है। स्तनपान पीरियड्स में आप इसे ले सकते हैं, और इसका आपके प्रजनन, फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी पर कोई असर नहीं है। और आप अगर वैक्सीन लगवा भी रहे हैं तो शायद आप 50 करोड़ के बाद अगले एक नागरिक हैं इस देश।
1: ये HPV वैक्सीन किशोरियों में 9 से 14 वर्ष के बीच लगाई जा रही है या 15 वर्ष के बाद लगाई जा रही है? तो 9 से 14 जो वर्ष है उसमें कितनी डोज लगाई जाती है, और 15 वर्ष के बाद कितनी डोज है इसकी?
0: अभी जो हमारा सरकारी कार्यक्रम है उसमें लक्षित आयु 14 वर्ष से 15 वर्ष जमा 90 दिन है, यानी कि आज जो 14 वर्ष पूरा हो चुका है, 15 वर्ष हो चुका है या उससे भी 90 दिन ऊपर जा चुका है, उसे हम एक खुराक दे रहे हैं। यह हमारा एक तरह से पहला कैंपेन है जिसमें हम सभी किशोरियों को एड्रेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो कल आपकी 14 वर्ष की पूरी होगी तो ये कैंपेन बंद हो जाएगा। यह आपके यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में सीड इन हो जाएगा। आज जो छोटी किशोरियां हैं वह भी जब 14 वर्ष की होंगी तब को ये HPV वैक्सीन हमारे जो रूटीन टीकाकरण है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो रूटीन आपके निकटतम आयुष्मान आरोग्य मंदिर और कोल्ड चेन पॉइंट में लग रहा है, वहां पे यह एक रूटीन औपचारिकता, एक रूटीन प्रोसीजर बन जाएगा। जिस तरह से टेटनस, मीजल्स, विटामिन ए जैसे टीकाकरण हम रूटीन में दे रहे हैं, उसी तरह से अब हम इस इन्फेक्शन, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस को भी एड्रेस करते रहेंगे रेगुलर फिनोमिना में।
1: डॉक्टर अर्चित, क्या लड़कों को भी HPV वैक्सीन जो है लगानी चाहिए?
0: हाँ जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें लड़कों में भी HPV का संक्रमण का खतरा बना रहता है। लड़कों में भी यह ओरल कैंसर जो पिनाइल कैंसर का एक मुख्य कारक है, तो लड़कों में भी वॉट्स होने की उतनी ही संभावना है जितनी स्त्रियों में है। बल्कि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि यह इन्फेक्शन एसिम्प्टोमेटिक, गैर

0: लक्षणी रहकर बड़े समय तक आपके शरीर में बनी रह सकती है, और दीर्घायु में आपको पता लगेगा कि आपको एक कैंसर हो गया जिसे आप ठीक नहीं कर सकते। उसी तरह से आप गैस करें कि अगर लड़का भी एसिम्प्टोमेटिक है, उसमें भी कोई लक्षण नहीं है, तो वो किस तरह से वो प्रजनन के दौरान इसे जो है वो फैला सकता है और इससे संक्रमण हो सकता है।
1: यानी किशोर और किशोरियों दोनों के लिए इसकी आवश्यकता है इस वैक्सीन की। वैक्सीन लगाने के बाद भी सर्वाइकल कैंसर की जाँच जो है करवानी पड़ेगी?
0: देखिए, हमारी जो वैक्सीन है वो HPV इन्फेक्शन से आज के किशोरों रोक रही है। उसका यह अर्थ नहीं है कि आप आज जो जनमानस में स्क्रीनिंग कैंपेन्स या जो स्क्रीनिंग हम कैंसर की कर रहे हैं उसकी जरूरत खत्म हो गई है। जब आपके निकटतम स्वास्थ्य संस्थानों में, जो आपके वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल्स हैं, उनमें जो स्क्रीनिंग की सुविधा उपलब्ध है और आपको अगर डॉक्टर सुझा रहा है कि उसे आपको स्क्रीनिंग करवानी है एक पर्टिकुलर एज या किसी लक्षण पे, तब आपको नियमित रूप से सर्वाइकल कैंसर की जांच या तथाकथित स्क्रीनिंग करवानी ही पड़ेगी HPV वैक्सीन लगने के बाद भी। ये वैक्सीन आपको बचाता जरूर है, पर आप इतने सतर्क जरूर होने चाहिए कि जो स्क्रीनिंग आपकी एज अप्रोप्रिएट स्क्रीनिंग है वो चलती रहेगी।
1: तो डॉक्टर अर्चित, अगर किसी लड़की ने पहले ही निजी तौर पर HPV वैक्सीन लगवा रखी है तो क्या सरकारी वैक्सीन भी लगवा सकती है?
0: देखिए, जो हमारा सरकारी कार्यक्रम है वो उन सब किशोरों को कवर करने के लिए है जो कभी किसी भी तरह के इम्यूनाइजेशन उन्होंने खुद का HPV से नहीं करवाया है। यह तथाकथित पहली हमारी जो एलिजिबिलिटी है वो बनती है। अगर आपने कोई एक डोज खुराक बाहर लगवा रखी है, वो किसी और स्ट्रेन की है, और तथाकथित स्ट्रेन में दो डोज लगनी है या तीन डोज लगनी है या केवल एक डोज लगनी थी, अगर एक डोज लगनी थी तब तो वो लग चुकी है, तब आपको दूसरे की आवश्यकता नहीं है, उसकी भी अपनी एक इफेक्टिवनेस एफिकेसी है। उसी तरह से अगर उसमें दो डोज की रिक्वायरमेंट है तब आप दूसरी सरकारी में नहीं लगवा सकते, वो बदल नहीं सकते हैं, तब आपको उसी को, उसी स्ट्रेन की दूसरी डोज आपको लगवानी चाहिए। करंट वैक्सीनेशन जो अभी चला हुआ है वो उन लोगों के लिए है, उन किशोरियों के लिए है जो अभी तक HPV से सुरक्षित नहीं है, उन्हें HPV वैक्सीन पहली खुराक लगनी है। ये एक ही खुराक उन्हें आजीवन इम्यूनिटी प्रदान करेगा। वो 14 वर्ष से 15 वर्ष प्लस आगे 90 दिन के भीतर यह टीकाकरण करवा सकते हैं, अन्यथा वो गर्भवती नहीं है तब उसके अलावा वो टीकाकरण अपना करवा सकते हैं। तो आपको टीकाकरण निकटतम आपके स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध है और इसके कोई गंभीर एलर्जी या रिएक्शंस नहीं है और ना ही इसका आपके प्रजनन, प्रेगनेंसी या फर्टिलिटी पर या आपके पीरियड्स पर, स्तनपान पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं है।
1: वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोई समस्या नहीं होगी, तो आप डॉक्टर अर्चित माता पिता से क्या कहना चाहेंगे किशोर किशोरियों के?
0: क्योंकि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि लाभार्थी 18 वर्ष से नीचे हैं, तो यहाँ पर ज्यादा जिम्मेवारी माता पिता के कंधों पे है। माता पिता को अपने किशोर व किशोरियों को सुरक्षित रखने हेतु उन्हें इसके लिए मोटिवेट करना, उनके साथ आना, कंसेंट देना, अपनी एक परमिशन देना जो है वो बहुत जरूरी है। जैसे ही वो पंजीकृत हो जाते हैं टीकाकरण सेशन पे, वहां पे वो टीकाकरण ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि माता पिता का ये समझना बहुत अहम है, क्योंकि वो अब उस स्टेज पे हैं लाइफ की, वो समझ सकते हैं कि आज ही अगर किसी बीमारी को रोक दिया जाए तो उस स्टेज पे जाके वो कैंसर क्या रूप, क्या प्रारूप ले सकते हैं। पता नहीं उनके पुत्र सुपुत्री जो हैं वो उस स्टेज में जाके उससे कितने पीड़ित रहें। उससे अच्छा है कि वो आज उस वैक्सीन के लिए खुद भी कंसेंट करें, अपने उन किशोरों किशोरियों को भी एसेंट यानी कि उन्हें भी पूरा वो दें कि वो आए, उन्हें पूरी सुविधा प्रोवाइड करें कि वो आपके स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचे, वहां पर तथाकथित टीकाकरण लेकर खुद को इस कैंसर से सुरक्षित करें।
1: डॉक्टर अर्चित शर्मा, जैसे कि हम HPV वैक्सीन की बात कर रहे हैं, तो भारत में HPV वैक्सीन को लेकर जागरूकता कितनी जरूरी है और हमारे प्रदेश में क्या स्थिति है इस समय इसको लेकर?
0: इस समय हम उस दौर में हैं जब हमें ये HPV वैक्सीन उपलब्ध है, हमें ये पता है कि हम सर्वाइकल कैंसर में दूसरे स्थान पर हैं। चाहे हम भारतवर्ष की बात करें, हिमाचल की सर्वाइकल कैंसर में हम भरपूर योगदान दे रहे हैं और हम विश्व स्तर पे दूसरे लेवल पर हैं। ये भी हमें पता है कि सबसे ज्यादा केसेस जो सर्वाइकल कैंसर के हैं वो HPV वायरस के संक्रामक रोगों की भविष्य की ही एक उत्पत्ति है, उन्हीं के कारण से, वही एक कारक है वायरस इसमें जो कि रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें ये, इस बात का तो हमें पूरा पता है मुझे लगता है नागरिकों को, कि HPV वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन लगाने से हम उस संक्रामक रोग को भी रोक सकते हैं, साथ ही हम इस सर्वाइकल कैंसर के, जिसका हमें यह बोला जा रहा है कि जिसके केसेस तकरीबन 800,000 हो सकते हैं 2030 में, आज से जस्ट 7 साल बाद सोचिए कि 800,000 केस हो सकते हैं और साल में 400,000 लोग जो हैं वह मृत्यु जो है वो इससे हो रही है, वो रोकी जा सकती है। अगर हम बात करें तथाकथित अभी चल रहे HPV वैक्सीनेशन कैंपेन की, तो इसमें किशोरियों को व उनके माता पिता को ये समझने की जरूरत है कि उन्हें जल्द से जल्द इन किशोरियों

0: को टीकाकरण कर देना चाहिए ताकि वह एक अपनी उम्र जो 15 साल प्लस 90 डेज की एज है उसको क्रॉस करने के बाद इसकी एफिकेसी और इफेक्टिवनेस थोड़ी घट भी जाती है सिंगल डोज की, तो आपको अभी ही इसे कर देना चाहिए। और अभी वो बच्चे इस स्थिति में नहीं है शायद कि वो समझ पाए ज्यादा, या शायद समझ भी रहे होंगे कि यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है। उनके माता पिता को डिसाइड करना चाहिए ताकि जो हमारी HPV वैक्सीन जो सरकार आज मुफ्त में आपको उपलब्ध करवा रही है तकरीबन, या प्राइवेट में आपको 2 से लेकर 20 हजार की कीमत के बीच में मिलेगी, तो यह जब आपको घर द्वार आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में निकटतम स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है तो मुझे लगता है कि आपको आगे बढ़कर अग्रसर होकर टीकाकृत करने में ही इस वक्त सबसे ज्यादा भलाई है। जागरूकता चली है, सभी चिकित्सक तकरीबन हर प्लेटफॉर्म पर जो है वो आगे आकर बोल रहे हैं। जो यहां भी मेरे श्रोता सुन रहे हैं, मेरा यही उनसे निवेदन है कि अगर आपके घर में कोई किशोरी है तो उस आप पता करें कि निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में कब वहां पर टीकाकरण सेशन है, और जल्द से जल्द इससे पहले कि वो बॉर्डर एज 15 साल और 90 दिन का बॉर्डर एज क्रॉस करे, उससे पहले जो है आप उन्हें अपनी एक डोज सिंगल डोज जो है वो HPV वैक्सीन की वहां दिलाएं, और इस भयानक कैंसर से उन 8 लाख जो हमारा भविष्य में नंबर आ रहा है सर्वाइकल कैंसर से, उनमें से अपना नाम कटवाएं।
1: डॉक्टर अर्चित, आपने HPV वैक्सीन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। आशा करते हैं कि ये जानकारी जागरूकता बढ़ाने में सहायता प्रदान करेगी। डॉक्टर अर्चित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी स्टूडियो में आने के लिए। इसी के साथ रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम का आज का अंक ही संपन्न होता है। आगे लेते हैं, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम। HPV वैक्सीन विषय पर डॉक्टर अर्चित शर्मा से बातचीत कर रही थी सपना ठाकुर। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून इन है आकाशवाणी FM शिमला के साथ।
3: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

एफएम शिमला पर एंजॉय कीजिए ये एंटरटेनिंग म्यूजिकल नंबर्स, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए एफएम शिमला के साथ।

0: यदि आप अपनी लेटेस्ट ज्वेलरी या कपड़ों के डिजाइन या कपड़ों के व्यवसाय को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी से सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार कर लाभ उठा सकते हैं।
1: शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी, यह है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।

ये गाने आप एंजॉय कर रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप ट्यून इन हैं एफएम शिमला के साथ और अब आपको बता दें आकाशवाणी के प्राइमरी चैनल से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। शास्त्रीय संगीत पर आधारित सुरबेला कार्यक्रम में आज सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे इकबाल अहमद खां द्वारा गाया राग गुजरी तोड़ी और हाफिज अहमद खां से ठुमरी। रिमझिम गीतों की मधुर फुहारों का आनंद लीजिए सुबह 10:00। आज सुबह 11:05 पर आप सुनेंगे समाचार एकांश की प्रस्तुति। NCERT द्वारा प्रायोजित उमंग कार्यक्रम सुनना ना भूलें सुबह 11:30 पर। महिला सम्मेलन कार्यक्रम का वक्त रहेगा 12:20 और किसान बागवान सुनेंगे दिन में 2:00 सुनहरी किरणें और रात 7:10 पर कृषि जगत कार्यक्रम। कुछ नए पुराने फिल्मी गीतों का आनंद लीजिए दिन में 1:10 पर कार्यक्रम रहेगा सैनिकों के लिए।

जिले की चिट्ठी के साथ हाजिर होंगे दिन में 3:05 पर। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं दोपहर 12:10 पर, दिन में 2:45 पर, रात 8:15 पर और रात 10:00। रात 8:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत, जिसमें आज के कलाकार होंगे लालचंद। गजलों का हसीन गुलदस्ता पेश किया जाएगा रात 9:15 पर। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे रात 9:30 पर कंट्री वाइड और 9:45 पर इनसाइट्स।

पुराने फिल्मी गीतों का आनंद लीजिए सुरबहार कार्यक्रम में रात 10:30 पर। पहाड़ी लोकगीत आप सुन सकते हैं सुबह 11:15 पर, दिन में 2:30 पर, रात 8 धारा ऋग्गीत कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे बी आर वर्मा व साथी और नीतिका के गाए लोकगीत। शाम 4:20 पर चंबियाली कार्यक्रम के साथ आरंभ होंगे विभिन्न हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम। 4:50 पर आप सुनेंगे मंडियाली कार्यक्रम। 5:20 का वक्त रहेगा पंगवाली कार्यक्रम का। 6:06 पर सुनिए कांगड़ी कार्यक्रम और 6:35 पर लाहौली कार्यक्रम। तो ये है आकाशवाणी के प्राइमरी चैनल से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम।

केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हमारे आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। साथ ही FM शिमला 103.7 MHz और DTH सेवा पर भी सुने जा सकते हैं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पुष्पा ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को दी मंजूरी। प्रदेश में नगर निगम व स्थानीय शहरी निकायों सहित पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज। कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र करेगी जारी। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आईपीएल मुकाबले में आज पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस की टीमें होंगी आमने सामने। और हमीरपुर के नादौन क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से किया जा रहा विकसित। होटल निर्माण और पर्यटन गतिविधियों को मिलेगा बल। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को मंजूरी दी है। सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। कोल भारत में करीब 400 बिलियन टन के नॉन रिजर्व्स हैं। वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपये का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। प्रदेश में नगर निगम व स्थानीय शहरी निकायों सहित पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर प्रचार अभियान गति पकड़ने लगा है। भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। नगर निगम और शहरी निकायों के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता आज धर्मशाला में चुनाव प्रचार करेंगे। इस दौरान कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र भी जारी करेगी। इसमें धर्मशाला के विकास के लिए आगामी रोडमैप पेश किया जाएगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आज मंडी जिला के विभिन्न क्षेत्रों में बैठकों, सम्मेलनों, जनसभाओं और रैलियों के माध्यम से चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं सांसद अनुराग ठाकुर आज कांगड़ा और धर्मशाला में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए भरे गए नामांकन पत्रों में आज व कल नाम वापस लिए जा सकेंगे। कल 15 मई को ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए नामांकन 7-8 व 11 मई को भरे गए थे, जिनकी जांच 12 व 13 मई को हुई। नामांकन पत्रों की जांच में 742 नामांकन रद्द किए गए हैं। अब 85,462 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में 31,182 पदों के लिए 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में मतदान होंगे। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज आईपीएल मुकाबले में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच खेला जाएगा। धर्मशाला में आईपीएल सीजन का यह दूसरा मुकाबला होगा। यह मैच आज शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता।
1: एचसीए क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में आज आईपीएल मुकाबले में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच भिड़ंत होगी। धर्मशाला में आईपीएल सीजन का यह दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। इससे पूर्व बीते 11 मई को पंजाब और दिल्ली के बीच मैच खेला गया था, जिसमें मेजबान पंजाब को हार का सामना करना पड़ा था। मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 7 बजे होगा। पंजाब के लिए ये मुकाबला करो या मरो जैसा माना जा रहा है। प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए टीम को हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। मुकाबले को लेकर धर्मशाला में क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और स्टेडियम में बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुँचने की संभावना है। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से शर्मा।

0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माई भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। यह प्रश्नोत्तरी अगले महीने आयोजित होने वाले सीमावर्ती ग्राम सहभागिता कार्यक्रम में युवाओं की भागीदारी के लिए चयन का पहला चरण है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमीरपुर जिला का नादौन क्षेत्र पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में विकसित हो रहा है, जिसके लिए लगभग 45 करोड़ रुपए की लागत आएगी। होटल निर्माण से नादौन और इसके आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बल मिलेगा। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे हमीरपुर जिला संवाददाता।
1: हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटन रूट और शिमला मेटोर फोर लाइन नेशनल हाईवे एवं अटारी हमीरपुर मंडी नेशनल हाईवे के जंक्शन पर ब्यास नदी के किनारे स्थित नादौन कस्बे को देश विदेश के पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में नादौन शहर के अंतर चौक पर लगभग 45 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के आधुनिक होटल का निर्माण कार्य जोरों पर है। इस होटल के निर्माण से नादौन और उसके आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बल मिलेगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने नादौन में केवल होटल का निर्माण ही नहीं शुरू करवाया, बल्कि रिवर राफ्टिंग एवं एडवेंचरल स्पोर्ट्स तथा अन्य गतिविधियों के लिए भी बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। आकाशवाणी के लिए हमीरपुर से मैं हरीश नंदा।
0: राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश में होने वाली पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड जवानों की भर्ती प्रक्रिया पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी है। यह रोक प्रदेश में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के चुनाव को देखते हुए लगाई गई है। आयोग के अनुसार चुनाव अवधि के दौरान सरकार ऐसा कोई बड़ा निर्णय या घोषणा नहीं कर सकती जिससे मतदाताओं या चुनाव प्रक्रिया पर प्रभाव पड़े। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए HRTC की करीब 400 बसें चुनावी ड्यूटी पर लगाई जाएंगी। राज्य चुनाव आयोग ने निगम प्रबंधन को पत्र लिखकर बसों की मांग की है। निर्वाचन आयोग ने निगम प्रबंधन से चुनावी ड्यूटी पर भेजी जाने वाली सभी बसें अच्छी स्थिति वाली भेजने को कहा है, ताकि दुर्गम और दूरदराज के क्षेत्रों में किसी प्रकार की तकनीकी खराबी से मतदान प्रक्रिया प्रभावित न हो। वहीं दूसरी तरफ HRTC ने भी आयोग से बसों की एवज में कुल राशि का 50% एडवांस जमा करवाने की मांग की है। केंद्र सरकार ने सितंबर 2026 या अगले आदेश तक चीनी सहित खांड, सफ़ेद चीनी और परिष्कृत चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार चीनी निर्यात नीति को प्रतिबंध से निषिद्ध कर दिया गया है। यह प्रतिबंध यूरोपीय संघ और अमेरिका को CXL तथा TRQ कोटा अग्रिम प्राधिकरण योजना और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, KNH शिफ्ट करने पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को नोटिस जारी कर पूछा क्यों लिया फैसला, रिपोर्ट तलब। पंजाब केसरी उद्योग मंत्री हर्षवर्धन के हवाले से लिखता है, नीट का पेपर लीक होना, लाखों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़। हिमाचल दस्तक की एक खबर है, लोकभवन बना ईंधन संरक्षण क्षेत्र, पेट्रोल फ्री संडे लागू। दिव्य हिमाचल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से सुर्खी दी है, केंद्र के तंग करने से नहीं डगमगाएंगे हौसले, दैनिक जागरण का शीर्षक है। मुख्यमंत्री का आश्वासन, जुलाई में होगी JCC, अगस्त में मिलेगी DA किस्त। दैनिक भास्कर की एक खबर है, कैंटोनमेंट क्षेत्र की जमीन पर केंद्र का बड़ा फैसला, राज्य सरकार की मांग खारिज, रक्षा मंत्रालय अपने पास रखेगा मालिकाना हक। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को दी मंजूरी। प्रदेश में नगर निगम व स्थानीय शहरी निकायों सहित पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज, कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र करेगी जारी। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में IPL मुकाबले में आज पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस की टीमें

0: आमने सामने। और हमीरपुर के नादौन क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से किया जा रहा विकसित, होटल निर्माण और पर्यटन गतिविधियों को मिलेगा बल। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: आकाशवाणी शिमला FM शिमला 103.7 MHz और आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र पर आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून इन हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: आप ट्यून इन हैं एफएम शिमला के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर और ये वक्त है कुदरत के रंग प्रोग्राम का। हर दिन की भागा दौड़ी, स्ट्रेस और पोल्यूशन के बीच एक ब्रेक तो बनती है, और ये ब्रेक अगर चंद घंटों की ना होकर कुछ दिनों की हो जाए तो आप एकदम तरोताज़ा होकर अपनी रूटीन लाइफ में लौटते हैं। खुले आकाश के नीचे अगर खुलकर सांस लेना चाहते हैं ना, तो चले आइए घूमने हिल स्टेशंस की ओर, हिमाचल प्रदेश की ओर। मैदानी इलाकों में रहने वाले सैलानियों का पसंदीदा पर्यटन स्थल है हिमाचल प्रदेश, जहां पर आप कम समय में अपनी ब्रेक और अपनी वेकेशंस एंजॉय कर सकते हैं अपने लव्ड वंस के साथ। हिमाचल प्रदेश सैलानियों का जो है ऑल टाइम फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन है। यहां शिमला, कुल्लू, मनाली, लेह, चंबा, धर्मशाला, ये कुछ ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहाँ पर सैलानी साल के 12 महीने घूमने आते रहते हैं। फिर चाहे गर्मियों का मौसम हो, सर्दियों का मौसम हो या मानसून सीज़न हो, हिमाचल प्रदेश में आपको पर्यटक घूमते नजर आ ही जाएंगे। तो जी, गर्मियों के इस मौसम में ठंडक भरे कुछ पल बिताने के लिए आप हिमाचल प्रदेश के सुंदर हिल स्टेशंस का रुख कर सकते हैं, और आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने वाले हैं जिसे भारत का एम्स्टर्डम कहते हैं। किसे कहते हैं भारत का एम्स्टर्डम, बताऊंगी डिटेल में इस प्रोग्राम में आपको। आप यूं ही ट्यून इन रहिएगा हमारे साथ एफएम शिमला पर। इस प्रोग्राम में आपकी रेडियो गाइड बनकर मैं रहूंगी आपके साथ स्वाति डोगरा। सुनते रहिए, मुस्कुराती रहिए एफएम शिमला के साथ।

जो लोग अभी तक कहीं पर भी दूर कहीं घूमने नहीं गए हैं ना, उन सभी को एक बार हिमाचल प्रदेश घूमने जरूर आना चाहिए। कुदरत के रंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं जी FM शिमला पर। और जो लोग अभी तक कहीं पर भी किसी दूर जगह पर घूमने के लिए नहीं गए हैं, उन्हें हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए आना चाहिए। ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ की मेहमान नवाजी, यहाँ की जो एक पीसफुल एटमॉस्फेयर है यहाँ का, वो आपकी यादों को बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा और यादगार बना देगा। यानी आप ना यहाँ से निराश होगे तो नहीं जाने वाले, आपकी जो वेकेशंस हैं बहुत ही पीसफुल रहने वाली हैं, बहुत इन्जॉय करेंगे आप। और हिमाचल प्रदेश के ऐसे कई हिल स्टेशंस हैं, कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहाँ पर आप अपने परिवार वालों के साथ घूमने आ सकते हैं। और इन सब के अलावा अगर आप एक सोलो ट्रैवलर भी हैं ना, तो भी हिमाचल प्रदेश का ये जो पर्यटन स्थल है जिसके बारे में आज मैं प्रोग्राम में बात करने वाली हूँ, यहाँ पर आप एज अ सोलो ट्रैवलर भी घूमने के लिए आ सकते हैं। जिस जगह की आज हम बात करने वाले हैं उसे भारत का एम्स्टर्डम कहते हैं। हिमाचल प्रदेश के ज़िला कुल्लू में बहने वाली पार्वती नदी के किनारे बसा है भारत का एम्स्टर्डम कहा जाने वाला सुंदर गांव कसोल। हालांकि ये गांव से कहीं ज़्यादा एक टाउन नज़र आता है, लेकिन घाटी, पहाड़, नदी, झरनों की वजह से कुदरती नज़ारों से लबरेज है। दुनिया भर के ट्रैकर्स, बैकपैकर्स, साइकिलिस्ट और नेचर लवर्स कसोल आते हैं और यही वजह है कि इस जगह को भारत का एम्स्टर्डम कहा जाता है। भुंतर से ऑलमोस्ट 23 किलोमीटर दूर और मशहूर गुरुद्वारा मणिकरण के बगल में ही स्थित है कसोल। बर्फ़ से ढके पहाड़ों, देवदार के ऊँचे पेड़ों और नदी के पास आराम से बैठने के लिए कसोल सबसे अच्छी डेस्टिनेशन है। कुदरत की सिंफनी को अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं ना, तो कसोल आपके लिए परफेक्ट प्लेस है। आकाश चूमते पहाड़, बादलों से रेस लगाती हवा, और जब पेड़ों को झूमते हुए गुजरती है हवा और नदी के पानी की कलकल जब झनकार छेड़ती है, तो प्रकृति का एक ऐसा संगीत जन्म लेता है जिसकी ध्वनि आपको उस लम्हे में बांध देती है। ऐसा है कसोल का सुंदर नज़ारा। तो आज कार्यक्रम में कसोल के बारे में ही हम कुछ बातें करने वाले हैं और कसोल के आसपास ऐसे कौन से प्लेसेस हैं जहां पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं, उनके बारे में आज बात होगी इस कार्यक्रम में। आप यूं ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ FM शिमला पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अपने मन की उथल पुथल को अगर थोड़ा शांत करना चाहते हैं तो चले आइए घूमने कसोल। कुदरत के रंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं FM शिमला पर, और आज कार्यक्रम में जिक्र हो रहा है कसोल का। अपने ट्रैकिंग ट्रेल्स के लिए फेमस कसोल, खीरगंगा, यंकर पास, सार पास और पिन पार्वती पास, ये जो कुछ एक रूट्स हैं, ये ट्रैकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। कसोल की संस्कृति का वास्तविक अनुभव करने के लिए मलाना गांव की यात्रा पर ज़रूर जाएं। कसोल से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मलाना एकांत गांव है, जो अपनी मजबूत संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं के लिए पहचाना जाता है, और यहाँ लोग दुनिया से अलग आत्म अलगाव में रहते हैं। इस गांव में जमदग्नि ऋषि का मंदिर है, रेणुका देवी का मंदिर है जो स्थान का प्रमुख आकर्षण है, और साथ ही विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर भी वहाँ बने हैं जिनका स्थानीय लोग बहुत सम्मान करते हैं और इनके संरक्षण के संबंध में बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। मलाना का ट्रैकिंग रूट हरे भरे देवदार के पेड़ों और अलग अलग वनस्पतियों से सुसज्जित है, जो ट्रैकर्स को पीसफुल एक्सपीरियंस देता है, और मलाना बांध का हल्का सा दृश्य भी वहाँ घूमने आने वाले सैलानियों को उत्साहित करता है। मलाना गांव की निराली धार्मिक संस्कृति की वजह से इसे लिटिल ग्रीस भी कहते हैं।

वहाँ के स्थानीय लोगों के मुताबिक वो लोग अलेक्जेंडर की ग्रीक आर्मी सोल्जर्स के डिसेंडेंट्स खुद को बताते हैं, जिस वजह से मलाना को लिटिल ग्रीस भी कहा जाता है। कुदरत के रंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं एफएम शिमला पर, और आज कसोल की यात्रा पर हम निकले हैं और कसोल के बारे में कुछ और बातें करूंगी आपके साथ। आप सुनते रहिए एफएम शिमला।

कसोल की रेडियो जर्नी पर आज हम निकले हैं और इस रेडियो जर्नी के साथ साथ एफएम शिमला पर आप एंजॉय कर रहे हैं ये म्यूजिकल नंबर्स। ये है प्रोग्राम कुदरत के रंग। कसोल के सफर पर आज हम निकले हैं जनाब, और मलाना गांव की पहले हमने बात की थी, और अब आपको बताएं तोश के बारे में। पार्वती घाटी के सुदूर छोर पर स्थित तोश गांव आधुनिकीकरण और तेज तर्रार जीवन से अछूता है। इसकी गोद में बहती पार्वती नदी, हरी भरी पहाड़ियां दुनिया भर के नेचर लवर्स को अट्रैक्ट करती हैं। इस गांव में ना ज्यादातर विदेशी पर्यटक आते हैं यहां के शांत वातावरण में छुट्टियां बिताने के लिए। सेब के बगीचों और ग्रीन मेडोज को क्रॉस करते हुए ट्रैकर्स तोश गांव पहुंचते हैं। विदेशी सैलानियों की यहां ज्यादा संख्या देखी जाती है, इसी वजह से यहां थोड़ा बहुत हिप्पी कल्चर भी देखने को मिलता है। ताज़ा साफ हवा और शांतिपूर्ण वातावरण में योगा अभ्यास और मेडिटेशन करने के लिए तोश बहुत अच्छी जगह है। तोश के अलावा कसोल का एक और फेमस टूरिस्ट स्पॉट है चलाल गांव, जो ओल्ड कसोल से ऑलमोस्ट 30 मिनट्स की दूरी पर स्थित है। ये गांव अपने पुराने जमाने के पहाड़ी गांव के देहाती आकर्षण को आज भी बरकरार रखे हुए है। ये एक ऐसा गांव है जिसने

आधुनिक टूरिज्म की वजह से अपनी प्राकृतिक सुंदरता नहीं खोई है। और इस गांव से गुजरने वाले ट्रैकिंग रूट्स पर आपको इजरायली कैफे और बेकरीज देखने को मिलेंगी। हिब्रू भाषा में लिखे साइन बोर्ड्स और रेस्टोरेंट्स के नाम देखकर भी आपको हैरानी होगी। और यहाँ पर कई इजरायली लोग भी रहते हैं और इसी रीज़न से इसे मिनी इजराइल भी कहा जाता है। कसोल आप कैसे पहुंच सकते हैं और वहां पर घूमने का जो समय है, कौन सा टाइम बेस्ट रहता है, इसके बारे में बताऊंगी आपको। आप यूं ही सुनते रहिए FM शिमला।

कसोल आप कैसे पहुंच सकते हैं और वहां पर घूमने का जो समय है कौन सा टाइम बेस्ट रहता है इसके बारे में बताऊंगी आपको। आप यूं ही सुनते रहिए FM शिमला।

कुदरत के रंग प्रोग्राम आप सुन रहे हैं एफएम शिमला पर, और कसोल की बात हम कर रहे थे। दिल्ली, चंडीगढ़ और अन्य शहरों से जो कसोल है ना, वहाँ पर आप पहुँचने के लिए बसेस और टैक्सी की सुविधा ले सकते हैं। हवाई मार्ग से अगर आप कसोल पहुँचना चाहते हैं तो आप चंडीगढ़ एयरपोर्ट से भुंतर के लिए फ़्लाइट ले सकते हैं, दिल्ली से भुंतर के लिए फ़्लाइट ले सकते हैं, जो कसोल से 31 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और बाय ट्रेन तो फिर जोगिंदरनगर रेलवे स्टेशन ही है, जहाँ से कसोल ऑलमोस्ट 145 किलोमीटर्स दूर है। तो आप ना अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक कोई भी परिवहन का माध्यम चुन सकते हैं। और आजकल का जो मौसम है वो भी काफ़ी अच्छा है कसोल घूमने के लिए। कुल्लू, मनाली, नगर गांव, मणिकरण, मलाणा गांव, छलाल गांव, तोश, तीर्थन घाटी, नेचर पार्क, पिन पार्वती कसोल के फेमस अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं। और कसोल हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पर दुनिया भर के जो सैलानी हैं वो घूमने के लिए आते हैं। पार्वती नदी के किनारे बसा कसोल सभी प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श जगह है, जहाँ पर आप सोलो ट्रिप के लिए भी जा सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, किड्स के साथ, लव्ड वंस के साथ घूमने आ सकते हैं। कसोल घाटी जितनी सुंदर रील्स में लगती है ना दोस्तों, उससे कहीं ज़्यादा रियलिटी में खूबसूरत है। तो आप अगर शहर के शोर से थोड़ा एकांत चाहते हैं, शहर के प्रदूषण से चैन की सांस खुली हवा में अगर लेना चाहते हैं, तो आप कसोल घूमने ज़रूर आइए। बहरहाल इसी इन्फॉर्मेशन के साथ कुदरत के रंग कार्यक्रम में आज बस इतना ही। प्ले कर रही हूँ आप सभी के लिए प्रोग्राम का ये आखिरी गाना।

0: आप जुड़े हैं एफएम शिमला के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अब वक्त हो चला है एफएम न्यूज़ हेडलाइंस का।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं पूनम भारद्वाज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के लिए भरे गए नामांकन पत्रों में आज व कल नाम वापस लिए जा सकेंगे। कल 15 मई को ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच में 742 नामांकन रद्द किए गए हैं। अब 85,462 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में 31,182 पदों के लिए 26, 28 और 30 मई को 3 चरणों में मतदान होंगे। प्रदेश में नगर निगम व स्थानीय शहरी निकायों सहित पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव को लेकर प्रचार अभियान गति पकड़ने लगा है। भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। नगर निगम और शहरी निकायों के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता आज धर्मशाला में चुनाव प्रचार करेंगे। इस दौरान कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र भी जारी करेगी। इसमें धर्मशाला के विकास के लिए आगामी रोड मैप पेश किया जाएगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आज मंडी जिले के गुटकर व अन्य क्षेत्रों में बैठकों, सम्मेलनों, जनसभाओं और रैलियों के माध्यम से चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं सांसद अनुराग ठाकुर आज कांगड़ा और धर्मशाला में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज आईपीएल मुकाबले में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच खेला जाएगा। धर्मशाला में आईपीएल

0: सीजन का ये दूसरा मुकाबला होगा। ये मैच आज शाम 7:30 बजे शुरू होगा। राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश में होने वाली पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड जवानों की भर्ती प्रक्रिया पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी है। ये रोक प्रदेश में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के चुनावों को देखते लगाई हुई आचार संहिता के चलते लिया गया है। आयोग के अनुसार चुनाव अवधि के दौरान सरकार ऐसा कोई बड़ा निर्णय या घोषणा नहीं कर सकती जिससे मतदाताओं या चुनाव प्रक्रिया पर प्रभाव पड़े। इस अंक में इतना ही, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे FM न्यूज हेडलाइंस।
2: अगर आप जन जन तक पहुंचना चाहते हैं और अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं तो आकाशवाणी पर सस्ते दामों पर अपना विज्ञापन प्रसारित करवाएं।
3: आपका थोड़ा सा प्रयास आपके सपनों को पूरा कर सकता है।
2: आकाशवाणी के माध्यम से आप न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में अपने व्यवसाय का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। शुभ वाणी, लाभ वाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
3: नियम और शर्तें लागू।
1: ट्यून है आप FM शिमला के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। FM शिमला पर अगर आप पुराने फिल्मी गीतों का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको हम बता दें कि सुबह 11:05 पर आप सुन सकते हैं प्रोग्राम पुरानी फिल्मों से। दिन में 3:10 पर एंजॉय कीजिए प्रोग्राम ओल्ड हिट्स और रात 8 बजे सुनिए भूले बिसरे गीत। आप ट्यून इन है FM शिमला के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर और अब वक्त हो चला है सदाबहार गीत प्रोग्राम का। और आज इस प्रोग्राम में आप सुनेंगे 70, 80 और 90 के दशक के कुछ एवरग्रीन सॉन्ग्स।

0: किशोर कुमार की आवाज़ में ये गाना अभी आपने सुना शर्मिली फिल्म से, और अगला गाना आपको सुनवाऊंगी पराया धन फिल्म से, आवाज़ एक बार फिर से किशोर कुमार की। ये गाना आप सुनेंगे इस संदेश के बाद।
1: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
2: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
1: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
2: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है, वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में, सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
1: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गैम्बलर फिल्म का ये गाना अभी आपने सुना। FM शिमला पर सदाबहार नगमे आप एंजॉय कर रहे हैं और जिस प्रोग्राम में हम प्ले कर रहे हैं आपके लिए 70, 80 और 90 के दशक के कुछ एवरग्रीन सॉन्ग्स। अगला गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में अभिमान फिल्म से आपके लिए प्ले करूंगी इस संदेश के बाद।
1: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
2: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
3: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
4: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
1: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
0: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
1: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: यसुदास और आशा भोसले की आवाजों में ये गाना छोटी सी बात फिल्म से।

0: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है, वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
1: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: लता मंगेशकर, किशोर कुमार और यसुदास की आवाज़ों में आपने ये गाना सुना त्रिशूल फिल्म से। अगला गाना आपको सुनवाऊंगी नाजिया हसन की आवाज़ में कुर्बानी फिल्म से, इस संदेश के बाद।
1: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
2: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
3: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
4: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
1: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
0: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
1: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: बप्पी लहरी और एस जानकी की आवाजों में साहिब फिल्म से अभी आपने ये गाना एंजॉय किया।
1: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है, वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में, सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
2: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान, राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: ट्यून इन है आप एफएम शिमला के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ एवरग्रीन म्यूजिकल नंबर्स आप एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ। और आज कार्यक्रम में अभी तक आपने सुने 70 और 80 के दशक के कुछ सदाबहार गाने, और अब 90s के एवरग्रीन सॉन्ग्स प्ले कर रही हूँ आप सभी के लिए। आप यूं ही ट्यून इन रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगला गाना ये जो प्ले करने वाली हूँ मैं, ये चुना है खिलाड़ी फिल्म से हमने। आवाज़ें हैं इस गीत में अभिजीत और आशा भोसले की।

0: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
1: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
2: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
3: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

कुमार सानू की वॉइस में ये गाना भी आपने एंजॉय किया 1942 और लव स्टोरी फिल्म से। अगला गाना राजू बन गया जेंटलमैन फिल्म से, आवाज़ एक बार फिर से कुमार सानू की और साथियों की।

0: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है, वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में, सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
1: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: ट्यूनिंग है आप FM शिमला के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ एवरग्रीन म्यूजिकल नंबर्स एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ। और अब प्रोग्राम का ये आखिरी गाना, जब प्यार किसी से होता है, फिल्म से लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज़ें।

0: और इसी मेलोडियस गाने के साथ आज का आपका और हमारा ये म्यूजिकल सफर भी यहीं पर ख़त्म होता है। अपनी रेडियो दोस्त स्वाति डोगरा को दीजिए इजाज़त। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय। लेकिन आप सुनते रहें FM शिमला 103.7 MHz पर।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिमला का प्रसारण। 11 बजने को हैं, अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आकाशवाणी FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के साथ साथ DTH सेवा

0: पर भी उपलब्ध हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पुष्पा ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को अपनी उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के लिए भरे गए नामांकन पत्रों में आज व कल नाम वापस लिए जा सकेंगे। कल 15 मई को ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे। पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के लिए नामांकन 7, 8 व 11 मई को भरे गए थे, जिनकी जांच 12 व 13 मई को की गई। नामांकन पत्रों की जाँच में 742 नामांकन रद्द किए गए हैं। अब 85,462 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में 31,182 पदों के लिए 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में मतदान होंगे। प्रदेश में नगर निगम व स्थानीय शहरी निकायों सहित पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज हो गया है। भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। नगर निगम और शहरी निकायों के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता आज धर्मशाला में चुनाव प्रचार करेंगे। इस दौरान कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र भी जारी करेगी। इसमें धर्मशाला के विकास के लिए आगामी रोडमैप पेश किया जाएगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आज मंडी जिला के विभिन्न क्षेत्रों में बैठकों, सम्मेलनों, जनसभाओं और रैलियों के माध्यम से चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं सांसद अनुराग ठाकुर आज कांगड़ा और धर्मशाला में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज आईपीएल मुकाबले में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच खेला जाएगा। धर्मशाला में आईपीएल सीजन का यह दूसरा मुकाबला होगा। यह मैच आज शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता।
2: एचसीए क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में आज आईपीएल मुकाबले में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच भिड़ंत होगी। धर्मशाला में आईपीएल सीजन का यह दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। इससे पूर्व बीते 11 मई को पंजाब और दिल्ली के बीच मैच खेला गया था, जिसमें मेजबान पंजाब को हार का सामना करना पड़ा था। मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 7 बजे होगा। पंजाब के लिए ये मुकाबला करो या मरो जैसा माना जा रहा है। प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए टीम को हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। मुकाबले को लेकर धर्मशाला में क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और स्टेडियम में बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
1: राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश में होने वाली पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड जवानों की भर्ती प्रक्रिया पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी है। यह रोक प्रदेश में होने वाले पंचायतीराज संस्थाओं और नगर निकायों के चुनाव को देखते हुए लगाई गई है। आयोग के अनुसार चुनाव अवधि के दौरान सरकार ऐसा कोई बड़ा निर्णय या घोषणा नहीं कर सकती जिससे मतदाताओं या चुनाव प्रक्रिया पर प्रभाव पड़े। हमीरपुर जिला का नादौन क्षेत्र पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में विकसित हो रहा है, जिसके लिए लगभग 45 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस होटल के निर्माण से नादौन और इसके पास के क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बल मिलेगा। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे हमीरपुर जिला संवाददाता।
3: हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटन रूट और शिमला मेटोर फोर लाइन नेशनल हाईवे एवं अटारी हमीरपुर मंडी नेशनल हाईवे के जंक्शन पर ब्यास नदी के किनारे स्थित नदौन कस्बे को देश विदेश के पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में नदौन शहर के अंतर चौक पर लगभग 45 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के आधुनिक होटल का निर्माण कार्य जोरों पर है। इस होटल के निर्माण से नदौन और उसके आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बल मिलेगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने नदौन में केवल होटल का निर्माण ही नहीं शुरू करवाया, बल्कि रिवर राफ्टिंग एवं एडवेंचर स्पोर्ट्स तथा अन्य गतिविधियों के लिए भी बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। आकाशवाणी के लिए हमीरपुर से मैं हरीश नंदा।
1: प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के लिए एचआरटीसी की करीब 400 बसें चुनावी ड्यूटी पर लगाई जाएंगी। राज्य चुनाव आयोग ने निगम प्रबंधन को पत्र लिखकर बसों की मांग की है। निर्वाचन आयोग ने निगम

0: गठबंधन से चुनाव ड्यूटी पर भेजी जाने वाली सभी बसें अच्छी स्थिति वाली भेजने को कहा है, ताकि दुर्गम और दूरदराज के क्षेत्रों में किसी प्रकार की तकनीकी खराबी से मतदान प्रक्रिया प्रभावित न हो। वहीं दूसरी तरफ एचआरटीसी ने भी आयोग से बसों की एवज में कुल राशि का 50% एडवांस जमा करवाने की मांग की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3 बजे। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आकाशवाणी FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुना गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी। माटी की महक है जहां, खेतों खलियानों की वही आवाज घाटियों में गूंजती है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए FM।

अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर लिसनर्स। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। वक्त हुआ है प्रोग्राम पुरानी फिल्मों से का, तो प्रोग्राम लेकर मैं हाजिर हूँ अनुराधा ठाकुर। आप सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, संगीत वो एहसास है जो बिना बोले दिल की बात कह देता है। कुछ धुनें दिल को सुकून दे जाती है, कुछ यादें फिर से जगा जाती है। और FM शिमला का साथ जब हो तो हर पल तो जिंदगी और भी खूबसूरत बन जाती है। जी हाँ, तो आपको लिए चलते हैं उस दौर में जिस दौर के गीत सीधे दिल को छूते हैं। तो लीजिए, पेश है कार्यक्रम का ये पहला गीत फिल्म आंसू बन गए फूल से। आवाजें हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की।

शुरू की महफिल सजी है, दिलों का कारवां आया है। आप सुन रहे हैं पुरानी फिल्मों से प्रोग्राम, जहां हर गीत में प्यार समाया है। जी हां दोस्तों, हर पल में प्यार है, हर लम्हे में खुशी है, कह दो तो यादें हैं, जी लो तो जिंदगी है। तो प्रोग्राम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं अभिमान फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत से सजाया है SD वर्मन ने।

0: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
1: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
0: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
1: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
1: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
2: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
3: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

दोस्तों, कुछ आवाज़ें सिर्फ सुनाई नहीं देती, दिल में उतर जाती है। वैसे ही रिश्ते शब्दों से नहीं, एहसासों से बनते हैं, और हम हर दिन आपके एहसासों से जुड़ते हैं। जी हाँ, सुरों की बारिश हो, खुशियों का मौसम आए, जो भी हमें सुने वो मुस्कुराए, हर धड़कन के साथ हम यूं ही चलते रहे। दोस्तों, दोस्ती का ये रिश्ता हमेशा महकाए। तो लीजिए, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुना रहे हैं शोले फिल्म से मन्ना डे और किशोर कुमार की आवाज़ों में। शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीत रचना आर डी वर्मन की।

आप सुन रहे हैं इस वक्त पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम, जहां हर पल है मनोरंजन, संगीत और दिल से जुड़ी बातें। शुरू का सफर दिलों तक, जहां संगीत भूले दिल की भाषा। हर पल आपके साथ आवाज जो दिल से निकले, गीतों में बसती आपकी दुनिया, हर एहसास का आपका अपना FM शिमला। तो लीजिए, इस प्रोग्राम का आखिरी गीत आपको सुना रहे हैं लव स्टोरी फिल्म से आशा भोसले और अमित कुमार की आवाजों में।

0: तो दोस्तों, इसी गीत के साथ पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है, वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
2: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
2: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
1: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
2: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। वक्त हुआ है कार्यक्रम पहाड़ी संगीत का, तो लीजिए कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं ओम प्रकाश के गाए इस लोकगीत के साथ।

0: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
1: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
0: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
1: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला लोकगीत तेला देवी की आवाज में।

0: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
1: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
2: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
3: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: पहाड़ी संगीत कार्यक्रम का आनंद इस वक्त आप ले रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला पर। लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला लोकगीत जोगेंद्र हाबी और साथियों की आवाज़ में।

0: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है, वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
1: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: लीजिए पेश है बिमला देवी की आवाज में कार्यक्रम का ये अगला लोकगीत।

0: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
1: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
0: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
1: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
1: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
2: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
3: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: तो दोस्तों, इसी के साथ पहाड़ी संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। 12 बजने को है हिंदी और अंग्रेजी समाचारों के लिए। आइए अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री तथा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केन्द्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चल रहे संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा जलवायु

0: जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य को बदल रही हैं और ऐसी उम्मीद बढ़ रही है कि ब्रिक्स इसमें सार्थक तथा स्थिरता लाने वाली भूमिका निभाएगा। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स A20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने व्यापक रणनीतिक भारत इंडोनेशिया साझेदारी की प्रगति और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के साथ सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने यह बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
1: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
0: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल नई दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज चौहान से मुलाकात कर राज्य की विभिन्न कृषि चुनौतियों से उन्हें अवगत कराया तथा मूल्य वर्धित फसल खेती पर जोर दिया। श्री चौहान ने उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार पंजाब के किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कपास, दलहन, तिलहन और बागवानी अभियान के लिए केंद्र और पंजाब सरकार मिलकर काम करेंगे। IPL क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Valsa Williams. A two-day BRICS foreign ministers meeting got underway in New Delhi today. The meeting is being chaired by External Affairs Minister S. Jaishankar. Foreign ministers and heads of delegation from BRICS member countries and partner nations are participating in the meeting. During the meeting, the foreign ministers will exchange views on global and regional issues of mutual interest. In his opening remarks, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said, "Peace and security remain central to the global order." He said the recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. He emphasized that in this complicated and uncertain world, discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities.
3: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.

0: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है, वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
1: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: तो दोस्तों, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता
1: है। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और आकाशवाणी FM 103.7 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिमला का प्रसारण। अब प्रस्तुत है महिला सम्मेलन कार्यक्रम।

0: रिश्ता ऐसा हो जिस पर नाज हो, कल जितना भरोसा था उतना ही आज हो।
1: जी हाँ, रिश्ता सिर्फ वो नहीं जो गम या खुशी के साथ हो, रिश्ता वो है जिसमें अपनेपन का एहसास हो।
0: बस ऐसा ही रिश्ता है हमारा आपके साथ
1: जी।
0: तो हाजिर हो चुके हैं हम आज का महिला सम्मेलन कार्यक्रम लेकर। आप सभी को रेणु कश्यप और
1: दयावती का
0: नमस्कार।
1: कहते हैं रेणु, यादें सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। और जब बात हो 90 वर्षों की तो ये यादें इतिहास नहीं बल्कि भावनाएं बन जाती हैं। वहीं आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों की सुनहरी यात्रा, वो सफ़र जिसने ना सिर्फ दशकों तक भारत को आवाज़ दी बल्कि हर घर, हर दिल और हर रिश्ते को जोड़ा।
0: एक छोटा सा रेडियो स्टेशन और उससे निकलती एक नई उम्मीद। जी हाँ, 8 जून 1936 को शुरू हुआ ऑल

0: या रेडियो का सफर, यानी कि हमारी आकाशवाणी का, वो समय जब रेडियो खिड़की था दुनिया को देखने का, समझने का और लोगों को जोड़ने का, जहाँ से खबरें, संगीत और दुनिया की हलचल लोगों के जीवन में आती थी।
1: जी बिल्कुल, समय बदला लेकिन रेडियो का महत्व और बढ़ता गया। जैसे ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वास्थ्य और महिला जागरूकता प्रसारण, कृषि से जुड़े सुझाव, युवाणी के जरिए युवाओं की आवाज़ और आकाशवाणी समाचार की विश्वसनीयता।
0: रेडियो ने हमेशा जन जन की ज़रूरतें समझी और देश की विविधता, भाषा, संस्कृति, लोकगीत सबको एक सूत्र में पिरोया। अब अगर बात करें डिजिटल युग में आकाशवाणी की,
1: जी,
0: तो आज के समय में रेडियो ने खुद को नए रूप में प्रस्तुत किया है।
1: जी, अब रेडियो सिर्फ तरंगों में नहीं बल्कि मोबाइल ऐप्स, डिजिटल आर्काइव, पॉडकास्ट और वेब स्ट्रीमिंग, एफएम चैनल और आकाशवाणी लाइव ऐप में भी जीवित है।
0: पर बस जो नहीं बदला है वो है आकाशवाणी की सादगी,
1: जी,
0: विश्वसनीयता और मानवीय जुड़ाव। आकाशवाणी की आत्मा आज भी वही है, सच्ची, सरल और लोगों से जुड़ी हुई।
1: बिल्कुल बहनों, आकाशवाणी का सफ़र सिर्फ तकनीक का सफ़र नहीं है बल्कि हम सभी की यादों का सफ़र है। 90 वर्षों में आकाशवाणी ने जहां देश को एकजुट किया है ना बहनों, वहीं लोगों की भावनाएं, कहानियां, गीत और अनुभव भी संजोए हैं।
0: आज 90 साल बाद हम गर्व से कह सकते हैं कि आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं बल्कि हमारे देश की धड़कन है।
1: जी हाँ,
0: और देखिए
1: यही धड़कन जो है ना, आज हर घर में, हर फोन में, हर जगह सुनाई दी जा सकती है, यानी कि मोबाइल के जरिए भी आप इसे सुन सकते हैं।
0: बिल्कुल। और देखिए, अगर हम ये कहें कि भरोसे का दूसरा नाम आकाशवाणी है,
1: जी,
0: जो सूचना और समाचारों की विश्वसनीयता पर आधारित है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
1: जी बिल्कुल, आकाशवाणी की सुबह की मंगल ध्वनि के साथ दिन की शुरुआत और दिन में खेतों में काम करते करते देश दुनिया से जुड़े रहना समाचारों के माध्यम से, और मनोरंजन की भी, जो कि थकान का एहसास ही ना होने दें।
0: बिल्कुल। और ये सब होता कैसे है? ये होता है सिर्फ आपके रेडियो के साथ।
1: जी।
0: और कई बार तो देखिए दैवती होता क्या है कि खो जाते हैं, जब हम जो लोक संगीत होता है उसकी स्वर लहरियों में कहीं खो जाते हैं और भूल जाते हैं कि हम थकाने कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और जो थकान होती है ना, जैसे कामों में काम कर रहे हैं कहीं पर, तो वो भी हम भूल जाते हैं। और ऐसा ही जो हमारा रिश्ता है सबके साथ, जो हमारे श्रोता है, और यही नहीं देखिए महिलाओं के लिए भी विशेष तौर पर कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं, उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाती है, उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी समाधान किया जाता है।
1: बिल्कुल, साथ ही क्या है कि बच्चों के लिए और युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार करना, ताकि आकाशवाणी हर वर्ग के माध्यम के साथ, वर्ग के साथ जो है अपना रिश्ता मजबूत बना सकें।
0: तो बस देखिए, आप यूं ही आकाशवाणी के साथ बने रहें और आकाशवाणी की प्रगति में अपना योगदान देते रहें और गुनगुनाते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही कामना करते हैं। और पहले गीत सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
1: बिल्कुल।

0: और देखिए दयावती, जो ये आवाज़ है यही हमारी पहचान है, और जो हमारी बहनें हैं, जो हमारे श्रोता हैं, वो हमें इसी आवाज़ से पहचानते हैं, और जो आकाशवाणी है वो भी आवाज़ के ज़रिए ही जो सब तक पहुंचती है।
1: बिल्कुल
0: और आवाज़ का ही जादू है ये,
1: जी,
0: है ना।
1: बिल्कुल।
0: और देखिए जो आजकल मौसम चल रहा है, कभी धूप छाँव, एक तो धूप में जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो ऐसे में क्या होता है ना, गर्मी में सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन का डर रहता है,
1: जी
0: और अपनी सेहत का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो छोटी छोटी बातें हैं जिनसे कि हम जो गर्मी है उसके असर को थोड़ा कम कर सकते हैं।
1: बिल्कुल रेनू, क्योंकि गर्मियों ने अपना असर दिखाना भी शुरू कर दिया है। दिन में धूप अच्छी खिली होती है ना, तो तभी एकदम से घर से बाहर हम निकलते हैं, या कई बार निकलते हैं हम घर से, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो उबले पानी की बोतल, छाता आप ज़रूर लेकर अपने साथ निकले, और कोशिश करें कि जब भी भरी दोपहर होती है तो कड़ी धूप में निकलने से पहले कुछ जो परहेज है उन्हें आप करें।
0: ये जो उबला पानी है, ये हमने ये कहा है कि जब भी आप पानी का प्रयोग, आपको वैसे भी उबाल करके ही करना है कि आपका पानी 20 मिनट तक उबला हुआ होना चाहिए, उसके बाद
1: जी
0: आप ठंडा करके उस पानी का प्रयोग करें, और वो जो पानी आपने उबाला हुआ है उसको 24 घंटे के अंदर आप उसका प्रयोग ज़रूर कर लें। और आजकल जो गर्मियाँ हैं उसमें थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है।

0: जो पानी
1: बिल्कुल
0: है, और
1: जी
0: वैसे भी कहते हैं ना कि जो पानी है उसी से जो हमारे बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो भी फैल जाती हैं। तो अगर हमें अपने सेहत का ख्याल रखना है तो सबसे पहले तो हमें जो अपना पानी है वही हमारा सबसे ज़्यादा शुद्ध होना चाहिए।
1: जी
0: और देखिए, तो छोटी सी सावधानी हुई कि भाई हम जब घर से बाहर निकलेंगे तो छाता लेकर के चलेंगे या फिर पानी की बोतल भी लेकर के ही चलेंगे। लेकिन
1: बिल्कुल
0: कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि खाने पीने की चीज़ों में अगर हम थोड़ा सा बदलाव करते हैं तो भी जो गर्मी है उसका असर हम थोड़ा कम कर सकते हैं। तो
1: जी
0: कुछ ऐसे छोटे छोटे पेय पदार्थ होते हैं जिनसे कि गर्मी से बचा जा सकता है।
1: बिल्कुल। और उनमें से एक है दही से बनी ठंडी छाछ। देखिए, अब छाछ का नाम लेते ही देखो मुंह में कितना पानी सा आने लग जाता है। आजकल गर्मी में वैसे भी छाछ जैसी जो चीज़ें होती हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि कहीं से भी मिल जाए तो हमें सेवन करना चाहिए, क्योंकि लस्सी, मट्ठा और छाछ गर्मी के मौसम का अमृत समान शीतल पेय माना जाता है। बहनों, कई तरह की शारीरिक परेशानियों को दूर करने के साथ ही सौंदर्य बढ़ाने में भी छाछ जो है वो मदद करती हैं।
0: तो देखिए, अगर छाछ के फ़ायदों की बात करें दयावती, तो सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि अगर रोज़ाना 2 बार पतली छाछ में भुना हुआ जीरा मिलाकर आप पीते हैं
1: जी
0: तो इससे क्या होगा कि एक तो गर्मी से आपको राहत मिल जाएगी।
1: जी और वहीं गर्मी की वजह से बार बार उल्टी आने पर इसे ठीक करने का घरेलू उपाय भी है, यानी कि जो उपाय है वो है छाछ। इसमें जायफल घिसकर पीने से उल्टी बंद हो जाती है। और अक्सर इन्हों आपने देखा होगा आजकल सच में गर्मियों में क्या होता है कि एकदम से उल्टी आना शुरू हो जाता है या पेट खराब हो जाना
0: जी,
1: कुछ भी, तो ऐसे में जो है ना छाछ जो है ना अमृत समान है, यानी कि हमें इसका सेवन करना चाहिए।
0: और कई बार क्या होता है दयावती कि कुछ बच्चे ना दूध पीना पसंद नहीं करते हैं,
1: जी
0: और उन्हें क्या है कि आप दही भी दे सकते हैं और छाछ तो बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है कि अगर कोई बच्चा दूध पीना पसंद नहीं करता तो उसे छाछ दे दी जाए तो वो आपको कई सारी प्रोटीन वगैरह कई चीज़ें देती है, कैल्शियम वगैरह
1: जी
0: मिलता है, तो ये चीज़ें आपको फ़ायदेमंद रहती हैं। और छाछ तो होती भी पतली है ना, इसमें एक तो पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है
1: जी
0: तो इससे क्या होता है डिहाइड्रेशन कम हो जाती है।
1: जी और देखिए, साथ ही क्या है कि हिचकी आने पर भी छाछ में एक चम्मच सौंठ मिलाकर पीने से हिचकी भी बंद हो जाती है।
0: हाँ, सौंठ पाउडर मिला करके
1: बिल्कुल
0: हल्का सा आप उसमें नमक डाल दीजिए तो क्या होता है इससे भी जो हिचकी है वो थोड़ी कम हो जाती है, बंद भी हो सकती है।
1: जी
0: और कई बार क्या होता है दयावती कि अगर बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस है, तनाव है, कोई टेंशन आपको बहुत ज़्यादा सता रही है, एकदम से भी कई बार टेंशन हो जाती है ना,
1: जी
0: तो उसमें अगर आप एकदम से छाछ का सेवन कर लेते हैं ना तो थोड़े क्या होता है कि ठंडक सी भी मिलती है, सुकून सा मिलता है और आपका माइंड ना थोड़ी देर के लिए फ्रेश हो जाता है और आप थोड़ा सा उस जो मानसिक तनाव है उससे बाहर निकल सकते हैं।
1: बिल्कुल। साथ ही क्या है कि ऑयली या फिर मसालेदार खाने के बाद भी पेट में होने वाली जलन और एसिडिटी के जो है ये छाछ शांत कर देती है। और सच में कई बार होता है हम ज़्यादा मसालेदार खाना खा लेते हैं तो पेट भी सच में भारी भारी सा रहता है।
0: जी
1: अगर हम छाछ या फिर दही का इस्तेमाल करेंगे ना तो देखिए आपको जो पेट में जो एसिडिटी है उससे भी राहत मिलेगा और वैसे खुद को भी सुकून सा मिलेगा।
0: बिल्कुल। और देखिए, जो हमारे घर के बुज़ुर्ग होते हैं ना वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी आजमाई होती है उन्होंने तभी
1: जी
0: वो बताते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो आगे वाली जनरेशन है ना वो उसके ऊपर
1: जी
0: ध्यान नहीं देती, तो ये सारी चीज़ें ना जो हमारे बुज़ुर्गों ने आजमाया हुआ है और हमें बताया है उन चीज़ों को ज़रूर सेवन करना चाहिए। जैसे हमने पहले बात कही ना कि वो जायफल घिस करके, वो मैंने खुद देखा है, जब हम बच्चे थे तो मम्मी हमें एकदम से ऐसी छाछ के बीच में ना जायफल घिस करके दे देते थे, तो ये
1: जी
0: चीज़ें हमारी जो बुज़ुर्ग है ना उनको सारी चीज़ें मालूम होती हैं। तो जो हमारी यंग जनरेशन है, एक बार जरा अपने जो बुज़ुर्ग हैं आपके घर के उनको
1: जी
0: जा करके पूछें कि उनको किन किन चीज़ों के जो ये इलाज है वो कर सकते हैं। और हम पहले भी कहते हैं आगे भी कहते रहेंगे कि जो हमारा किचन है ना, जो रसोई घर है, वो आप समझ लीजिए कि एक छोटा औषधालय ही है।
1: बिल्कुल है
0: तो ये सारी चीज़ें खान पान से ही जो हम अपने आप को स्वस्थ भी रख सकते हैं, खान पान बिगड़ने से ही हम बीमार भी पड़ते हैं, तो क्यों ना हम इन चीज़ों को अपनाएं जो हमारा ट्रेडिशन चला आ रहा है, जो हमारी संस्कृति है, उन चीज़ों को फिर से अपनाया जाए और अपने आप को स्वस्थ रखा जाए।
1: जी बिल्कुल। और देखिए ना, छाछ जो है ना बहनों, उसमें कैल्शियम और फास्फोरस का अच्छा स्रोत होता है जो कि हमारी हड्डियों और दांतों का जो मजबूत भी बनाता है। यानी कि छाछ के जितने भी अधिक फायदे देखे जाए वो उतने ही कम हैं जितने भी अधिक देखे जाए।
0: जी
1: यानी कि छाछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ध्यान रखिए कि छाछ जो है इन गर्मियों, तो आप ज़रूर अगर आपको लगे कि आसपास है या कहीं से भी अवेलेबल हो सकता है तो आप छाछ का इस्तेमाल ज़रूर करें।
0: जी बिल्कुल, लेकिन एक आपको सावधानी ज़रूर बता देंगे कि जिन लोगों को अक्सर सर्दी जुकाम ज़्यादा रहता है ना, तो थोड़ा सा वो परहेज़ कर सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल स्वस्थ हैं तो वो इनका जो छाछ है उसका प्रयोग भरपूर मात्रा में कर सकते हैं। तो अगर किसी को एलर्जी है, कुछ और चीज़ें हैं, तो ज़रूर इस

0: यूं ही आपका जो प्यार है वो भी हमें खींच करके ले आता है, और
1: जी
0: हमारा भी दिल करता है कि आपसे बातें करते रहें। और जैसे कि हमारी बहनें हमेशा से जानती हैं कि हर रोज़ हम नई नई चीज़ें बहनों के लिए लेकर के आते हैं, और वीरवार का जो दिन रहता है वो ख़ास रहता है, वो रहता है हमारे किचन से संबंधित, और किचन से संबंधित यानी कि खाना खजाना का। तो अलग अलग जो रेसिपीज़ हैं वो हम आपके लिए लेकर के आते हैं, तो आज भी बस ऐसे ही कुछ खास रेसिपीज़ आपके लिए लेकर के आए हैं।
1: बिल्कुल, यानी कि बहनों भारत को अगर स्वादों का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ हर राज्य की अपनी अलग पहचान है, अपनी अलग संस्कृति और बिल्कुल अलग स्वाद है। और जब बात राजस्थान की हो तो नाम सुनते ही आंखों के सामने रंग बिरंगी पगड़ियाँ, रेगिस्तान और लोकगीत, और साथ ही घी से महकते पारंपरिक व्यंजन याद आने लग जाते हैं।
0: बिल्कुल, और देखिए राजस्थान का खाना केवल पेट भरने के लिए नहीं बल्कि मेहमान नवाजी और प्यार का प्रतीक माना जाता है। यहाँ
1: जी
0: के व्यंजनों में देसी स्वाद होता है, और जो एक बार खाने वाला कभी भी भूल नहीं पाता है। और देखिए जो राजस्थान है वहाँ पे कम पानी और कठिन मौसम में भी राजस्थान के लोगों ने ऐसे ऐसे स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं जो कि आज पूरे देश में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं।
1: बिल्कुल, ये जाते हैं। तो आज के खाना खजाना में हम आपको लेकर चलेंगे बहनों राजस्थान की स्वाद भरी रसोई में, जहाँ बात होगी मशहूर दाल बाटी चूरमा की, जिसमें घी की खुशबू और दाल का स्वाद जो है हर किसी का दिल जीत लेता है। साथ ही जानेंगे कुरकुरी और चटपटी प्याज की कचौड़ी के बारे में, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए।
0: इसके अलावा बात होगी बिना ताज़ी सब्जियों के भी स्वाद का जादू पैदा करने वाली पापड़ की सब्जी की, तो पौष्टिक और देसी स्वाद से भरपूर बाजरे की राव की और बेसन से बनने वाली राजस्थान की बेहद लोकप्रिय गट्टे की सब्जी की।
1: जी हाँ, तो तैयार हो जाइए राजस्थान के इन शानदार स्वादों की यात्रा पर, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है वीरवार का खाना खजाना, स्वाद ऐसा जो दिल में उतर जाए।
0: तो बात करते हैं सबसे पहले दाल बाटी चूरमा की। तो देखिए राजस्थानी व्यंजनों की लिस्ट में अगर दाल बाटी चूरमा ना हो तो समझ लीजिए कि वो अधूरी है, और ये यहाँ की एक सिग्नेचर डिश मानी जाती है। तो जो बाटी आलू से बनी सख्त और अखमीरी रोटी होती है, और चूरमा पिसे हुए गेहूं का मिश्रण होता है जिसे घी और गुड़ में बनाया जाता है। और इसे बनाने के लिए गेहूं का आटा, रवा, बेकिंग सोडा, अजवाइन, नमक, घी और पानी की ज़रूरत होती है।
1: बिल्कुल, और वहीं अगर बात करें पापड़ की सब्जी की, तो पापड़ की सब्जी भी राजस्थानी मशहूर व्यंजनों में से एक है बहनों, जिसे दही की ग्रेवी और भुने हुए पापड़ से तैयार किया जाता है। बहनों स्वाद को दोगुना करने के लिए इसमें बेसन, हल्दी, कटा हरा धनिया और मिर्च पाउडर मिक्स कर दिया जाता है। इसे सादे बने चावल के साथ भी परोसा जा सकता है, और परोसते भी हैं वैसे तो। और इसे तैयार करने के लिए पापड़, तेल, घी, जीरा, अदरक, लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च, अदरक, दही और पानी की ज़रूरत होती है।
0: तो बात आती है जब प्याज की कचौड़ी की, तो यहाँ की लोकल डिश माना जाता है इसे, जो सादे आटे से बनाई जाती है।
1: जी
0: ये बिल्कुल कुरकुरी कचौड़ी, प्याज के मसालेदार मिश्रण, हल्दी, जीरा, मिर्च पाउडर, सौंफ जैसे मसालों से भरपूर बहुत सारे भरकर बनाई जाती है,
1: जी
0: जिसे हरी चटनी के साथ सर्व किया जाता है।
1: और इसके साथ जो बात आती है सब्जी अगली जो है वो है गट्टे की सब्जी। बहनों गट्टे की सब्जी में गट्टे बेसन के पकौड़े के होते हैं, जिन्हें स्टीम करके हल्का फ्राई किया जाता है, और इसके अंदर छाछ, टमाटर और मसालों से तीखी ग्रेवी बनाने के बाद इसमें पकौड़े को डुबोया जाता है, फिर इसे चावल या फिर रोटी के साथ सर्व करते हैं। और बहनों तो गट्टे के लिए जो है बेसन, तेल, दही, खाने वाला सोडा, नमक और जो है हरी
0: मिर्च,
1: जो हरी मिर्च का इस्तेमाल किया
0: टमाटर,
1: जाता है।
0: हाँ, अदरक,
1: इसके अलावा तरी बनाने के लिए जो है, जो इसकी तरी बनती है उसके लिए हमें टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, ताज़ा दही, क्रीम

0: फिर मलाई, तेल, हींग, जीरा, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, नमक, हरा धनिया की आवश्यकता होती है।
1: तो ये तो बात हुई, इतनी सारी जो रेसिपीज़ हैं हमने आपको बता दी, और एक आपके लिए सरप्राइज़ हमने रखा हुआ है, तो आपको जाना कहीं नहीं है, पहले गीत सुन लेते हैं और फिर उसके आगे बढ़ते हैं।
0: जी

0: तो बहनों, जैसे हमने आपसे कहा कि राजस्थान के जो व्यंजन है वो हमने आपको बताया, लेकिन सरप्राइज़ कहा था आपके लिए, तो सरप्राइज़ ये था कि आपको गट्टे की सब्जी कैसे बनाने हैं, दो लोगों के लिए अगर आपको बनाने हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए वो हम अभी आपको बताएंगे।
1: जी, तो नोट कीजिए बहनों, सबसे पहले गट्टे बनाने के लिए एक बर्तन में लगभग 1 कप बेसन लें। इसमें आधा छोटा चम्मच नमक लें, आधा चम्मच लाल मिर्च और चौथाई चम्मच हल्दी, थोड़ी सी अजवाइन और एक बड़ा चम्मच तेल डालें। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सख्त आटा भी आप साथ ही साथ गूंद लें।
0: इसका मतलब आपने इसको इस तरीके से बनाना है जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, उसी तरीके से आपने इसमें क्या करना है जो हमने अभी बताया कि आपको बेसन लेना है, उसमें छोटा चम्मच नमक डालना है और आधा चम्मच आपने लाल मिर्च डालनी है, हल्दी डालनी है, अजवाइन डालना है, ये सब सारी चीज़ें डालनी है आपने, और इसको एक लोई आटा जैसे सख्त गूंथते हैं ना, तो उस तरीके से आपने इसको गूंथ लेना है। फिर
1: जी
0: इसके बाद आपने क्या करना है, इस आटे के ना आपने लंबे लंबे रोल बनाने हैं। हम क्या करते हैं जैसे पूरी बनाने के लिए तो लोइयाँ बनाई जाती हैं गोल गोल, लेकिन आपने इसमें क्या करना है कि इसको लंबे रोल में बना लेना है। उसके बाद क्या करना है कि एक बर्तन में लगभग आपने 3 कप पानी उबाल लेना है, और अब इन रोल्स को करीब 8 से 10 मिनट तक आपने उसमें डाल करके पकाना है। फिर इन्हें निकाल कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है, और ये हमारे जो गट्टे हैं वो तैयार हो गए।
1: बिल्कुल। तो अब चलिए जो आपकी ग्रेवी है उसे बनाने की ओर बढ़ते हैं। तो आपको करना है ये कि एक कढ़ाई में लगभग 2 बड़े चम्मच तेल गरम करें, उसमें आधा छोटा चम्मच जीरा और चुटकी भर हींग डालें। अब एक बारीक कटा टमाटर और थोड़ा सा अदरक लहसुन पेस्ट डालकर इन्हें आप अच्छे से भून लें। इसके बाद आधा छोटा चम्मच हल्दी, छोटा चम्मच धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार लाल मिर्च डालें। अब इसमें लगभग आधा कप फेंटा हुआ दही डालें। ध्यान रखें, दही अगर ताज़ा हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। और उसके बाद आपको करना ये है कि उसे लगातार चलाते रहना है।
0: जी, और जब मसाला आपका अच्छी तरह से पक जाए तब आपने 1 कप पानी डाल लेना है, और अब आपने क्या करना है इसमें गट्टे डाल लेने हैं और उसको मिला लेना है काफ़ी देर, इसको फिर जो गट्टे हैं आपके अच्छे तरीके से इसमें मिल जाएं
1: जी
0: और आपकी सब्ज़ी तैयार होगी। तो ये जो है ये दो लोगों के लिए स्वादिष्ट जो राजस्थानी गट्टे की सब्ज़ी तैयार होगी। तो इसे आप गर्मा गर्म रोटी के साथ भी परोस सकते हैं, परांठे के साथ भी परोस सकते हैं,
1: जी
0: कोई त्यौहार हो या ना हो, लेकिन जिस दिन आप ये बनाएंगे तो उस दिन समझ लीजिए कि आपके घर में त्यौहार ही मनाया जाएगा, और
1: बिल्कुल।
0: जो कि आपके बच्चों को, आपके घर परिवार में सभी को पसंद आएगी। तो एक बार आजमा करके ज़रूर देखें, नई नई चीज़ें ज़रूर ट्राई करते रहना चाहिए, है ना।
1: मैं तो यूँ कहूँगी रेनू, कि त्योहार क्यों देखने, जब आपका मन करे तब आप बना लो, वही
0: बिल्कुल
1: त्योहार हो गया आपका। तो
0: बिल्कुल
1: उम्मीद करते कि आप इन्हें अपनाएंगी और जो है इस्तेमाल करेगी।
0: जी।

0: तो देखिए देवती, जो ये संगीत है ना, ये यूं ही इन फिजाओं में महकता रहेगा हमेशा हमेशा के लिए।
1: जी
0: और जो संगीत है उसका बहुत ज़्यादा, एक तो हमारे काम आता है, कैसे कि ये थेरेपी का काम करता है, कोई जो बीमार है उन्हें भी ना बहुत अच्छा लगता है संगीत
1: बिल्कुल,
0: सुनना। और जो संगीत है सबके लिए है और सभी इसको एंजॉय कर सकते हैं। और देखिए, अब ये बता दें बहनों को कि जो कार्यक्रम है उसका समय भी हो रहा है, आपने क्या करना है, बस बने रहना है आकाशवाणी शिमला के साथ। यूं ही हमारे जो कार्यक्रम है उनका आनंद लेते रहें। आज के कार्यक्रम महिला सम्मेलन से हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: महिला सम्मेलन कार्यक्रम अभी आपने सुना, यह आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 1 बजने को हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से

0: किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य को बदल रही हैं और ऐसी उम्मीद बढ़ रही है कि ब्रिक्स इसमें सार्थक तथा स्थिरता लाने वाली भूमिका निभाएगा। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने ये बात कही। कांग्रेस विधायक वीडी सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन के दौरान उनके नाम की घोषणा की। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज 3 दिन की यात्रा पर सिक्किम पहुंच रहे हैं। श्री सिंधिया कल टेमी तारको में सिक्किम राज्य विश्वविद्यालय का दौरा करेंगे और भालेतुंगा में स्काईवॉक परियोजना तथा गंगतोक में ऑर्किडेरियम सहित विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर उन पर निशाना साधा। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि श्री गांधी पिछले 22 वर्ष से सार्वजनिक जीवन में हैं और इस दौरान उन्होंने 54 यात्राएं की हैं। श्री पात्रा ने आरोप लगाया कि उनकी विदेश यात्राओं पर लगभग 60 करोड़ रुपये व्यक्तिगत रूप से खर्च किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जागरेटेड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जागरेट टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। ये फेमा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइचिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे चीन के राष्ट्रपति के साथ चर्चा के लिए बेहद उत्सुक हैं। श्री जिनफिंग ने ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज FM शिमला।
1: हर खुशी अब लगे नमी,
0: मस्त चुनो मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए FM।

A very good afternoon to all my dear listeners. 103.7 megahertz पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। सुरों की महफिल, यादों की बारिश और दिल को छू लेने वाले नगमों के साथ एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं FM शिमला पर, जहां हर गीत एक कहानी है, हर धुन एक एहसास है और हर ताल पर दिल झूम उठता है। हमारी मन्नतें एक दूसरे से कुछ यूँ मिल गई, हमारी मन्नतें एक दूसरे से कुछ यूँ मिल गई, वो हमारी और हम उनकी खुशियों की वजह बन गए। तो लीजिए कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं हीरोज़ फिल्म के इस गीत के साथ, सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे हैं जलीश श्रीवानी ने और संगीत दिया है साजिद वाजिद ने।

0: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
1: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
0: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
1: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

लफ्ज़ भी उनकी बगावत कर नहीं सकते, लफ्ज़ भी उनकी बगावत कर नहीं सकते, सिफारिशें जिनकी दिल करते।

0: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
1: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
2: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
3: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

दोस्तों, संगीत वो जादू है जो बिना बोले दिल की बात कह देता है, और जब सुर दिल से निकलते हैं तो महफिल नहीं रूह तक महक उठती है। तो लीजिए, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं झूम बराबर झूम फिल्म से राहत फतेह अली खान और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने, संगीत या है शंकर एहसान लॉय ने।

0: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
1: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

फिल्म संगीत प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर। तो लीजिए, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं जानशीन फिल्म से सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में। शब्द रचना है प्रवीण भारद्वाज की, संगीत रचना आनंद राज आनंद की।

0: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
1: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

चमेली फिल्म से अभी आपने एक गीत सुना, सुनिधि चौहान की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे थे इरशाद कामिल ने और संगीत से सजाया था संदेश शांडिल्य ने।

दोस्तों, फिल्मों के गीत सिर्फ धुन नहीं होते, ये हमारी यादों के सबसे खूबसूरत पन्ने होते हैं। ताल से ताल मिले तो दिल मुस्कुराते हैं, और जब गीत ऐसे हो तो जमाने याद आते हैं। कयामत फिल्म का गीत आपको सुना रहे हैं अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। शब्द रचना है समीर की और संगीत रचना नदीम श्रवण की।

0: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
1: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
2: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
3: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

फिल्म संगीत प्रोग्राम इस वक्त आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर। लीजिए पेश है कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म हंसे तो फंसे से चिन्मय श्रीपदा की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत दिया है विशाल और शेखर ने।

0: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है, वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में, सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
1: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान, राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: तो लीजिए दोस्तों, इस कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवा रहे हैं यारियां फिल्म से शफाकत अमानत अली की आवाज़ में।

तो दोस्तों मिलते रहेंगे नए गीतों, नई महफिलों और नए एहसासों के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सुनते रहिए एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। दोपहर के 2 बज चुके हैं, वक्त हुआ है कार्यक्रम सबरंग का। तो लीजिए, सबरंग कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम की आवाज में ये म्यूजिकल नंबर।

0: तो दोस्तों, इसी गीत के साथ सबरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। 2:15 होने को हैं। दोपहर हिंदी समाचारों के लिए आइए अब आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पेइचिंग में महत्वपूर्ण वार्ता की। इसमें ईरान संघर्ष, वैश्विक ऊर्जा संकट, शुल्क और व्यापार तनाव प्रमुख मुद्दे। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में PV सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर

0: ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
1: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने सहायता कर सकता है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।
2: बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग़ची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो श्री उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोलो सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबूधाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी के अंतर्गत ADNOC गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने 10 वर्ष के लिए लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुमानित मूल्य के LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक पहुँचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।
4: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं रहे हैं। अब हमारी साझेदारी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे कई नए क्षेत्रों तक विस्तार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूरा क्षेत्र अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है।
3: UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जहां भारत का निर्यात $37 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस ने 10 दिन से चल रही अनिश्चितताओं को खत्म करते हुए आज VD सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये घोषणा कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। UDF ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा की मंत्रिपरिषद के नवनियुक्त सदस्यों को विभाग आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रामेश्वर तेली को विकास, श्रम कल्याण और चाय बागान, जनजाति तथा आदिवासी कल्याण विभाग दिए गए हैं।

0: अतुल बोरा पंचायत और ग्रामीण विकास, असम समझौते का क्रियान्वयन, सीमा सुरक्षा और विकास तथा उत्पाद शुल्क विभाग संभालेंगे। चरण बोरो को परिवहन विभाग और बोडोलैंड कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। श्रीमती अजंता नियोग महिला और बाल विकास तथा पर्यटन विभाग संभालेंगी। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की है, जिसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। भारत ने कहा है कि कल ओमान के तट पर हुए भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में वाणिज्यिक जहाजों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाए जाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें त्वरित और समन्वित कार्रवाई तथा स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। भारतीय सेना और नौसेना ने आज अंतर सेवा सहयोग को मजबूत करने और अधिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतर सेवा सहयोग को संस्थागत रूप देना और परिचालन सामंजस्य को मजबूत बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
1: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
0: प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA के प्रावधानों के अंतर्गत जायग्रेड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रेड टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। पंजाब पुलिस ने 5 मई को जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के मुख्य द्वार के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी के संपर्क में था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इस बीच उसी रात अमृतसर में एक सैन्य चौकी पर हुए एक अन्य विस्फोट की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर बिहार के अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ऋतुराज सिंह मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे को हृदय विदारक बताया है। डॉ. यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2025 की रिपोर्ट में कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश को ये मान्यता दी। वर्ष 2023 तक जम्मू कश्मीर आकांक्षी प्रदेश की श्रेणी में था। वर्ष 2024 में इसे तेजी से प्रगति करने वाले प्रदेश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है।

0: कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
1: बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज श्री जिनफिंग के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन का भविष्य उज्जवल होगा। ट्रंप के साथ अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक नेता भी आए हैं। इनमें एनवीडिया के जेंसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह वर्ष चीन अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक होगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में जिनफिंग ने कहा कि व्यापारिक संघर्ष में कोई भी विजय नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप की यह यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर अप्रैल में 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई। पिछले वर्ष मार्च में यह 3.88% थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुसार मुद्रास्फीति में यह वृद्धि मुख्य रूप से खनिज तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, विनिर्मित उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण हुई। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की अमाली शूज को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ब्रायन जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल की जोड़ी को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।
2: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
3: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
2: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
3: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: एक 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 2:30 हुए हैं। वक्त हुआ है कार्यक्रम शिखरों के स्वर का। इस कार्यक्रम में आप आनंद लेते हैं लोकगीतों का। तो लीजिए कार्यक्रम का आगाज करते हैं दीप राम ठाकुर के गाए इस लोकगीत के साथ।

0: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
1: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
2: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
3: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: लीजिए पेश है जगदेव की आवाज में इस कार्यक्रम का अगला लोकगीत।

0: कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है, वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
1: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: शिखरों के स्वर, इस कार्यक्रम का आनंद आप ले रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर। लीजिए कार्यक्रम का अगला लोकगीत, आपको सुनवा रहे हैं राजेंद्र कुमार शर्मा की आवाज़ में।

0: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
1: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
0: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
1: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
3: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
1: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: लीजिए, अब आपको सुनवा रहे हैं सुनपति और लक्ष्मी की आवाजों में इस कार्यक्रम का अगला लोकगीत।

0: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है, वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
1: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: दोस्तों, इसी लोकगीत के साथ शिखरों के स्वर कार्यक्रम अब समाप्त होता है। 3 बजने को है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा।
1: आकाशवाणी शिमला का प्रसारण 3 बजने को है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आकाशवाणी FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के साथ साथ DTH सेवा पर भी उपलब्ध हैं।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्य सरकार द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे एंटी चिट्टा अभियान के तहत पुलिस की निगरानी बढ़ाई गई है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। सरकार का एंटी चिट्टा मॉडल जहां अपराधियों पर नकेल कसने में कामयाब हो रहा है, वहीं अन्य राज्यों में भी इस मॉडल की चर्चा होने लगी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय ने इस बारे में हिमाचल प्रदेश से रिपोर्ट मांगी है। राज्य सरकार चिट्टा जैसे नशे से निपटने और चिट्टा तस्करी का समूल नाश करने के लिए जल्द ही एंटी चिट्टा अभियान का दूसरा चरण शुरू करने जा रही है। एंटी चिट्टा मॉडल के तहत प्रदेश में चिट्टे के कारोबार में संलिप्त अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, वहीं इस समस्या से पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश के 4 नगर निगमों मंडी, धर्मशाला, पालमपुर और सोलन व स्थानीय शहरी निकायों के लिए 17 मई को मतदान होगा। ऐसे में वोट डालने के लिए अब 3 दिन शेष रह गए हैं और इन चुनावों के लिए प्रचार अभियान भी तेज हो गया है। भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने आज पालमपुर नगर निगम के विभिन्न वार्डों में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में लोगों से मतदान की अपील की। इधर सोलन नगर निगम चुनाव प्रचार के दौरान स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कांग्रेस की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि समृद्ध शहर अभियान के तहत सोलन अव्वल स्थान पर रहा है। शांडिल ने कहा कि सोलन को सीवरेज से जोड़ना उनकी प्राथमिकता है और शहर की पेयजल समस्या सहित अन्य समस्याओं का भी निपटारा किया जाएगा।
3: पूरे वार्ड देख चुका हूँ और जो लोगों का रुख है वो काफी फेवरेबल है कि भाई हम कांग्रेस की ही निगम बनाएंगे, तो अब तो हमें पूरी आशा है, हमारी जीत लगभग निश्चित है।
2: भारतीय जनता पार्टी ने आज नगर निगम मंडी चुनावों के तहत राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता व विधायक राकेश जम्वाल ने आरोप पत्र जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में मंडी की जनता को केवल उपेक्षा, अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। राकेश जम्वाल ने कहा कि कांग्रेस ने मंडी के प्रति हमेशा सौतेला रवैया अपनाया है और 2025 की आपदा के दौरान ये पूरी तरह उजागर हो गया। उन्होंने विश्वास

0: बताया कि मंडी नगर निगम चुनाव में जनता कांग्रेस सरकार को करारा जवाब देगी और भाजपा को अपना आशीर्वाद देगी। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने आज धर्मशाला नगर निगम में चुनाव प्रचार किया और लोगों से पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव में जनता के पास कांग्रेस को जवाब देने का मौका है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने सरकार बनने से पहले 10 गारंटियां दी थी लेकिन एक भी पूरी नहीं हुई और धर्मशाला को स्मार्ट सिटी बनाने के दावे भी अधूरे रह गए।
1: जनता आपके पास अवसर है कि कांग्रेस को जवाब दे सके। आज से 3 साल पहले जो कांग्रेस ने वायदे किए थे सरकार बनाने से पहले, 10 गारंटियां दी थी, 10 में से एक भी पूरी नहीं हो पाई। धर्मशाला स्मार्ट सिटी बनना था, उसके काम को पूरा नहीं कर पाए। ऐसे अनेकों वायदे जो जनता से किए थे वो अधूरे और खोखले रह गए। अब जनता के पास है वोट के माध्यम से करारा जवाब देने।
0: राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आज नई दिल्ली में विश्व हिंदू पीठ के अध्यक्ष आचार्य मदन द्वारा रचित पुस्तक शारदा पीठ सती देश कश्मीर का विमोचन किया। राज्यपाल ने इस पुस्तक को जम्मू कश्मीर की पुरातन आध्यात्मिक सांस्कृतिक व शैक्षिक विरासत का महत्वपूर्ण दस्तावेज बताया। उन्होंने आचार्य मदन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ये शोध आधारित पुस्तक शारदा पीठ के ऐतिहासिक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व और कश्मीर की पहचान से उसके गहरे संबंध को प्रतिबिंबित कर रही है। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज आईपीएल मुकाबले में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच खेला जाएगा। धर्मशाला में आईपीएल सीजन का ये दूसरा मुकाबला होगा। ये मैच आज शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता।
2: एचपीसीए क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में आज आईपीएल मुकाबले में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच भिड़ंत होगी। धर्मशाला में आईपीएल सीजन का यह दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। इससे पूर्व बीते 11 मई को पंजाब और दिल्ली के बीच मैच खेला गया था जिसमें मेजबान पंजाब को हार का सामना करना पड़ा था। मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा जबकि टॉस 7 बजे होगा। पंजाब के लिए ये मुकाबला करो या मरो जैसा माना जा रहा है। प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए टीम को हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। मुकाबले को लेकर धर्मशाला में क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और स्टेडियम में बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुँचने की संभावना है। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से शर्मा।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचारों के बाद अब प्रस्तुत है कुल्लू जिला की चिट्ठी जिसके लेखक है आशीष शर्मा, वाचक स्वर प्रभा शर्मा का।
4: जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह कुल्लू के ढालपुर मैदान में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह की अध्यक्षता कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने की। उन्होंने इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भव्य परेड की सलामी ली। ड्रेजिंग व खनन को लेकर जिला स्तरीय कमेटी की बैठक उपायुक्त अनुराग चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में हुई। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कुल्लू के माध्यम से नदियों में बाढ़ के खतरों को कम करने और आपदा न्यूनीकरण के उद्देश्य से नदी तल में ड्रेजिंग और खनन कार्यों की निगरानी के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति की बैठक में उपायुक्त ने जानकारी दी कि समिति का उद्देश्य बाढ़ की रोकथाम के लिए ड्रेजिंग योग्य क्षेत्रों की पहचान करना, राजस्व दस्तावेज तैयार करना और निर्देशांक सुनिश्चित करना व ड्रेजिंग की जाने वाली सामग्री की मात्रा निर्धारित करने के लिए वन विभाग के माध्यम से स्टडी सुनिश्चित करना है। कुल्लू मनाली एयरपोर्ट से जुड़े मुद्दों पर द्विमासिक बैठक का आयोजन सहायक आयुक्त जयवंती ठाकुर की अध्यक्षता में किया गया जिसमें सुरक्षा इत्यादि संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में जानकारी दी गई कि हवाई अड्डा सुरक्षा व खतरों से बचाव के लिए हवाई अड्डा से 10 किलोमीटर की परिधि में पक्षी गतिविधियों से मुक्त होना चाहिए। इसके अलावा प्रवासियों द्वारा शाड़ाबाई में झुग्गी बनाकर ब्यास नदी में हो रहा प्रदूषण पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। देश विदेश में प्रसिद्ध बुनकर सोसाइटी भुट्टिको के सभागार में ठाकुर वेदराम जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली कई प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मंत्री सत्य प्रकाश ठाकुर ने की जबकि मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कुलपति गुलाब सिंह आजाद मौजूद रहे। स्वर्गीय ठाकुर

0: राम की स्मृति में आयोजित इस समारोह में सहकारिता के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय योगदान के लिए श्रीलंका के WEO हैरथ को वेदराम अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। जिला मुख्यालय कुल्लू में पीपल जातर मेला खूब धूमधाम से मनाया गया। 3 दिनों तक चला पीपल मेला देवता गौहरी की भव्य शोभा यात्रा के साथ शुरू हुआ। गौहरी देवता अपने हरियाणों के साथ अपने लाओ लश्कर सहित ढालपुर मैदान में पहुंचे। यहां पर उनके स्थान पर देवता के हरियाणों ने उनकी पूजा अर्चना की और देवता ने देव रीति से मेले का आगाज किया। मेले में शिरकत करने के लिए बाहरी राज्यों से काफी संख्या में व्यापारी आए थे और मेले में जमकर कारोबार हुआ। शाम के समय लालचंद प्रार्थी कला केंद्र में सांस्कृतिक संध्याओं का भी आयोजन किया गया, जहां स्थानीय कलाकारों ने अपने कार्यक्रमों से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। हिमाचल प्रदेश ब्राह्मण जन कल्याण सभा का साधारण अधिवेशन देव सदन कुल्लू में भारी संख्या में ब्राह्मण समाज की उपस्थिति के बीच सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अधिवेशन में समाज के संशोधित संविधान, वैदिक पद्धति, संस्कारों तथा सनातन धर्म की सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित रखने पर व्यापक मंथन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन गौतम ने की। कार्यक्रम में पूर्व सत्र न्यायाधीश DD शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि लीला गोपाल शर्मा, भूपेंद्र गौतम सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बीते दिनों कुल्लू के ढालपुर मैदान में निरंकारी संत समागम का आयोजन हुआ, जिसमें माता सुदीक्षा महाराज ने श्रद्धालुओं को संबोधित किया। इस समागम में पंजाब, हरियाणा, जम्मू, राजस्थान व प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और माता सुदीक्षा महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। बीते दिनों लगातार बारिश होने के चलते व तापमान में गिरावट होने के कारण लोगों को एक बार फिर से ठंड का सामना करना पड़ा। इसके अलावा कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हुई, जिससे सेब, प्लम सहित अन्य फलों व सब्जियों को नुकसान पहुंचा, जिसके कारण किसान और बागवान चिंतित दिखे।
1: प्रभा शर्मा से आप सुन रहे थे कुल्लू जिला की चिट्ठी, जिसके लेखक थे आशीष शर्मा। इसे आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आकाशवाणी FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुना गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 MHz FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 MHz FM शिमला।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला, जहां बातें भी दिल से और गाने भी दिल से। जी हां दोस्तों, वक्त हुआ है प्रोग्राम फिल्म संगीत ओल्ड हिट्स का। यादों की गलियों से एक खूबसूरत सा नगमा लाए हैं, सुनिए और खो जाइए संगीत की दुनिया में। तो लीजिए, कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं फिल्म मांग भरो सजना के इस गीत के साथ आशा भोसले की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
1: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
0: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।

तो लीजिए दोस्तों, अब पेश है एक ऐसा नगमा जिसे सुनते ही दिल पुरानी यादों की गलियों में निकल पड़ता है। गीत सिर्फ संगीत नहीं, मोहब्बत, एहसास और ज़िंदगी की खूबसूरत कहानी है। कुछ गीत पुराने होकर भी नए लगते हैं, क्योंकि उनमें छुपे एहसास कभी पुराने नहीं होते और ये गीत सीधे आपके दिल को छू जाते हैं। तो लीजिए, आपको सुनवा रहे हैं कलाकार फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं इंदिवर मनोज कुमार ने और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
1: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
2: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
3: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है, वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
2: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: सूरज की किरणों के साथ हम लाए हैं संगीत और मुस्कान की सौगात। तो आप यूं ही सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए एफएम शिमला के साथ। प्ले कर रहे हैं आप सभी दोस्तों के लिए इस प्रोग्राम का आखिरी गीत, सुहाग फिल्म से मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

तो दोस्तों इसी गीत के साथ फिल्म संगीत ओल्ड हिट्स प्रोग्राम अब समाप्त होता है। एक 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। 3:30 हुए हैं। वक्त हुआ है युवा साथियों के पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी का।

सभी युवा साथियों को मेरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला पर युववाणी कार्यक्रम, जहां हर गीत एक एहसास है और हर विचार एक नई दिशा। मैं प्रथा इस खूबसूरत सफ़र में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, जीवन सिर्फ किताबों, परीक्षाओं और अंकों तक सीमित नहीं होता। असल ज़िंदगी वहाँ शुरू होती है जहाँ हमें रोज़ नई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कभी सही निर्णय लेने की चुनौती, कभी भावनाओं को संभालने की, तो कभी समय और जिम्मेदारियों को संतुलित करने की। और इन सभी परिस्थितियों में जो चीज़ हमें मजबूत बनाती है, उसे हम कहते हैं लाइफ स्किल्स। ये स्किल्स क्या हैं? सरल भाषा में कहें तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से मैनेज करने और लाइफ की चुनौतियों का सामना करने की एबिलिटी, चाहे वो स्ट्रेस मैनेजमेंट हो या दूसरों की भावनाओं को समझना। ये सब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। हमारी छोटी छोटी आदतें ही हमारे भविष्य को शेप करती हैं, जैसे समय और काम का ऑर्गेनाइज होना। ये बदलाव बड़ी कामयाबी की नींव रखते हैं। कई बार ज़िंदगी के शोर में हम खुद को पीछे छोड़ देते हैं। लाइफ स्किल्स का पहला कदम यही है कि हम खुद को पहचानें। जब हमें अपनी कमियां और खूबियों का एहसास होता है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। तो आइए सुनते हैं आज का पहला गीत, आत्मखोज के नाम।

तो दोस्तों, लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज होता है डिसीजन मेकिंग, यानी सही समय पर सही फैसला लेना। हम अक्सर डर जाते हैं कि अगर फैसला गलत हुआ तो क्या होगा। यहीं पर काम आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग और रिस्क मैनेजमेंट की स्किल। जोखिम लेना डरावना हो सकता है, पर बिना रिस्क के तरक्की मुमकिन नहीं है। इसके साथ ही सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए हमारी ताकत क्या है। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक बार एक मूर्तिकार पत्थर तराश रहा था। किसी ने पूछा, तुम इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बना लेते हो? उसने कहा, मूर्ति तो पत्थर के अंदर ही थी, मैंने बस उन बेकार चीज़ों को हटा दिया जो मूर्ति नहीं थे। हमारी लाइफ भी ऐसी ही है। लाइफ स्किल्स की मदद से हमें उन अनचाहे डरों और आदतों को हटा सकते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। अपनी जगह पर मजबूती से खड़े रहना ही असली जीत है। जब दुनिया आप पर सवाल उठाए या हालात आपके खिलाफ हो, तो ज़रूरी है आप डिस्ट्रैक्ट ना होकर मेहनत करते रहें। यही एक विनर की सही पहचान है। तो आइए अब सुनते हैं ऐसा ही एक गीत जो सिखाता है कि हालात कैसे भी हों, हमें विचलित नहीं होना है।

युवाणी में आज बात हो रही है लाइफ स्किल्स की, तो क्यों ना थोड़ा ध्यान कम्युनिकेशन स्किल्स की ओर भी दिया जाए। अक्सर लोग समझते हैं कि अच्छी अंग्रेजी बोलना ही कम्युनिकेशन है, लेकिन सच ये है

कि इसका मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही बात कहना और सामने वाले को ध्यान से सुनना भी है। हमारे शब्द एक ऐसी शक्ति है जो किसी का दिल जीत भी सकते हैं और किसी को दुख भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए अपनी भाषा और अपनी टोन को समझना और इसका विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण पहलू है, मेंटल हेल्थ। हम अक्सर बाहरी दुनिया को सुधारने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने अंदर चल रहे शोर को अनसुना कर देते हैं। मानसिक स्वास्थ्य कोई मजबूरी नहीं है, ये एक आवश्यकता है। कौन सी बातें आपको प्रभावित करती हैं, इसे गहराई से समझिए। अपनी मानसिक शांति के लिए बाउंड्रीज तय करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए जो भी कहें या सुने सोच समझ के करें। हमारी अगली धुन उसी गहराई और खामोशी की बात करती है जो अक्सर हमारे शब्दों के पीछे छिपी होती है। आइए सुनते हैं ये गीत।

तो दोस्तों, अब तक हमने मन और भावनाओं की बात की, लेकिन जीवन केवल सोच विचार से नहीं चलता। लाइफ को स्मूथली जीने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स की बहुत ज़रूरत है, जिन्हें हम अक्सर छोटा समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक सेफ्टी अवेयरनेस की। असल ज़िंदगी में छोटी छोटी सावधानियाँ बड़ी दुर्घटनाओं को रोक सकती हैं, जैसे गैस लीक होने पर खुली आग या स्विच ऑन करने से बचना, इलेक्ट्रिक उपकरणों को आवश्यक रूप से चालू ना छोड़ना, और किसी इमरजेंसी में घबराने के बजाय सेफ एग्जिट या मदद पर ध्यान देना। इसके बाद आती है फाइनेंशियल नॉलेज। दोस्तों, पैसे कमाना एक बात है, लेकिन उसे सही तरीके से मैनेज करना, सेविंग्स करना और स्मार्ट स्पेंडिंग समझना सभी को आना चाहिए। इंडिपेंडेंट होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुकिंग सिर्फ शौक नहीं बल्कि एक सर्वाइवल स्किल है, और बेसिक कुकिंग हर व्यक्ति को आनी चाहिए। साथ ही ड्राइविंग भी एक ऐसी स्किल है जो सभी को आनी चाहिए, ताकि इमरजेंसी में आपको किसी पर डिपेंड ना होना पड़े। बेसिक मैनर्स और साफ सफाई रखना हमें ज़िम्मेदार नागरिक बनाते हैं। याद रहे, बड़ा बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा बनना बहुत बड़ी बात है। असली आज़ादी अपनी सुरक्षा, फाइनेंसेस और फैसले खुद संभालने में है। चलिए महसूस करते हैं इस फ्रीडम को हमारे अगले गीत के साथ।

तो दोस्तों, मुझे एक बहुत ज़रूरी बात याद आती है। कई बार हम स्किल्स और नॉलेज के आधार पर लोगों को छोटा बड़ा समझने लगते हैं। समाज में आज भी जेंडर बायस किया जाता है, जैसे खाना बनाना सिर्फ लड़कियों का काम है और गाड़ी चलाना या रिपेयरिंग का काम सिर्फ लड़कों का। हमें इस सोच को बदलना होगा। हुनर का कोई जेंडर नहीं होता और नॉलेज पर किसी एक का हक नहीं। अक्सर लोग थोड़ा सा ज्ञान पाकर दूसरों को नीचा दिखाने लगते हैं। याद रखिए, असली स्किल्ड इंसान वो है जो दूसरों के साथ अपनी नॉलेज बांटे। आज के कंपेटिटिव दौर में सबसे बड़ा स्किल है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। अगर आप सिर्फ वही करेंगे जो आपको आसान लगता है, तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। अनिश्चित माहौल में खुद को एडजस्ट करना और नई चीज़ें सीखना ही आपको भीड़ से अलग करेगा। मोटिवेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं जो सिर्फ बाहर से मिले। यह आपके अंदर की वो आग है जो आपको सिखाती है कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, आपको हार नहीं माननी है। अपनी ईगो को साइड में रखकर कुछ नया सीखना ही आपको लाइफ का मास्टर बनाएगा। ज़िंदगी हर रोज़ एक नया मौका देती है। अपनी एनर्जी समेटिए, कंफर्ट जोन की दीवारों को तोड़िए और निकल पड़िए अपनी मंजिल की तलाश में। इन्हीं विचारों के साथ आइए सुनते हैं ये आखिरी गीत।

0: साथियों, वक्त हो चला है कार्यक्रम को विराम देने का। याद रखिए कि लाइफ स्किल्स हमें सिर्फ बेहतर नहीं बनाती, बल्कि हमें हर हालात के लिए तैयार करती हैं। सही सोच, सही फैसले और आत्मनिर्भरता ही असली स्ट्रेंथ है। कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगी कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर की तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। इसी के साथ मैं प्रथा आपसे इजाज़त लेती हूँ। युववाणी के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। सुनते रहिए आकाशवाणी FM शिमला। नमस्कार।
1: मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। शाम के 4 बजने को है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: और संदेश टू सोल्जर्स में आज आपने समय निकालकर जो यहाँ शिरकत की इस कार्यक्रम में, उसके लिए आपके हृदय से आभारी हैं।
1: धन्यवाद विनीता जी, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच का हिस्सा बनना वास्तव में मेरे लिए सम्मान और गर्व की बात है, जहाँ मुझे पूरे भारत के सैनिकों तक अपना संदेश पहुँचाने का अवसर मिल रहा है।
0: जी शुक्रिया, इसलिए भी कि आपने आकाशवाणी में ना केवल आकर हम लोगों को अनुभवों का खजाना सौंपा है, बल्कि इसलिए भी कि आप इसके लिए हमारे ही आभार जता रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बात मैं कार्यक्रम शुरू करने से पहले ही आपसे कहना चाहती हूँ, यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल, आप इतनी यंग हैं, और ऐसे में जब हम आपके साथ रिटायर्ड शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो थोड़ा सा समझ नहीं आता, क्योंकि रिटायर तो आमतौर पे व्यक्ति 60 साल की उम्र के बाद होता है, तो आप इतनी छोटी सी उम्र में रिटायर्ड कैसे हैं?
1: बात आपकी सही है, क्योंकि मैं भी रिटायर्ड ये शब्द थोड़े से बुजुर्ग लोगों के साथ एसोसिएट करती थी, बट क्योंकि मैंने अपने लाइफ के प्राइम 14 साल एयरफोर्स को समर्पित किए हैं और उसके बाद मैं सेवानिवृत्त हुई हूँ, इसी वजह से वो रिटायर्ड शब्द है, और वो मेरे लिए है पक्का, और डेफिनेटली इट इज नॉट फॉर द रैंक बट इट इज फॉर मी फ्रॉम द एयरफोर्स।
0: दैट्स सो सो ब्यूटीफुल। अच्छा एक बात बताएं, आपको कैसे लगा कि आपको एयरफोर्स में आना है, कौन था इसके पीछे या किससे आपको प्रेरणा मिली?
1: विनीता जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके पीछे कोई व्यक्ति नहीं है, बट ये ऐसी एक चीज है जो मुझे विरासत में मिली है
0: जी।
1: क्योंकि अगर मैं शुरुआत करूँ तो मेरे दादाजी स्वतंत्र सेनानी थे जो भारत के आज़ादी के लिए लड़े। उसके बाद परंपरा बढ़ाई गई मेरे फादर ने, जो इंडियन आर्मी में भर्ती हुए और 25 साल की सेवा जो उन्होंने देश के लिए की, उसके बाद वो रिटायर्ड हुए एज कर्नल। और परिवार की मैं तीसरी पीढ़ी हूँ जिसने सिर्फ यूनिफॉर्म वर्दी पहनने का सपना ही नहीं देखा, बल्कि उसको जीने का सपना भी देखा।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसीलिए दोस्तों मैंने आप सभी से ये बात कही कि आज की हमारी अतिथि अनुभवों का खजाना है, और इतना कुछ है इनके पास हमें बताने के लिए, क्योंकि आपके परिवार में प्रारंभ से ही फोर्सेस के लिए बहुत रुझान रहा है ना। तो भारतीय वायुसेना में यानी इंडियन एयरफोर्स में जब आप आई तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था?
1: अच्छा विनीता जी मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगी मेरे बचपन के तरफ, जहाँ पे मेरा सपना तो डॉक्टर बनने का था। जैसे उस टाइम पे जब मैं छोटी थी उस टाइम मेजरली दो प्रोफेशन ज्यादा नामचीन हुआ करते थे, एक था डॉक्टर दूसरा था इंजीनियर, की ये दो प्रोफेशन है तो आपने जिंदगी में कुछ पा लिया है नहीं तो नहीं। जो मैं अभी सोचती हूँ ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत बातें हैं, और भी बहुत अच्छे प्रोफेशन हैं। बट हालांकि उस टाइम मेरा सपना था डॉक्टर बनने का, और जैसे मैंने आपको बताया मैंने घर पे एक ही प्रोफेशन देखा था, वो था देश सेवा का
0: जी।
1: तो तब मैंने ठाना कि अच्छा डॉक्टर बनूंगी तो डिफेंस फोर्सेस में ही डॉक्टर बनूंगी, ताकि मेरे दो सपने पूरे हो सके, एक तो देश की सेवा और देश के नागरिकों की सेवा। तो मैं पढ़ाई में अच्छी थी, पढ़ाई करती चली गई, अच्छा किया, बायो में मेरा काफ़ी रुझान था, काफ़ी इंटरेस्ट था, तो बायो लिया। जब मैंने प्री मेडिकल एग्जाम दिया तब मेरे उतने अच्छे नंबर नहीं आए कि मैं MBBS कर पाऊँ, हालांकि इतने नंबर थे कि मुझे डेंटल में एडमिशन मिल सकता था, लेकिन उस टाइम ऐसा लगा कि नहीं करना है तो MBBS ही करना है। तो जब मैं कॉलेज में एंटर होने वाली थी, उस टाइम मेरा 12th होने के बाद, मेरे फादर तब तक रिटायर्ड हो चुके थे और वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में नागपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे।
0: अच्छा,
1: हालांकि उन्होंने और मेरी मम्मी ने कभी भी मेरे ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला कि तुमने ये करना है या वो प्रोफेशन चुनना है, बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मेरे फादर के मन में था कि मेरी बेटी भी इंजीनियर बने उन्हीं की तरह। तो उन्होंने देखा कि मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ, तो उन्होंने बोला मेडिकल के तरफ अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, इंजीनियरिंग कर लो, ये भी एक अच्छा प्रोफेशन है, वहाँ से भी तुम कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही लोगी, इतना विश्वास उनको मेरे ऊपर था। तो वहाँ से शुरुआत हुई कि ठीक है, इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम दी, मुझे एडमिशन मिला नागपुर यूनिवर्सिटी के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिला, वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच उस टाइम की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में मुझे एडमिशन ली, एंड फिर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया इन इंजीनियरिंग। तब तक लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता था कि आधा सपना तो मेरा

0: रह गया है जो है डॉक्टर बनने का।
1: हाँ।
0: लेकिन जो बचा आधा था शायद वो भी कहीं छूटता नजर आ रहा था मुझे। लेकिन एक और बात बताना चाहूंगी विनीता जी कि ये हम जो कहते हैं कि हमने सपना छोड़ दिया, वो बात नहीं होती, सपना हमें नहीं छोड़ता, ये बात होती है।
1: सो ब्यूटीफुल, कितनी प्यारी बात कही है आपने।
0: सो कहीं ना कहीं वो सपना मुझे ही चेस कर रहा था कि नहीं, तुमने अगर तुम अगर डॉक्टर नहीं बनी हो तो डिफेंस फोर्सेस में तो पक्का जाओगी। सो दैट वॉज द पॉइंट जब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे एयरफोर्स इंजीनियरिंग कॉलेज में नागपुर में रिक्रूटमेंट के लिए आए। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी जा रहे थे तो मैं भी गई उनके साथ कि चलो जाते हैं, क्योंकि थर्ड ईयर तक हमारा प्लेसमेंट हो चुका था वन ऑफ द बेस्ट आईटी कंपनीज में। सो लाइफ तो सेट थी। एज अ यंग पर्सन मुझे लगता था लाइफ में और क्या चाहिए, आपका ग्रेजुएशन हो गया है, आपकी नौकरी लग चुकी है, पैसे कमाना है एंड लाइफ में मजे ही मजे हैं, ये होता था उस टाइम। एंड अभी भी काफी यंग लोगों का दिमाग में माइंडसेट ये होता है। बट स्टिल जैसे मैंने आपको बताया कि वो सपना था मेरे मन में कि वर्दी तो पहननी है, यूनिफॉर्म वॉज माई ड्रीम। सो वैसे करके देन रिक्रूटमेंट के लिए हम गए, एयरफोर्स ने एग्जाम्स कंडक्ट की। उस टाइम फास्ट ट्रैक एग्जाम एक होता था, उसमें एग्जाम हुई, क्लियर किया। एंड द नेक्स्ट थिंग जो मेरे ध्यान में है, मेरे जहन में है कि हम मैसूर पहुँचे, मैं और मेरे फ्रेंड्स SSB देने के लिए। और आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, SSB के जो वो 5 दिन होते हैं, मतलब वो लाइफ के आर द बेस्ट डेज, दैट इज द गोल्डन पीरियड। और एक संदेश जो मैं अभी देना चाहूंगी देश के सब यंग बच्चों को कि रिजल्ट कुछ भी हो लेकिन यू शुड एंजॉय, यू शुड एक्सपीरियंस दोज 5 days ऑफ SSB। वो आपको आपके खुद के बारे में इतना सिखाता है जो और कहीं आपको सीखने नहीं मिलेगा।
1: अमेजिंग। और ना सिर्फ सीखने को बहुत कुछ मिलता है बल्कि ये आपका वो सपना पूरा करता है कि आपके तन पर यूनिफॉर्म हो, मन में जज्बा हो और हमेशा आगे बढ़ने के लिए कदम उठें।
0: जी बिल्कुल।
1: और साथ के साथ आपके आपके कदम तो जमीन पर नहीं, आपके कदम तो आसमान के लिए है ना। तो आपने डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने का सपना ही नहीं देखा बल्कि इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन भी की। इसके आगे की यात्रा की बात आपसे बिल्कुल करेंगे लेकिन उससे पहले आपके इस आसमानी यात्रा की शुरुआत के लिए ये गाना विशेष रूप से आपके लिए समर्पित।

0: क्या दोस्तों, संदेश टू सोल्जर्स में स्वागत है एक बार फिर से आपका। मैं हूं आपके साथ विनीता बेदी और आज हमारी गेस्ट हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे। और प्रतीक्षा जी, एक बात जो मैं आपसे जानना चाहती हूं इस गाने के बाद पर्टिकुलरली, कि क्या कभी कोई ऐसा है जिसने ये गाना आपको डेडिकेट किया है या कोई आपके लिए ये गाना गाता है?
1: जी हाँ बिल्कुल, ये है मेरे हस्बैंड जो खुद एयरफोर्स में है।
0: ओह नाइस, अच्छा अच्छा, वो भी एयरफोर्स में?
1: जी हाँ, वो अभी सर्विंग है, विंग कमांडर अभिषेक लूथरा मेरे हस्बैंड है। एंड बिल्कुल ये गाना वो कभी हमारे लिए गाते हैं, कभी हम उनके लिए गाते हैं।
0: बहुत ही बढ़िया। अच्छा एक बात बताएं, आप एयरफोर्स ने आपकी पर्सनालिटी को कैसे बदल दिया, क्या उसका क्या पॉजिटिव या क्या नेगेटिव तो नहीं ही है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आपकी पर्सनालिटी पे आया? क्योंकि आपने अभी तक जो कुछ भी अपने बारे में बताया प्रतीक्षा जी, मुझे लगता है कि आप तो पहले से ही काफ़ी फोकस्ड और डेडिकेटेड रही, तो एयरफोर्स ने भी कुछ आप में बदला?
1: बिल्कुल, लेकिन एयरफोर्स जाने से पहले जो एक एडवाइस मेरे फादर ने मुझे दिया था, मतलब जस्ट मैं निकल रही थी एयरफोर्स अकेडमी डुंडिगल के लिए, और एक चीज़ जो आखिरी में उन्होंने मुझे जाते वक्त कही थी कि बेटा ये वर्दी है, ये कोई कपड़ा नहीं है, इसकी इज्जत करना, बिकॉज ये तुम्हें सम्मान और एक पहचान देगी। और उस लास्ट थॉट्स, लास्ट सेंटेंसेस के बाद जब मैं एयरफोर्स अकेडमी पहुंची, सो एक वो अलग दुनिया थी। जैसे मैंने आपको बताया मेरे फादर आर्मी में थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं बताया कि ट्रेनिंग में होता क्या है। और जब मैंने उनको वापस जाके पूछा कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं, तो उन्होंने बोला वो एक्सपीरियंस तुम्हारा खुद का था और मैं चाहता था कि वो एक्सपीरियंस तुम लो और उसको अपनी तरीके से ढालो, ना कि कोई पहले से दिमाग में कोई चीज़ लेके चलना, वो ठीक बात नहीं है।
0: सो अमेजिंग। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आपने ये जो बात कही है ना, ये उन सभी फादर्स को सुनना चाहिए जो अपने बच्चों के स्कूल बैग्स अपने कंधों में रखकर उनको बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए आते हैं। दे शुड लर्न कि प्रतीक्षा जी के फादर ने कहा था कि तुम्हें अपनी ट्रेनिंग खुद अपनी नज़रों से अपने एक्सपीरियंस के साथ समझनी है, वही तुम्हारे काम आएगी। ब्यूटिफुल, बहुत ही खूबसूरत बात। अच्छा, अब ट्रेनिंग की बात आपने कही है, तो ट्रेनिंग के दौरान सबसे कठिन चुनौती, सबसे मुश्किल घड़ी आपके लिए कौन सी रही?
1: वैसे तो मुझे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एज एक्स फौजी अगर मैं ये बोलूँ तो कुछ लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, लेकिन ट्रेनिंग के टाइम जो सबसे मुश्किल चीज़ थी मेरे लिए थी, वो थी रनिंग।
0: रनिंग?
1: जी हाँ, ऑल्दो मैं स्पोर्ट्स पर्सन रह चुकी हूँ, मैं वॉलीबॉल खेलती थी, मैं बास्केटबॉल खेलती थी, लेकिन जो अकेडमी में जिस लेवल की रनिंग होती है, क्रॉस कंट्री होती है, उससे मैं डर जाती थी शुरुआत में। बहरहाल ट्रेनिंग होती ही इसके लिए कि आपको पहले ट्रेनिंग में मेंटली टफ बनाया जाता है, उसके बाद आप फिजिकली टफ तो बन ही जाते हो। सो वो एक शुरुआत की चुनौती थी जो मैंने कर ली थी, वो पार कर ली थी मैंने। लेकिन हाँ जी, अगर आप पूछेंगे तो एक रनिंग एक मेरा बहुत बड़ा खौफ था।
0: इसीलिए आपने जमीन छोड़कर आसमान चुना।
1: हो सकता है।
0: अच्छा एक बात और बताइए, विंग कमांडर बनने की जो आपकी जर्नी थी, उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं कि माइलस्टोन्स रहे आपके लिए?
1: जी, विंग कमांडर की जर्नी बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी, बिल्कुल भी आसान नहीं है। डिफेंस फोर्सेस में जाना ही आसान नहीं होता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये एक और चीज़ बताना देश के सैनिकों को और जो एस्पायरिंग बच्चे हैं जो आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं,

0: डिफेंस केवल एक नौकरी नहीं है, ये एक जीवन शैली है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ. तो आपको पूरी तरह अपने में ढालनी पड़ती है. बिल्कुल, आपको आपकी पास्ट लाइफ, जो आप एयरफोर्स ज्वाइन करने से पहले जो चल रही थी, जो आपको लाइफ, आपको पूरी तरह छोड़नी पड़ती है. क्योंकि एक वे ऑफ लाइफ का कहने का मतलब ही ये है कि एक डिसिप्लिन लाना, डिसिप्लिन, इंटेग्रिटी एंड कमिटमेंट जो आपको आपके काम की तरफ देनी पड़ती है. तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं उस जर्नी में टू बिकम अ विंग कमांडर, स्टार्टिंग विथ पोस्टिंग्स. आपको अलग अलग जगह पोस्टिंग जाना होता है, आपके फ्रेंड्स छूट जाते हैं और आपको एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट करना होता है, आपको बंदूक चलानी होती है, आपको फिजिकल फिट रहना पड़ता है. तो सारी चीज़ें आपके लाइफ में एक साथ हो रही होती है. सो दैट इज, दैट कम्स फ्रॉम योर मेंटल फिटनेस एज वेल एज फिजिकल फिटनेस. तो ये सारी चीजें आपको ट्रेनिंग में ही आपको तैयार किया जाता है ताकि आगे के लाइफ में आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहें.
1: अच्छा प्रतीक्षा जी, एक बात और बताइए, हम डिफेंस फोर्सेज की बात कर रहे हैं, डिफेंस फोर्सेज में डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट की जो इम्पोर्टेंस है आपकी नज़र में क्या है? वैसे तो मुझे लगता है कि हमारी सबकी ज़िंदगी में, चाहे वो फोर्सेस में हों या सिविलियंस हों, टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन तो सबकी लाइफ में होना ही चाहिए. लेकिन जब हम फोर्सेस की बात करते हैं तब हम इसे बहुत हाईलाइटेड रूप में देखते हैं. तो एज पर यू इसकी क्या इम्पोर्टेंस है?
0: जी देखिए, डिसिप्लिन, आपने जैसा बोला कि डिसिप्लिन हर एक के लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है. विदाउट डिसिप्लिन आप, मुझे नहीं लगता आप कभी अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं. एंड सक्सेस का पैरामीटर हर एक के लाइफ का अलग होता है. सो डिसिप्लिन आर्म फोर्सेस में इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देखिए आर्म फोर्सेस बना ही इसलिए ताकि वॉर टाइम में हम काम कर सके और देश को प्रोटेक्ट कर सके. सो उसके लिए पहला स्टेप ही, पहला कदम ही डिसिप्लिन है. अगर आप अपने काम में, आप अपने लाइफ में हर एक चीज़ को लेके डिसिप्लिन है तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी आएगा. और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है. सेकंड सेकंड का भी बहुत फ़र्क पड़ता है. अगर आप वॉर टाइम सिनेरियो देखेंगे तो हर एक सेकंड का बहुत बहुत मेजर इम्पोर्टेंस होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम कम्युनिकेशन, ऑन ग्राउंड, इन एयर, फ्लाइंग, एवरीथिंग. हर एक जगह पे टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है. सो इसीलिए जैसे आपने कहा बहुत हाईलाइट किया जाता है क्योंकि डिफेंस फोर्सेस चलती ही इन दो चक्कों पे है, वो है डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट. कोई भी एक चीज़ अगर ख़राब हुई तो आपकी गाड़ी पटरी से नीचे उतर जाएगी.
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने. अच्छा आप उन खास लोगों में से हैं, या कहना चाहिए कि उन महिला सैन्य अधिकारियों में से हैं जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स में लीडरशिप, डिसिप्लिन और टेक्निकल एक्सीलेंस का एग्जाम्पल दिया है. तो इस नज़रिए से मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने लीडरशिप का सबसे बड़ा पार्ट खुद क्या सीखा है, मतलब आपकी नज़र में लीडरशिप की कौन सा ऐसा लेसन है जिसने आपकी पर्सनैलिटी को वो बनाया है जो आज आप हैं और बड़े फक्र से सब आपका नाम लेते हैं.
0: जी लीडरशिप में मैं तीन चीज़ें आपको बताना चाहूँगी. एक है पेशेंस एंड पेशेंटली लिसनिंग, खुद धैर्य रखना और धैर्य के साथ सामने वाले की बात सुनना, ये बहुत ज़रूरी है. दूसरी बात आती है ऑलवेज लीड बाय एग्जांपल. आप अपनी टीम को अगर आप बोल रहे हैं कुछ करने के लिए, पहले आपको करके दिखाना पड़ेगा. अगर आप बोल रहे हैं इंटेग्रिटी होनी चाहिए तो आपको इंटेग्रिटी दिखानी होगी, आपको एथिकली एक्ट करना पड़ेगा. वो होता है लीड बाय एग्जांपल. और तीसरी चीज़ है आपकी टीम. आपकी टीम आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है, तो आपकी टीम का ख्याल रखना ये आपकी जिम्मेदारी होती है. दैट इज़ वॉट इज़ लीडरशिप फॉर मी.
1: अमेजिंग, इतनी खूबसूरत डेफिनेशन आपने लीडरशिप की दी है. तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छी लीडर ना सिर्फ डिफेंस फोर्सेज में या इंडियन एयरफोर्स में रही हैं, बल्कि अब जो आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में हैं आपने वहाँ भी लीडरशिप की एक मिसाल कायम की होगी, मैं ऐसा मान के चलती हूँ. तो ये तो खैर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई आपने ये कहकर कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन की क्या इम्पोर्टेंस रही है. बट अदरवाइज अगर आपसे ये कहा जाए कि डिफेंस की फील्ड में महिलाओं की भूमिका को आप कैसे देखती हैं, ये बात मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि ना सिर्फ एक महिला होने का गौरव आप रखती हैं बल्कि एक बेहतरीन ऑफिसर के रूप में आप जानी जाती हैं.

0: आप रिटायर्ड हुई हैं, लेकिन आज भी लोग आपका नाम बहुत सम्मान से लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं की क्या भूमिका है इस फील्ड में, रक्षा सेवाओं में खासकर?
1: जी देखिए, महिला या मर्द, मुझे लगता है दोनों में कोई फर्क नहीं है। फॉर दैट मैटर, इवन डिफेंस फोर्सेस में कोई जेंडर बायस नहीं है
0: जी,
1: क्योंकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अगर मैं आपको मेरी ट्रेनिंग के डेज में लेके जाऊं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो एक महिला हो के मैंने नहीं की है, या किसी और मेल ऑफिसर ने हमारे साथ जो थे ट्रेनिंग में उन्होंने ज़्यादा की है या हमने कम की है। तो अगर ट्रेनिंग में भेदभाव नहीं है तो आगे भी कोई भेदभाव नहीं होता है। सो एज ए वुमेन, अगर आप मुझे पूछे, तो बहुत ज़रूरी है कि आप आपके मेल काउंटर पार्ट्स के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जो बंधन होता है वो हमारे दिमाग में होता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। वो जो एक सेल्फ डाउट होता है वो हमारे अंदर होता है, ना कि बाहर। बाहर सबको दुनिया एक समान देख रही है, और स्पेशली डिफेंस फोर्सेस सबको एक समान ही देख रही है। तो एज अ वुमेन, मैं बस इतना बताना चाहूंगी कि आपने अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए। आप उतनी ही केपेबल हो जितना एक मेल ऑफिसर होते हैं।
0: जी, बेहतरीन। मुझे लगता है कि कोई जेंडर बायस एटलीस्ट डिफेंस फोर्सेस में नहीं है, ये बात आपकी इस स्टेटमेंट ने तो साबित कर ही दी है। तो अगर किसी के मन में ये वहम हो कि औरत है ये कैसे कर पाएगी, या महिलाएं कैसे इस फील्ड में जा सकती हैं, या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये औरतों के लिए नहीं है, उन सब की बात का एक बहुत ही करारा जवाब आपने अपने इस स्टेटमेंट के द्वारा दिया है। हैट्स ऑफ टू यू, आई रियली गिव यू अप्लॉज फॉर दिस आंसर। और मुझे लगता है कि जिस तरह आपने इंडियन एयरफोर्स को अपनी भूमिका से बहुत गौरवान्वित किया है, तो ये बादलों का गाना तो आपके लिए बनता ही है।

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो पर। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त विनीता बेदी। मैं बहुत सारी बातें कर रही हूं प्रतीक्षा जी से, बहुत कुछ अच्छा जानने को भी मिल रहा है और काफ़ी कुछ आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। तो एक बात जो मैं आप सबकी तरफ से प्रतीक्षा जी से पूछना चाहती हूँ वो ये है कि आपके लिए अब तक अगर पूछा जाए तो आपकी ज़िंदगी का सबसे गौरव भरा पल कौन सा था, आपका प्राउडेस्ट मोमेंट ऐसा कौन सा था जिस पर आपको लगे कि ये वो पल है जो मैं सपना देख रही थी जिसका।
1: विनीता जी, वैसे तो काफ़ी है। पहला तो था और अभी भी है, जो जिस दिन मैंने यूनिफॉर्म पहली बार पहनी वो पक्का मेरा एक प्राउडेस्ट मोमेंट था। बट उसके बाद मैं कहना चाहूँगी कि हर सैनिक के जीवन में एक ऐसा पल होता है जो सिर्फ याद नहीं रहता लेकिन उनके रूह में बस जाता है। और मेरे जीवन में एक ऐसा पल आया था 26 जनवरी 2015 में। 26 जनवरी 2015 में जो आरडी परेड हुई थी,
0: रिपब्लिक डे परेड, हाँ जी,
1: उसमें आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स का इंडिविजुअल ऑल वुमेन कंटिजेंट बना था। और मैं उस कंटिजेंट का पार्ट थी एयरफोर्स की तरफ से।
0: ओह वंडरफुल।
1: अब आप सोचिए, एक लड़की जिसका बचपन का सपना था यूनिफॉर्म पहनना, देश सेवा करना, अब वो देश के सबसे बड़े मंच पे खड़ी थी, वो था राजपथ। और पहले तो उसका सिलेक्शन हुआ, पहले तो 2 महीने की उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर, क्योंकि जनवरी एंड में होता है, 26 जनवरी को होता है पूरा परेड। तो पहले तो जैसे मैंने आपको बताया वो मेंटल टफनेस से स्टार्ट होती है, फिर फिजिकल टफनेस पे जाती है, बिकॉज वो आसान नहीं होता है। वो परेड होती है लगभग 14 किलोमीटर लंबी परेड, जो आपको पूरे कंटिजेंट के साथ ताल में ताल मिला के रिदम में आपको मार्च करते हुए जाना होता है
0: पूरे 14 किलोमीटर।
1: बिल्कुल। तो वो सिर्फ एक मार्च नहीं होती, वो एक गौरव होता है और एक अनुशासन होता है कि आप आपकी पूरी टीम के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला के चले। और वो भारत की एक शक्ति का प्रदर्शन होता है पूरे विश्व के सामने। सो जब हम राजपथ पे चले, तब मार्च किया कंटिजेंट के साथ, और फिर वो पल आया जहाँ हमने भारत के सुप्रीम कमांडर जो राष्ट्रपति थे उस समय के, श्री प्रणब मुखर्जी जी, और उनके साथ हमारे प्रधानमंत्री जी थे श्री नरेंद्र मोदी जी, और भारत के इतिहास में पहली बार अमेरिका के प्रेसिडेंट आए थे इंडिया में एज चीफ गेस्ट फॉर दैट ईयर, मिस्टर बराक ओबामा। सो एक वो जो सलामी थी
0: जी,
1: वो सिर्फ हमारी ट्रेनिंग नहीं थी, वो एक हर लड़की की मेहनत थी, हर महिला का सपना था, और उसके साथ हमको पता था पूरे देश का विश्वास है हमारे साथ। बट आज भी मैं उस पल को याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते, क्योंकि वो एक सिर्फ पल नहीं था, बट वो एक हर महिला, हर लड़की, इस देश की हर लड़की का एक वो सपना था कि उस राजपथ पे मैं चलूँ। क्योंकि उस दिन मैंने एक और बात सीखी थी कि सीमाएं बाहर नहीं होती, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो हमारे दिमाग में होती है। और जब आप वर्दी पहनते हैं तो आप

0: खुद को प्रूव नहीं करते लेकिन आप आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाते हैं। तो मुझे लगा वो उस तरफ हमने एक छोटा सा योगदान दिया था।
1: कितनी सुंदर बात आपने कही है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आप एक मिसाल बनते हैं, आप उनके लिए एक रास्ता तैयार करते हैं जिस पर चलकर वो आपसे भी आगे निकल पाएं, आपके सपनों को और अधिक बुलंदियों पे पहुंचा सकें। बहुत ही खूबसूरत बात और बहुत सुंदर विचार हैं आपके। प्रतीक्षा जी, एक बात और बताइए, ये जब आपने अपना अनुभव बताया रिपब्लिक डे परेड पर, तो उस वक्त जब आप राजपथ पर थी, आपको अपने बचपन के उस सपने को पूरा होते देखने की खुशी तो होगी ही, साथ में ये भी फीलिंग थी कि आपने अपने पापा को प्राउड किया है आज।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं फिर से उस चीज़ पे जाना चाहूँगी जहाँ मैंने बोला कि आप सपना छोड़ सकते हो लेकिन सपना आपको नहीं छोड़ता है।
1: कितनी
0: क्योंकि
1: सुंदर बात।
0: एक और चीज़ मैं बताती हूँ आपको, जब मैं स्कूल में थी तब मैं एनसीसी में थी और तब भी मुझे मौका मिला था रिपब्लिक डे परेड पे जाने का, लेकिन तब दिमाग में था कि मेरी स्टडीज मिस हो जाएंगी, मेरी पढ़ाई मिस हो जाएगी, क्योंकि तब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी। तब मैंने दिल पे पत्थर रख के अपनी मैम को बोला था कि मैम मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी पढ़ाई मिस हो जाएगी। तो वो सपना मेरा शायद अधूरा रह गया था जो एयरफोर्स ने पूरा किया है।
1: हाउ स्वीट, कितनी प्यारी बात है ये कि आपने बचपन के सपने को बड़े होकर जिया, और ना सिर्फ जिया बल्कि दूसरों के लिए एक मिसाल बना दिया। बहुत ही सुंदर। अच्छा प्रतीक्षा जी, एक बात बताइए, आप तो इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा रही हैं, तो बहुत थ्रिल माना जाता है इस डिफेंस फोर्स को, तो आपका भी कोई थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहा होगा जो आज आप हमारे साथ बांटना चाहेंगी?
0: जी बिल्कुल। और थ्रिलिंग तो डेफिनेटली है, एयरफोर्स इज़ फुल ऑफ थ्रिल। और उस थ्रिल में मैंने एक जो काम किया था वो था पैरा जंपिंग का। पैरा जंपिंग एक ऐसा अनुभव रहा है मेरी लाइफ में जिसने मुझे बाहर से तो बदला ही है, जैसे एयरफोर्स ने मुझे बाहर से बदला है लेकिन पैरा जंपिंग ने मुझे अंदर से बदल दिया।
1: क्या बात है।
0: उसका अनुभव ऐसा रहा कि Mi-17 हेलीकॉप्टर से आपको 5 जंप्स करनी होती है तब आप ट्रेन पैरा जंपर बनते हैं।
1: और ये जो 5 जंप करनी होती हैं, ये किसी टाइम पीरियड में करनी होती हैं?
0: जी, ये 2-3 दिन के पीरियड में करनी होती है क्योंकि मॉर्निंग जंप्स होती है, आपकी नाइट जंप्स होती है, सो वो सब मिला के 2-3 दिन में आपको कंप्लीट करनी होती
1: सिर्फ
0: है।
1: 2-3 दिन में?
0: जी हाँ।
1: माय गॉड।
0: और उसके पहले अगेन हर एक चीज़ की ट्रेनिंग तो होती ही है, तो वो ट्रेनिंग के बाद फिर आप में वो कॉन्फिडेंस आता है कि आप जंप करें, और वो लगभग 3,000 से 5,000 फीट की ऊंचाई से जंप की जाती है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि वो सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं होता है, वो अपने अंदर का जो डर है वो निकालने के लिए होता है। और आपको मैं एक और चीज़ बताऊंगी, उस टाइम तक मुझे ऊंचाई का डर था, थोड़ा सा तो डर रहता था मुझे। और जब मेरी पहली जंप थी मैं इतनी एक्साइटेड थी उस पहले जंप के लिए, क्योंकि वो होता है ना, इट्स एन अननोन टेरिटरी, आपको पता नहीं है क्या होने वाला है। तो पहली जंप तो बहुत मज़ेदार थी और इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस, इतना खूबसूरत अनुभव था वो, कि आपको पता नहीं होता आगे क्या होने वाला है, बस एक एड्रेनलिन रश होता है, एक एक्साइटमेंट होती है।
1: जी
0: क्योंकि जैसे कहते हैं कभी कभी अनजानी चीज़ भी डराती नहीं है लेकिन आपको उड़ना सिखाती है।
1: हाँ,
0: लेकिन दूसरा जंप जो था वो थोड़ा अलग था क्योंकि तब तक मुझे पता चल चुका था कि पहली जंप में हुआ क्या था। तो दूसरी जंप में मुझे ऑनेस्टली बताओ डर लगा था और मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी सुसाइड मिशन पे निकली
1: ओह
0: हूँ।
1: माय गॉड।
0: बट तीसरे जंप के बाद मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई थी और एक मैजिकल फीलिंग थी उस टाइम पे, क्योंकि आप जब जंप कर जाते हो आप वहाँ पे होते हो जहाँ पे और कोई शोर नहीं है, कोई नहीं है आपके आसपास, सिर्फ आप हो, चारों तरफ सन्नाटा है और आपकी अपनी सांस से आप सुन पा रहे हो।
1: इनर स्ट्रेंथ
0: इनर
1: बेसिकली।
0: स्ट्रेंथ,
1: हाँ
0: वो एक ऐसा पल है जब आपको लगता है कि एक पक्षी होना कैसे लगता है, दैट इज एक्चुअल फ्रीडम। एंड वो एक पॉइंट होता है जहां आप खुद से कनेक्ट करते हो।
1: ऑसम। कितना सुंदर एक्सपीरियंस रहा होगा आपका, और सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं अगर आप देख सकें तो। मतलब ऐसा जब आप ये अभी एक्सप्लेन कर रही थी, ये बता रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे हम आपके साथ खड़े हुए और आपके साथ ही जंप करने के लिए नीचे झांक रहे हैं और भगवान को याद कर रहे हैं. तो ये आपका डिस्क्रिप्शन तो बहुत ही खूबसूरत है. आई मस्ट से कि आप बताती बहुत अच्छा है अपने अनुभव. और एक और बात बताइए, देखिए अभी आपने अभी तक जो भी बात बताई वो आपकी सक्सेस स्टोरीज थी
0: जी.
1: क्या ऐसा कभी हुआ कि आपको किसी असफलता का सामना करना पड़ा हो? और अगर ऐसा हुआ तो फेलियर का डर और फेलियर से उबरना, मतलब उस डर को पीछे छोड़ना या उस डर से बाहर निकलना, ये आपका तरीका क्या है इसके लिए?
0: एक कहीं मैंने ये बड़ी अच्छी चीज पढ़ी थी कि असफलता अंत नहीं होता, ये बस एक नया रास्ता दिखाना और उसका दिखाने का तरीका होता है
1: जी.
0: सो फेलियर्स तो बिल्कुल आए हैं लाइफ में, बहुत फेलियर्स है और वो जिंदगी ही क्या जहाँ पे फेलियर्स ना हो. लेकिन आपको लाइफ सिखाती है कि आप गिरिए, आप उठिए, आप अपने कपड़े झाड़िए, साफ कीजिए और आगे बढ़िए. ये जिंदगी है.
1: बहुत सुंदर.
0: तो आप जैसे बता पूछ रही हैं कि फेलियर्स काफी आए हैं, लेकिन हाँ इनिशियली एक जो सेटबैक लगता है आपको, एक थोड़ा सा धक्का सा लगता है, आपने उस पीरियड से जल्दी उबर जाना चाहिए. अगर आप उस फेज में ज्यादा दिन तक रहे या ज्यादा टाइम तक रहे, फिर वो फेलियर आपको खा जाएगा. एंड वही मेंटल टफनेस डिफेंस फोर्सेस हर एक इंसान को सिखाती है. रादर डिफेंस फोर्सेस तो सिखाती है, लेकिन एक संदेश जो मैं सबको देना चाहूंगी कि ये आपने खुद में भी डेवलप करना चाहिए कि फेलियर्स तो आएंगे. जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सबके लाइफ में फेलियर्स तो आए हैं, लेकिन कितनी जल्दी आप उन फेलियर्स से उभर के आगे बढ़ना सीख लेते हैं, वो एक्चुअल लाइफ है.
1: बिल्कुल. बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर. मुझे लगता है कि जो भी आपके साथ थोड़ी देर भी बैठ जाता होगा ना प्रतीक्षा जी, वो एक बेहतर इंसान बनकर ही बाहर निकलता होगा. आई एम श्योर फॉर दैट, बिकॉज यू हैव सच पॉजिटिव वाइब्स, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है आप में जो हर किसी को, जो भी आपके संपर्क में आता है, उसको प्रेरित ही करता है, मोटिवेट ही करता है. अच्छा, आपकी इस, जब भी हम आपके एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो आपकी सेवा काल के दौरान ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस रहा जिसने आपको बहुत इमोशनल किया हो और मोटिवेट किया हो?
0: इमोशनल किया हो
1: जी,
0: ऐसे तो काफ़ी इंसिडेंट हुए हैं. क्योंकि जैसे अगर मैं बोलूँगी कि कुछ चीज़ें, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे रहे हैं लाइफ में, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, जो स्टार्ट किए हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके, रिसर्च करके, और फिर कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि अलग अलग उसके रीजंस हैं. कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, बिकॉज देखिए गवर्नमेंट सर्विस है, आपका बजट होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है. तो किसी भी रीज़न के वजह से शायद वो आगे ना बढ़े, तो तब बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आपने, मतलब मेरे नज़रिए से मैंने उसमें अपनी लाइफ झोंक दी थी. लेकिन अगर उसका जो आउटकम मैंने एक्सपेक्ट किया था वो अगर नहीं मिला तो बुरा तो लगता है
1: जी.
0: लेकिन ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. एंड वही सेटबैक्स है जिसको आपको पीछे छोड़ देना है और आगे बढ़ते चले जाना है.
1: इसी बात पर हम एक गाना सुनते हैं जो मोटिवेट भी करता है और इमोशनल भी कर देता है. केसरी फिल्म का गाना जो आपको बेहद पसंद है, संदेश टू सोल्जर्स में आज आप हैं दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे जी के साथ.

0: संदेश टू सोल्जर्स सुन रहे हैं आप मेरे यानी कि विनीता बेदी के साथ, और आज हमारी गेस्ट हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे जी, जिनकी बातें ना केवल मोटिवेट करती हैं बल्कि सुनकर ऐसा लग रहा है, ऐसा जज्बा पैदा हो रहा है कि आज ही एयरफोर्स ज्वाइन कर ली जाए। तो मेरे मन में जब ये विचार आ रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि जितने युवा ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे उनके मन में किस तरह के विचार आ रहे होंगे। तो मैं अब आपसे यही पूछना चाहती हूँ प्रतीक्षा जी कि अगर युवा इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, पहली बात, और दूसरा एफ कैट और सी डी एस जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आपकी क्या सजेशन है युवाओं के लिए।
1: जी विनीता जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये प्रोग्राम, ये मंच उसी के लिए है ताकि हम जो एस्पायरिंग बच्चे हैं जो फौज ज्वाइन करना चाह रहे हैं, हम उनको अच्छा संदेश दें ताकि वो ज्वाइन कर सके। सो तैयारी के हिसाब से देखिए, मैं एक चीज़ शुरुआत में कहना चाहूँगी कि अगर आपका लक्ष्य नौकरी है तो डिफेंस फोर्सेस आपके लिए सही जगह नहीं है, लेकिन अगर आपका सपना देश सेवा है तो इससे बढ़िया कोई जगह नहीं है। सो तैयारी के हिसाब से पहले तो पक्का आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, पढ़ाई में मन लगाइए, क्योंकि आपने ये चीज़ें सुनी होंगी कि फौज में पढ़ाई नहीं है, जबकि मैं बताना चाहूँगी फौज में बहुत ज़्यादा पढ़ाई है, और जो सीनियर ऑफिसर्स भी हैं जो जनरल ब्रिगेडियर बन जाते हैं वो भी पढ़ाई करते रहते हैं, तो पढ़ाई का कोई पीछा नहीं छूटता है अगर आपने फौज ज्वाइन कर लिया। तो ये एक दिमाग में ज़रूर रखिए कि पढ़ाई तो रहेगी रहेगी, तो आप पहले से खुद को प्रिपेयर कीजिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, अच्छे से आप अपना ट्वेल्थ पास कीजिए, अच्छे नंबर लाइए, और ग्रेजुएशन के बाद अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ग्रेजुएशन में भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आजकल जो अलग अलग तरीके के एग्ज़ाम्स हैं, एफ कैट है, जैसे एयरफोर्स के लिए एफ कैट है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, और तो इसमें इनिशियली आपके जो ग्रेजुएशन है उसके बेसिस पे एग्ज़ाम होता है। तो अगर आप इंजीनियरिंग ब्रांच में आप एडमिशन ले रहे हैं या इंजीनियरिंग ब्रांच में आप आना चाहते हैं एयरफोर्स में, सो आपके इंजीनियरिंग का जो बैकग्राउंड है उसके बेसिस पे आपको सवाल पूछे जाते हैं, प्लस थोड़ी सी आपकी जनरल नॉलेज जो सामान्य ज्ञान होता है उसके बारे में भी आपने थोड़ी सी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आप डिफेंस फोर्सेज में जा रहे हैं एंड उसके रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पेपर होता है, एक एग्जाम होता है। तो ऑल एंड ऑल पूरी तरीके से आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, उससे आपका कोई निजात नहीं है। उसके अलावा एक आपको मेंटल टफनेस आपको खुद में

0: करना पड़ेगा, आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी. क्योंकि अगर आप मेंटली टफ हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इमोशनल लोगों की जगह नहीं है, नहीं, ये बहुत अलग अलग चीज़ें हैं. आप इमोशनल हो सकते हैं लेकिन आपको मेंटली टफ रहना पड़ेगा. क्योंकि अगर आप मेंटली टफ है तभी आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाएंगे जो मोस्टली फिजिकल होती है. जो इनिशियल 6 महीने की ट्रेनिंग होती है वो ज़्यादातर फिजिकल और कम पढ़ाई, और उसके बाद जब आप स्पेशलाइजेशन में जाते हैं तब उसमें ज़्यादा पढ़ाई होती है. लेकिन फिजिकल एक्टिविटी आपकी कभी नहीं रुकती. मेरे लास्ट डे तक भी, जहाँ मैंने 14 साल कंप्लीट किए एयरफोर्स में, आखिरी दिन तक फिजिकल एक्टिविटी चल रही थी. पीटी, परेड, रनिंग, जिससे मैं बहुत डरती थी, वो मैंने आखिरी दम तक किया है एयरफोर्स के, और अभी भी करती हूँ, और इसीलिए फिजिकली फिट रहती हूँ. तो ये कुछ प्रिपरेशन है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको अगेन डिसिप्लिन रखना पड़ेगा. आपकी लाइफ में आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, आपको खुद को कमिट करना पड़ेगा कि हाँ ये मुझे करना है. अगर आपने वो सपना देखा है तो आप वो सपना जिएंगे. क्योंकि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते.
1: कलाम साहब ने ये बात कही जी, बहुत सुंदर. और ये जो आपने एक संदेश दिया है सभी युवाओं को, मुझे लगता है कि हालांकि अभी बहुत कुछ मुझे आपसे बात करनी है, जानना है, लेकिन एक ये छोटा सा गाना मैं ज़रूर चलाना चाहूँगी आपकी इस बात पर कि जब आप कह रही हैं कि मेंटल फिटनेस के साथ साथ फिजिकल फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है एंड वाइस वर्सा, तो ये एक गीत सभी युवाओं के लिए प्रतीक्षा जी की तरफ से.

संदेश टू सोल्जर्स का लास्ट सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हम सभी के लिए, आपका यहां पर होना प्रतीक्षा जी। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे आज हम

0: संदेश टू सोल्जर्स में बात कर रही हैं। बहुत कुछ सजेशन उन्होंने दी, बहुत कुछ मोटिवेशन दिया, लेकिन एक बात जाने बगैर भला हम आपको कैसे जाने दे सकते हैं। आप स्वयं एक महिला हैं और महिला होने के नाते आपने विशेष प्रयास किए हैं अपनी जगह बनाने के लिए। तो सेना में करियर बनाने के लिए युवतियों के लिए आपका क्या संदेश है? युवाओं को तो सभी संदेश देते हैं, बट विशेष रूप से युवतियों को आप क्या कहना चाहती हैं?
1: युवतियों को मैं एक चीज़ जो मेरे जहन में बसी है और जो मैंने भी सीखी है, ऐसा नहीं है कि मैं सीख के आई थी, लेकिन मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से सीखी है कि सेल्फ डाउट कभी नहीं करना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए क्या मैं ये कर पाऊँगी, क्या वो लड़का कर रहा है, वो आदमी कर रहा है, तो क्या मैं ये कर पाऊँगी। नहीं, आप सब कुछ कर सकती हो, सब कुछ। आप अभी देखिए, हर दुनिया में हर फील्ड में लड़की है, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे लड़की नहीं है। नॉट ओनली इंडिया, अक्रॉस।

0: क्या वो लड़का कर रहा है, वो आदमी कर रहा है, तो क्या मैं ये कर पाऊंगी? नहीं, आप सब कुछ कर सकती हो, सब कुछ। आप अभी देखिए, हर दुनिया में हर फील्ड में लड़की है, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे लड़की नहीं है, नॉट ओनली इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड। तो वैसे ही मिलिट्री में भी, डिफेंस फोर्सेस में भी सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और आप में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, ये मैं करूँगी। देखिए, फेलियर्स तो आएंगे, वो
1: बिल्कुल
0: सबके लाइफ में आते हैं, वो जेंडर देख के नहीं आते हैं। सो फेलियर आते हैं, फेस इट, गिरिए, उठिए, कपड़े झाड़िए और चलते बनिए।
1: मुझे आपकी ये वाली बात तो बहुत ही पसंद आई है कि अगर कभी ऐसा कुछ होता भी है, गिर भी पड़ते हैं तो भी रुकना नहीं है, कपड़े झाड़िए और आगे चलिए। तो सभी लड़कियों को, सभी महिलाओं को जो फोर्सेस ज्वाइन करना चाहती हैं, इस बात से डेफिनेटली प्रेरणा मिलेगी। अच्छा, आप अब क्योंकि रिटायर हो चुकी हैं, क्या आपके लाइफ में रिटायरमेंट के बाद कोई चेंजेस आए हैं क्या?
0: जी, सबसे बड़ा चेंज तो वो है, जो सुबह उठते से ही जो मैं यूनिफॉर्म पहनती थी, वो एक बहुत बड़ा चेंज है, और वो मैं बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ कि रोज़ वो यूनिफॉर्म पहन के यूनिट जाते हैं, तो वो एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। उसके अलावा देखिए, वर्क वाइज तो अभी भी मैं वर्किंग हूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ, मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है आर्म फोर्सेस से, जितना मैं वहाँ अप्लाई कर सकती हूँ करती हूँ, तो कमिटमेंट में तो कोई कमी नहीं है। लेकिन एक जो ऑरा होता है, और आजकल की जो जेंजी लैंग्वेज में कहते हैं वाइब, वो थोड़ी सी मुझे मिसिंग लगती है, क्योंकि बाहर कॉरपोरेट में काफ़ी लोग अकेले अकेले से काम करते हैं, जबकि डिफेंस फोर्सेस में इट इज़ ऑलवेज अ टीम वर्क। सो आई जेन्युइनली मिस दैट टीम वर्क एंड द वाइब ऑफ डिफेंस फोर्सेस।
1: ओह स्वीट, ये जो वाइब आपने बताई है ना, मुझे लगता है कि किसी भी फील्ड में जब सब मिलकर कोई काम कर रहे होते हैं तो अपने आप वो काम भी बहुत अच्छा होता है, और एक वाइब तो पॉजिटिविटी की रहती ही है। अच्छा, महिला अधिकारियों के लिए इंडियन एयरफोर्स में क्या क्या ऐसे अवसर हैं कि वो भी आपकी तरह अपने आप को एक प्राउड ऑफिसर कह सकती हैं?
0: पहली बात होगी, किसी चीज़ के लिए मना मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अनकंफर्टेबल हो किसी चीज़, कोई काम करने के लिए, और तब भी आप हाँ बोल रहे हैं, नहीं। लेकिन आप में वो क्षमता होनी चाहिए कि आप अपॉर्चुनिटी को भापें,
1: जी
0: और किसी भी चीज़ के लिए मना मत कीजिए, किसी भी चीज़ से डरिए मत कि ये होगा नहीं होगा, कोई बात नहीं, चलिए आप काम करिए, और आप में वो कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। तो वही कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर जगाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो बाधाएं होती है, जो जो हम बाउंड्रीज बनाते हैं, वो हमारे दिमाग में होती है, बाहर कोई नहीं बना रहा हमारे लिए वो बाउंड्रीज, हम खुद ही बनाते हैं। तो अगर आपने वो बाउंड्रीज पार कर ली, आपने वो जो लक्ष्मण रेखा आपने पार कर ली, तो वर्ल्ड इज ऑन योर फिंगर टिप्स, आप दुनिया, पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर सकती हैं। तो वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत छोड़िए अपना।
1: तो आपको ये लगता है कि हमारी युवा पीढ़ी, स्पेशली जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, वो अगर कॉन्फिडेंस का गहना पहन ले तो उन्हें फिर किसी और गहने की जरूरत नहीं पड़ेगी?
0: बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया, बिल्कुल वही गहना पहनना है हमने, और कोई पहने ना पहने, लेकिन कॉन्फिडेंस का गहना हमेशा होना चाहिए हमारे पास।
1: थैंक यू सो मच प्रतीक्षा ठाकरे जी, आज आप संदेश टू सोल्जर्स में आई हैं और आपने अपने इतने खूबसूरत अनुभव और उससे भी बढ़कर प्रेरक विचार हम सबके साथ बांटे हैं। मुझे लगता है कि डिफेंस फोर्सेस का इससे खूबसूरत उपहार हमारे श्रोताओं के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। तो समय निकालने के लिए आपका आभार, अपनी पॉजिटिविटी हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका आभार, और चलते चलते एक सल्यूट तो आपके लिए बनता ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम सभी को प्रेरित करने के लिए। आई होप आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा होगा आज यहाँ।
0: धन्यवाद विनीता जी, यहाँ पहली बात तो मुझे बुलाने के लिए और ये बातचीत करने के लिए। और आखिरी में बस एक लाइन कहूँगी कि देश सेवा सिर्फ एक ड्यूटी नहीं, ये एक ऑनर है, और जो ये ऑनर पा लेता है वो जिंदगी में कभी नहीं हारता। धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। और दोस्तों, सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स, हम सभी दिल से सलाम करते हैं अपने सोल्जर्स का। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से प्रतीक्षा ठाकरे जी का। धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज FM शिमला। आइए सुनते हैं मंडियाली गीत। कार्यक्रम का पहला गीत मंजू भारद्वाज और गीता की आवाज में।

आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला पर मंडियाली गीत। आइए सुनते हैं ज्वाला प्रसाद शर्मा और अक्षर सिंह परमार को।

आप ट्यून इन हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर और प्रोग्राम चल रहा है मंडियाली गीत। आइए अब सुनते हैं गोपाल शरण ठाकुर को।

आप ट्यून इन हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला के संग। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव और एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों में आइए अब सुने पंगवाली कार्यक्रम।

आकाशवाणी शिमला बेलदी 5:21 हुई गिरे पेश है त्यों मनपसंद पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम। पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम सुनने वाले सुबह जुड़ा करताप सिंह ठाकुर पंगवा तरफा बेलदी नमस्ते। जी सुनने वाले हाजिर अखबार त्यों आपू मनपसंद प्रोग्राम पंगवाड़ी बोलियां तो गिन के जिन्हें तुम्हें सुबह पता है कार्यक्रम हफ्ते अंत चार रोज सुमारे भुस्ते छंचरे बेल दिया 5:20 पुटा शुरू करते और 5:50 तक पंगवाड़ी बोलिया कार्यक्रम चलता। आकाशवाणी जे प्राइमरी चैनल है मीडियम वेव जसपते तस् साथ आकाशवाणी FM चैनल पुट भी है कार्यक्रम चलता 104.7 MHz ऐसे फ्रिक्वेंसी है साथ यह कार्यक्रम त्यों DTH तो मोबाइल ऐप पुट भी सुनते। इस दौरान अस तुहां जे डकवोक लाते जे देर विषय बुते तस्पुट और साथ देश प्रदेश खास खास खबर और अवल अवल घीतियारी के आवाज़ अंतर चम्मे कनैरी पैंगे कनैरी जे घीतियारी के गीत्या सके से सुनाते तुहां डकवोक आज अस लाणिए अजकना नौजवान शुकना देशे नेता और साथ आपसी अखता तठा जे हैं तरक्की तस् पुठा स गल लाणी अस्ती शुरुआत अंतर रख बेदे जिन्होंने लोकगीत पहले तुम सुनाते फिलहाल तुम जो डकवोक तो सुनते पहले इस लोकगीत।

जी सुनने वाले हो राकेश कुमार चस्क वाले वाह जंतर अभे दे जिन लोकगीत तुआ सुनू पैंगे किनारी सुनने वाले खास चाओ जो गीत सुनो और बोल आनंद पूरा नीर बोल। हालांकि है ना गल की पंडवे राजे लेकिन अचिल गल चलन लगोरी पंचायती राजे तो तुम पूरे तसे भी आनंद नहीं और बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं अस तुआ जो गल लाने अस्ती आज आज कना जे नौजवान इसे शूकना देशे नेता एनु बताते कि कसे भी देशे ईणे वाला टाइम जस तसे हर टाइम जिखे भी बोल तसे तने ईणे वाला टाइम जस तसे नौजवान के हाथ हुंता। नौजवान न सिर्फ हटा कटा या जोश वाला हुंता बल्कि बदलाव तथा तरक्की अख बड़ी ताकत हुंती। आज के टाइम विज्ञान वाली गल है तकनीक वाला टाइम अस्ता सूचना क्रांति वाला युग अस्ता तया है जे नौजवान अस्ता पढ़ाई लिखाई चाहे विज्ञान वाली गल है चाहे जे फौज अंतराए चाहे खेती बाड़ी कन लगोरे चाहे होर कोई उद्यम कन लगोरे समाज सेवा कन लगोरे जस भी किनार से नसन लगोरे अपने काबिलियत से हुरालने लगोरे। पर सिर्फ ऐ जे अलग अलग काम आए तस अंतर अगर नसुन भी जस तसे तस अंतर बोल सकते कि ऐ नहीं सिर्फ काफ़ी बल्कि इसके अगर बढ़ के जे अपने देशे वास्ते अगर कम कन भूँ एग्री के अगर नसुन भूँ तो कुड़ी न कुड़ी जे अपना अनुशासन आए से भी बढ़ाना ये रहा अपना नैतिक वाला जी आचरण अस्ता से भी बढ़ाना।

मेरा है ना, और अपने जे जिम्मेवारी अस्ती से आसा समझ के जिस तसे तस फुट भी काम करना यहाँ। नौजवान अगर अपनी ताकत खरे कनार लाल तसे नशे के दूरी सकता, लड़ाई झगड़े के दूरी रह सकता, होरी भी जे अलग अलग समाज अंतर जे बुराई तस्कें से दूरी सकता और समाज सेवा तथा देश बनाने वास्ते से कम कर सकता। देशे मती जे दिखते अस्ती तनी से हल ढूंढ सकता, समाधान कर सकता। और जनु अस आज का टेम है ते अगर मठलियारी पुथा गैबुर साफ सफाई से चले, ग्रहण तरक्की कम अंतर जस्ते समाज अंतर से सद्भाव बनाए के अगर बढ़े ले, नौजवान जस्ता से अस्कनार अंतर अच्छा खासा कम कर सकते। जरूर था कि आज ये नौजवान न सिर्फ अपने हक बल्कि जिम्मेवारी भी समझे, तसे वास्ते भी जागने जरूरत हस्ती और अपना जे मदद करने वाला से या फिर जो बते खारी सोच वाली भावना अस्ती है ना। अगर अस नौजवान जस्त से सच्चे अर्थ अंतर अगर तरक्की काम करना चाहता तो अस ए भी बनाने बड़ी जरूरत हस्ती। और अगर आज का नौजवान सही दिशा पकड़ल सुसर कनार दिशा अगर बढ़ला तो से चाहे देशे नेता बनल या कुड़ी होरी जगह काम करल से तरक्की कुल मिलाई के देशेरी भूनी अस्ती। और अगर अस शुभ जस्त से मठलियारी पुथा अपने गैबरों जस्त से खरे संस्कार दिल और तहना कहना जे चाह तैसे ऐप भी करके हुरारेल तो तहना भी सही हे थेर के अगर बढ़ नस्तु। और साथ साथ जे आज कना अख सरकार भी अभियान चलो रहा पूरी जस्त से इंसानियत है वे डरन जनी भी लगो रही कि भाई सिर्फ गैबर जस्त से नशी के चपेट अंतर ये अगर तस्कियाँ दूरी ने हंसते तो पहले आसा खुद दूरी ही नहीं रहता ना क्या अंस तेने सामने खींते पीते रह ले और गैबरों के चाह ले कि है थोड़े दूरी ले तसे ना बोझ सकते। इस वास्ते दुआ कनारा सा काम कानून यरे गैबर भी समझा ये रे तेना भी शिकर दैन ये रही साथ साथ तेना हेत हुराली के जे छिचने वाला जे कम हंसता से आसा ऐप का नहीं रहा। अगर अस इन्हें चीज़ें के दूर रह ले तो ज़्यादा इन्नी मतलब जे बोझ सकते कि भाई से भी नशे के दूर रह सकते। लेकिन अगर अस तेना सामना है सिर्फ काते उराजन लगो रहे तो पूरा पूरा मौका है तेना से भी ऐसे किनार अगर बढ़ सकते। खैर ऐसे बारे असा इन्हें बारे टाइम अंतर होर गल आनी तुम भी जरूर इस पुट सोच अख बदे जिन्होंने होर लोक गीत असा तैयार थी सुनते पहले श्लोक गीत।

साईं साईं मत कर रावीए मिंजो तेरा डर लगदा। नीलम गंधर वे आवाज अंतर है बेदे जिन लोग की तुआ सुणु। अगर बढ़ते थोड़ी डकबोक लाते आपसी अखता तठा लोकल तरक्की ग्रैं तरक्की सुनने वाले जिखे इस गल सलाह लगते हैं सर अपने जे किनार भी थोड़ी नज़र दौड़ाते पैंगे पूरा इलाका सगर नज़र दैते कि भाई थोड़ा जना कठन जरूर था लेकिन पढ़े लिखे मैन वस्ते बेर नथो रहे मते मैनों दुनिया भी हेरो रही अस्ती और कुड़ी न कुड़ी आज कड़े हिसाब जो है जे जागृति लौटी से भी बल्ले बल्ले यही गेरी जैसे नौजवान के गल करेल या जिलहणों के गल करेल पहले जिलहण जिस तरह से पतलीर मनी तित पर आए जिलहण भी पहलकने हिसाब जो काफ़ी अगर ये गेरी और जेता तठणी सियाने बुजुर्ग आए या जे बोते कि चना तठणी खरी समझ अस्ती से तो अही आए लेकिन जिख्या से थे कि अपने इलाके तरक्की बारे सोचण तो हर मैन लगो रहा और कुड़ी न कुड़ी अपना अपना तरीके जे काम भी करन लगो रहा इस वास्ते। लेकिन आज कड़े हिसाब जे जने देश अंतर जस देश अंतर हंस रहे थे तैड़ी अगर अस पिछा कम हैन जिस तसे अगर न थोड़ा और से हैं तैड़ी गए के बते बोक कन लगोरा हैं तठणी बारे जिस तसे कुछ फुकार कन लगोरा तो जिखे अस किनार हैं नज़र दौड़ाते तो अस कुड़ी न कुड़ी जिस तसे ईरोरा मतलब नशना लगोरे कठेर नहीं मजत जे नहीं जबकि बते कि कसे भी समाजे या इलाके असली जे तरक्की इसे सरकारी स्कीमें जो नहीं सरकारी स्कीम में अपने जगह इसे भी लोड़ी तने बना भी कम नहीं चलना बल्कि असली तरक्की अस्ती कि जे मैं जस्ते से तना बच आपस बिच दस्ते से तना बच अखता अस्ती से आपस बिचते से मजित गार अस्ते अखियोर दी मिली जुड़ी के से कोशिश करते अकी हुरी मजित करके जड़ी मैणों के मिली जुड़ी के रहने और अकी हुरी दुख सुख अंतर जस्ते से खाड़ी भुने तड़ी जे बते रिवाज अस्ते तठा तरक्की कम काज अंतर भी जस्ते से आपस बिच एकी होरी मजद करके हिस्सा लैने वाले जड़ी संस्कार अस्ते जड़ी रिवाज अस्ते तड़ी तरक्की रस्ते ते आपे आपे खुलते बते तरक्की जो

मतलब सिर्फ एनु नहीं कि सड़कें ठीक बनी, पानी ठीक है, यो बिजली ठीक है, बिल्डिंगें बनेंगे, अभी जरूरी है, ऐसे भी के पहले जरूरी है, छोटे शुरुआती चीज़ अस्ते, लेकिन इसके अभी अगर बढ़नी तो कि पढ़ाई लिखाई इंतजाम ठीक है तो नहीं, पढ़ाई लिखाई बारे हैं नज़र जस्ती हैं हेने जित तरीका अस्ता से ठीक है कि नहीं, साफ सफाई वास्ते उसकी सोचने लगो रे, सेहती किनार हैं कि ध्यान अस्ता की नज़र अस्ती तस किनार, और वातावरण है उसकी हिसाब ताब हैं लगो रे, तैसे साफ सफाई के बारे अस्ता कहने सोचते और कि कन लगो रे, और साथ साथ जिस तरह से अस अपना जे बते आपसी जे भाईचारा है, आपसी जे सद्भाव है ना, और नौजवान जस्ते जिलहान जस्ती से तेना बच्चा आपस कहना तालमेल अस्ता से सही दिशा तेना रैली ने लगोरी कि नहीं लगोरी, अभी सब तरक्की अंतर जरूरी चीज गल अस्ती एना का मंत्र अस मैणों के मजत तथा विश्वास जस्ता से बड़ा जरूरी अस्ता, ए गल सही अस्ती कि हैं जे तठणी म्यू लगा अगर नस्ते तो तेना भी मैणों के विश्वास जितना ही था, तेना भी मैणों की काम करनी थी, तेना भी मैणों की सेवा करनी थी, तेना भी मैणों के जस्त से सुख दुख अंतर साथ खड़ी नहीं तो तेना मैणों के जस्त से छोटे मोटे जे दिखते अस्ती तस दीवी जस्त से काम करना थे तैसे हल का नहीं था, तैसे कोई ना कोई जस्त से फुकार करी कि कुछ भी तरीके जो तड़ी कुछ अपू कोशिश जस्त जारी थैनी थी, पर तड़ी कोड़ी न कोड़ी जस्त से हैं महणु के जिखे ना के मौका है तो जना कि अचिल मौका है तीन लगो रहा, तो ऐसा है नु चाहिए कि ऐसा है ना बंदा जस्त से अगर बजन चाहिए अपने इलाके के जस्त से ऐसा बंदे अगर कान चाहिए तठा भी ऐसा है नु चाहिए कि भाई हैं इलाका अगर अगर बढ़ा ला, अगर अस बिखरे रह ले अलग अलग रह ले तो ऐसा जस्त से आपस में फूट रह ली तो हैं तरक्या दी जस्ते से द्वार जस्ते भले भले बंद भूने हंसते भले से ऐसा कह नहीं लगो रही लेकिन सच्चाई ऐसा भी पता लगन लगो रही कि अगर अस एना द्वारे अगर बंद थेल तो हैं तरक्की रास्ते जस्ते से बने रहना हमेशा, तो तरक्की द्वार खोलना वास्ते ऐसा मिजित चुए कठिन के आपस जबते अक्ता वाला जिसते वो हस्ता भाव हस्ता तस्थिए कि ऐसा अगर बढ़ नहीं रू आज जरूर थस्ती कि ऐसा जाति के धर्म के जे राजनीति वाले जे हो रहे पचड़े हस्ते तहना के बची के जे आपसी जस्त से बुछ कठिन के जस्त खड़ी भई के कि हरी मदद करी के ग्रह बारे सोचना चाहिए, पंचायती बारे सोचना चाहिए, इलाके बारे सोचना चाहिए, ताकि जस्त से बे म्यू लगस्ते या जे पढ़े लिखे हस्ते जन के जानकारी हस्ती अगर से अगर न सले तो कुड़ी न कुड़ी हैं इलाके बारे बीच कुड़ी कुड़ी फुकार बोल न तो अस बल्ले बल्ले पैतल छुटने बल्ले बल्ले पैतल छुटने और पैतले छुटी गिणे जिखें बते समाज अंतर मैण मिजित करी कि अगर बढ़ते तिखें छोटी छोटी जस्ती से हैं छैड़ी जस्ती से बड़े बड़े जैसे काम करी गहती नौजवान के या जिलहणु के जे आपस जे पढ़ोर लिखोर जस्ते थे ना आपस में अगर मिली के काम करते या ग्रह जिस तरक्की बारे जैसे सोचते पंचायत अंतर भी से मिल के काम करते और जिम्मेवारी नहीं आते साथ गल हस्ती कि हक के बारे तो आज हर किनारा गल भूल लग रही जिम्मेवारी का नैन लग रहा तस्ती का अगर लग रहा तैसे भी ऐसा मदद करनी चाहिए इस और अगर अस एनू करेल तो ग्रह भी तरक्की पंचायती भी तरक्की अस्ती और पूरे इलाके जैसे से तस तरक्की भूनी अस्ती क्योंकि तठा का अगर नसलत फुकार करल तो हणे इलाके जैसे से बेहतरी भूनी खैर इन्हें बारे टाइम अंतर तुम जो एनी जरूर गल आते लेकिन एनी बारे फिर जरूर गल आते लेकिन यह बोलना चाहते अस इठा कि भाई जे आपसी एकता अस्ती ऐस सुभ्या कहना पहली जरूरत हस्ती तरक्की करने वास्ते और अगर बढ़ने वास्ते पूरे इलाके बारे सोचने वास्ते तो ऐसा एने टाइम अंतर जस्त से कठिने जरूरत भी थी एक्यूहरी मदद करने जरूरत भी थी और जे ऐसा बस म्यू लग जाना था तो अगर बढ़ाने जरूरत भी थी ताकि अगर घई उससे ऐसे हैं वास्ते भी कुछ ना कुछ जस्त से कम करे एंड फुकार करे और हैं इलाके जे छोटी मोटी दिखते से भी दूर करे और ईणे वाले बड़े जस्त से सुपने हस्ते बड़े जे कम करने हस्ते तस वास्ते भी से अगर निस्के जस्त से काम करे अगर ऐसा मजित जो तसे अगर बढ़ो और बोलते तैसे भी मजबूरी भूनी कि ऐसा दी काम का नहीं होने तैसा और अगर ऐसा बिखरो और बोलता तस भी अपनी लानी तो हाँ भी अपनी लानी और जगह तो नहीं रहने ठार हैं तो नहीं रहने ग्रां हैं तो न रहने पंचायत हैं तो नहीं रहने अस्ती इलाका हैं तो न रहने अस्ता तै सोचने काम त्यों हंसता और कहूँ कि तू जिखें फैसला करने टाइम ही हलता अपना जो फैसला तस साबन करना चाहिए ताकि ईने वाला टाइम है जो खरा लोड़ी रहे होर कुछ खास खास खबर देश प्रदेश तुम्हें सुनाई छटे राज्यपाल कविंदर गुप्ते लोक भवन शिमले क्या ईंधन संरक्षण क्षेत्र लोक भवन अंतर जस्त से कम भूना है गाड़ी के जे काफिला और इतवारे रोज जे गाड़ी गाड़ी के जे ऋण अस्थित नपुट रोक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखे बोलू कि पेंशनर तथा जे मुलाजम के कल्याण वास्ते सरकार खड़ी है हिमाचल हाई कोर्ट के तरफा फैसला जे रहा कि शिमले कमला नेहरू हस्पताल जस्ता से आईजीएमसी जी एम सी दे नैना थे तस्पुर तेना रोक लाई छोड़ी और सरकार

किया जस्ता से एनी बारे जे तना जवाब भी मगोरा। बारा लाचा दरा किणा जस्ते से घेणे वाला जे दारचा सरचू रस्ता से गाड़ियाँ दी खुल गेरा और सैलानियाँ दिए हुए खरा मौकस्ता। होरी खबर अस्ती खेलने के बारे कि आईपीएल जे खेल चलो रही अस्थित संतर धर्मशाली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम अंतर आज आईपीएल मुकाबले अंतर पंजाब किंग्स तथा मुंबई इंडियन बच जस्ता से मैच खेलने लग रहा। धर्मशाली अंतर आईपीएल सीजन दो का मुकाबला जस्ता से आज बेलदिया 7 बजे किरण जस्ता से शुरू होना। कुछ खास खबरें थी न छोटी 1 बजे जिन लोग तैयार थे सुनते श्लोकित।

वार धुपड़ी पार छाए मुए बिना मन चित हेरी सुनी लाया तेरे सो। तो शेर सिंह जरियाले आवाज अंतर बैदे जिन्हें लोग गीत सुनो तो हाँ संदेश है ये तुम्हें भी अपना जैसा हेरी सुनी के अगर जे काम करना से करे ऐसे जो साथ आवे घड़ी इशारा कन लगोरी मुँह करताप सिंह ठाकुर पंगवाड़ी कार्यक्रम पूरे ने दे इजाजत तुम्हें सुबह जमैली नमस्ते।

अभी आप आनंद ले रहे थे लोकगीतों का, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को है, अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर व धर्मशाला केंद्रों के साथ ही FM बैंड 103.7 MHz, मोबाइल ऐप और रेडियो की DTH सेवा पर भी सुना जा सकता है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश के चार नगर निगमों मंडी, धर्मशाला, पालमपुर व सोलन और स्थानीय शहरी निकायों में 17 मई को मतदान होगा। ऐसे में इन चुनावों के लिए प्रचार अभियान चरम पर है। नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज धर्मशाला व पालमपुर नगर निगम के विभिन्न वार्डों में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में लोगों से मतदान की अपील की। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि नगर निगम चुनावों में कांग्रेस को जनता का अच्छा समर्थन मिल रहा है। शिमला में आज उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बीते 3 वर्षों के कार्यकाल के दौरान कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जो हिमाचल के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।
1: भाजपा के पास विपक्ष में कोई मुद्दा सरकार के खिलाफ नहीं, न कोई भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ, न कोई बड़ा मुद्दा। विपक्ष हिमाचल प्रदेश में मुद्दाहीन। ये चार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो चुनाव है, ये पार्टी स्वयं पे है। इसको उस तरह से लड़ा जा, पार्टी के लोग सभी लोग इसमें काम कर, और हमें उम्मीद भी है हिमाचल प्रदेश के लोगों का समर्थन पहले भी मिला है, और जब सरकार गिराने का प्रयास किया गया उस वक्त भी द्वारा लोगों ने कांग्रेस सरकार को मजबूत किया, और अब भी लोगों का समर्थन मिलेगा। वोटों की दृष्टि से हमारी सरकार काम नहीं कर, हम हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए काम करना, और वो अच्छे परिणाम आ रहे हैं।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज नगर निगम मंडी चुनावों के तहत राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता व विधायक राकेश जम्वाल ने आरोप पत्र जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में मंडी की जनता को केवल उपेक्षा, अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। राकेश जम्वाल ने कहा कि कांग्रेस ने मंडी के प्रति हमेशा सौतेला रवैया अपनाया है और 2025 की आपदा के दौरान ये पूरी तरह उजागर हो गया। उन्होंने विश्वास जताया कि मंडी नगर निगम चुनाव में जनता कांग्रेस सरकार को करारा जवाब देगी और भाजपा को अपना आशीर्वाद देगी। पूर्व मंत्री व विधायक विक्रम ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि धर्मशाला में विकास कार्य ठप पड़े हैं और लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम क्षेत्र में लोगों पर लगातार टैक्स का बोझ बढ़ाया जा रहा है और निगम की संपत्तियों पर कांग्रेस पार्षदों व वर्तमान मेयर द्वारा कब्जा किया गया है। विक्रम ठाकुर ने दावा किया कि इन चुनावों में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलेगा और जनता कांग्रेस को करारा जवाब देगी।
2: नगर निगम की जो संपत्ति है उसके ऊपर किस प्रकार से कब्जा किया हुआ है, किस प्रकार से उसके ऊपर भ्रष्टाचार किया हुआ है, और उस घोटाले के कारण से सरकारी खजाने के ऊपर लगभग 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो है उसका नुकसान हुआ है। धर्मशाला नगर निगम में लोकतांत्रिक कामकाज लगभग ठप हो गया है। 2 वर्षों से सदन की कोई बैठक नहीं हुई, और जो महत्वपूर्ण मुद्दे विकास से जुड़े हुए हैं और जनता की जो शिकायतें हैं वो लंबे समय से लंबित पड़ी हुई हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे अपना परचम लहराएगी।
0: राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय आह्वान का समर्थन करते हुए कहा है कि 140 करोड़ भारतीय प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं और राष्ट्रहित में हर आवश्यक त्याग व सहयोग के लिए तैयार हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील पूरी तरह स्वैच्छिक, एहतियाती व दूरदर्शी सोच पर आधारित है और देश में किसी भी आवश्यक वस्तु की कोई कमी नहीं है। हर्ष महाजन ने कहा कि विपक्षी दल इस संबंध में भ्रम और डर फैलाने की राजनीति कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री द्वारा की गई इस अपील से देश की अर्थव्यवस्था और संसाधनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। पेट्रोलियम

0: और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश भर में घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है और किसी भी वितरण केंद्र पर आपूर्ति में कमी की कोई सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि रिफाइनरियां अधिकतम क्षमता पर काम कर रही हैं और एलपीजी कनेक्टिविटी में भी वृद्धि हुई है।
1: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर व धर्मशाला केंद्रों के साथ ही एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप और रेडियो की डीटीएच सेवा पर भी सुना गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। मीडिया वेव और एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी की शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए सुने कांगड़ी कार्यक्रम।

कांगड़ी कार्यक्रम च असां अपने श्रोतें दा बहुत बहुत स्वागत करदे कने करदे सपना जो नमस्कार। श्रोतियों पढ़ना माणू दी सब ते अच्छी कने सुंदर आदतां च शुमार हुंदा है। बोलदे हन कि किताबां माणू दियां सब ते खरियां कने सच्चियां दोस्त हुंदियां हन। जिन्हां दियां किताबां कने मित्रचारी हुंदी है, जिन्हां दी सह माणू कदी निराश हताश नहीं हुंदे हन, ना कदी अपने आप जो किला समझदे। किताबां माणू दे सुपने जो साकार करदियां हन। अज कांगड़ी कार्यक्रम च असां एक गलबात लेके आयो हन कि किताबां दा असां दी जिंदगी च क्या महत्व है, कने इसदे सोगी सूबे दियां खास खबरां कने लोक गीतां तुसां कार्यक्रम च सुनदे हन, कने इन्हां दा आनंद भी लैंदे हन। कार्यक्रम दी शुरुआत करदे हन विजय भंडारी दे गाए इस लोक गीत कन्नै।

जी हाँ, विजय भंडारी दी आवाज़ सुनिया तुसें ए लोक गीत दिखा किताबां जो भी दिले च अपने बसाना चाहिंदा कने इना कने देई दोस्ती करना चाहिंदी कि कदी साथ ना छुट्टे कने ए किताबां जेड़ा वादा करदियां सै पूरा करदियां हन देई दोस्ती निभांदियां किताबां। किताबां दा माणुआं दी जिंदड़ी च दिखा बड़ा खास महत्व हुंदा है। किताबां ज्ञान दा भंडार हुंदियां हन कने माणुआं जो सिद्धा रस्ता दसने दा काम करदियां हन। किताब सच्ची मित्र हुंदियां हन कियां ए हर हाल च अहां दा साथ दिंदियां कने असां जो नोई नोई गल्लां सिखने दे मौके दिंदियां हन। किताबां दे जरिए ते असां इतिहास विज्ञान साहित्य संस्कृति कने नैतिक मूल्यां दी जानकारी किताबां ते असां जो मिलदी है। खरियां किताबां माणुआं दे विचारां जो सही दिशा च लेई जांदियां कने चरित्र निर्माण च मदद करदियां हन। महान माणुआं दी जीवनी पढ़ी के असां जो प्रेरणा मिलती है कने जिंदगी च अग्गे बधने दी शक्ति हासिल हुंदी है। स्कूली न्याणियां वास्ते खास तौर ते खास हुंदियां हन किताबां। सही शिक्षा हासिल करने दे मुख साधन हन। किताबां ना सिर्फ इम्तिहानां च कामयाबी दिलांदियां हन बल्कि दिमागी कने बौद्धिक ज्ञान च बढ़ोतरी भी करदियां हन। पढ़ने दी आदत ते ध्यान लग्या रहिंदा, कल्पना शक्ति कने भाषा ज्ञान भी बधदा है। अज दे नए जमाने च इंटरनेट कने तकनीक दे बधदे असर दे बावजूद किताबां दा महत्व घट नहीं होया है। किताबां असां जो डुगाइया कने सोचने कने समझने दी क्षमता दिंदियां हन। सह मनोरंजन दे सौगी सौगी ज्ञान कने संस्कार भी दिंदियां हन। बोलिया जा सकता है कि किताबां जिंदड़ी दी बेशकीमत धरोहर हुंदियां हन। माणु जो अज्ञानता ते ज्ञान दी तरफ

असां किताबां किताब घर च जाइने या फिरी कुतो किताबां दे मेले लगे होंदे तित्थु जांदे तां बड़ी खुशी हुंदी जालू जी। लोक किताबां चुक्की चुक्की के दिखदे कने बरकियां खोली खोली के दिखदे कने अपनी पसंद दी किताब जो लेई लैंदे खरीदी लैंदे तां ए बहुत खरी जड़ी सकारात्मक जड़ी आशा है या उम्मीद है कि पढ़ने दी आदत आज भी लोकां दी बनी हो है कने किताबां कने रिश्ता लोकां दा आज भी जुड़िया है जड़े जी लोग पढ़ना पसंद करते हैं। किताबां दा महत्व अज दे टाइमे च भी उतना ही ज़्यादा है जितना पहले टाइमे च था। अज भी लोग किताबां खरीदते कने पढ़ते कने किताबां कने प्यार करते हैं अपना ज्ञान ज्ञान दी रोशनी जो होर ज़्यादा चमकाते हैं। किताबां ने दोस्ती सच्ची पक्की दोस्ती हुंदी है इस वास्ते असं जो किताबां दा सम्मान करना चाहिंदा कने अपनी जिंदगी च पढ़ने दी आदत बनानी चाहिंदी है। किताबां ज्ञान प्रेरणा कने कामयाबी दी असली चाबी हन। ये असं जो हमेशा याद रखना चाहिंदा कि अज जड़े कुछ भी असं कोई भी है जिस जिस ओहदे पर है या जिस जिस फील्ड बिच है जिस जिस कम्में च लग्या वो किताबां पढ़ी के ही अपनी उस ओहदे च पुज्जा है उस ओहदे तक पुज्जा है। तां अपने जीवन जो सफल सार्थक बनाने ताई किताबां कने दोस्ती असां जो करना चाहिंदी है कने न्याणे जो भी ये दोस्ती करवाना चाहिंदी है। ज़्यादा तो ज़्यादा बच्चों जो किताबां पढ़ने की आदत जड़े से माता पिता ही पाई सकते हैं। उन्होंने हत्थे च किताब दिया बड़ियां छैल छैल किताबां बाजारे च मिलदियां हन बच्चों की पसंद की भी मिलदियां हन। तां कदी कहानियां दी किताबां देतियां कदी कविता दी किताबां दे दियां उन्हां दी पसंद जानी के उन्हां जो उन्हां दे मुताबिक किताबां देंगे तां उन्हां जो भी किताबां कने दोस्ती होनी उन्हां दे ज्ञान च भी बढ़ोतरी होनी कने ओ एक संस्कारी बच्चा भी बनी सकदा है। कने किताबां ते ही दिखा संस्कार भी मिलदे हन कने उन्हां दा आत्म विश्वास भी बढ़ना किताबां पढ़ी के। तां ए किताबां पर असां गलबात लगाई कि किताबां दा असां दी जिंदगी च क्या महत्व है बहुत बड़ा महत्व है इस दा जितनी ज़्यादा गल कीती जाए सही कम है। तुसां जो ये गलबात जरूर पसंद आई होंगी कने कुथू ना कुथू अगर ये गलबात डुगाई च पूजी होंगी तां असां अपने आप जो जड़ा से खुश नसीब समझ गए कि अहां दी गलबात दा असर होया है। लोक गीत सुनते हैं शांति विश्व की आवाज़ विच।

जुले नमस्ते गीस तंजन आंगो आकाशवाणी शिमला ची इन हिंची पत साई दो ते गर्जे पर प्रोग्राम दो तिमरे लंग यंपो स्वागत लिखत थन ये प्रोग्राम की शुरुआत ती की ग्यूनशी फेस यंपो लिखते थे इरांग साई की पुंठे होशित में लब्जे फेस दिहेश थन की फेस असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी हेश लो नंग इरांग जो मीचे रो सफल क्यारे बोंठे असफल क्यारे होशित मे ग्युनशीश इरांग जी ते मिन छो इरांग जी मी छाई सफल क्यारे ग्युत छाई दो इज्जत सम्मान ग्युनशीश एपो एपो फेस तारीफ हिंचा नंग इरी भविष्य की बोंठे कंची चु सपना पूरा लिखचा इरांग छाई की जरूरतेश पर थे छाई इरांग जो हिन्नाक तो खुक्षुमेश आसानी यंपो खुक्षुमेश थे जम्बुलिंग रो संघर्ष मली नंग मेहनत मली नंग असफल मकिया नंग हिंग जी दूरे बढ़ाई खाना क्यमेश तरक्की खाना लिखचूश अक्सर हिंग जी असफल क्या नंग या खमोटी लेनती मडी नंग यू न निराश क्या थी चूश हिंग जी अक्सर थे असफल क्या जी थे रो अंते चुम द थे खोची खर एपो क्या मेमेश है ना ते चुम छो हिलती इम्तिहान दो एपो नंबर रे खुबशुमेश थे प्रतियोगिता जुरो हराय के थे चुम एरी इची मेहनत ली नंग लेन ली नंग खची बार एरी अनुसार परिणाम रे खुबशुमेश वो थजुक क्या जी हिंग निराश क्या थी चुर छाई छाई खत्म क्या मेश ते चुम छो लेकिन असफलता रो हिंग जो एपो तेजी थजु रोकची लब्जा थी चग्युनशीश बल्कि थे गलती रोकची सिखाए लिखचुम की संकेत रे दचीश जैसे क्युक्सी बेते जी दक्षम किंजी बेते जी अमचा छटुमेश कर अमचा मठुपची ब्रंचुम की ग्यर जी मामच नांग बेते जी अमचा ठुपचुमेश ताल बार बार ब्रंचुम हेर शिंशुश व थेले बार दो नंग असफल किया जी खोची ताल एपो ली जी अमचा छटुश इतिहास गवाह है कि तेजी तेजी मी अफसर जी तेजी क्यारे बोंठे ताल जोड़े होशित मई बारदो थांगशीश थॉमस एडिसन लो जी तिकी तेजी अमेरिकी आविष्कारक तीश ताल बोंठे इनी जी हिन चीजों के ताल जी बिजल बल्ब की आविष्कार लिखशीश दुरे मी जी ते लेंगी यक्सी इंशो श्रेष्ठ लिखी इंशो पर ताल इंजी मेहनत लिख कर दूरे बढ़ाई कीश इची मेहनत ना कोशिश ली जी खोची ताल तेजी के ईश ताल इंजी रो पता देश थे चौक से ए पी जे अब्दुल कलाम की मीन रे इन छाई जी हिन चीजों के मीचे रो इरांग जो होश मई बार दो थांग शद चीश ताल मते क्यों रुकची रही ईश थजू बावजूद ताल जी होशित मई लो जी मेहनत लिखशीश ताल एरी भारत युल की राष्ट्रपति रनीश अगर ताल इनजी बारदो छाई रुकन जी निराश के जी जो थीज नंग थन ताल दो मिसाइल मैन मीन रोक ची सूजी रे छटू मेचो थन की वक्ता लोकची पा बेते जो नोई कंपटीशन नीश नोई दबाव नीश इम्तिहान रो एपो नंग नोई नंबर रिचुंगी एपो लेन चकचुंगी

रुचि दुरिक बड़ाई क्यमिन गी दबाव नीज पथे छाई की बला कुम खमोटी लेन ती मडुब नंग मीजी यु न निराश के थे चु लेकिन हिंग जो थे हा गुश शीश की थे तिकी इम्तियान यति की हार एरी जीवन छाई की फैसला थी चुमिच थे असफलता क्यमिन सु एरंग जो नोई लफ्जा दचीज थे लफ्जा जी सफल किए जी खोची रे खुशुमेज थे असफलता रुक जी हिंग जो सीख थी चा गुशीश दरुम एरी लिखित सु गलती छाई रो ठीक लिख चुंगी मौका दचीश सुसुमीर जी थे रुक जी सीख थी नंग थजूर थजू जी रमिन सु टाइम रो तेजी नंग मजबूत मी के इंश हिंग छाई तो थे लफ्जा रो चा नहीं पूछा गुशीर दरुम मेहनत नंग कोशिश लिख जा बुचुमेज द थे फैस नंग लफ्जा एम्पो थे फैस क्या खोम गे थे द ललती हिन कते दौलत राम की ललती ललई बिन मुआ मीठे तेरी यारी।

मेरी भारत होशित में तरक्की लिख चुश थे हिंद साई की जिम्मेवारी हेज की थन थन सुम शी की बेते जो नचुंग मा शर्बा जो रो एपो फ्यास लबजा नंग तो नचु अमसी कंचुज रमिन सुबक्ता छाई बोंटे एपो हिश मेहनत लिखी चु अमसी रो बार दो कई तरमिश मगर थजुई परिणाम हमेशा एपो खुकशीश थे लब जना यंपो थे फ्यास क्या खूम गते हेर ललती हिनकते ललई मिन गेमुर शिशु तदमोला क्योद ललत हिर चिपा केलंग महिला मंडल।

धनगी समाचार हिंदी। राज्य सरकार मांगची नशे के खिलाफ थनसुंग से चलाई लिखशीचू एंटी चिट्टा अभियान की तहत पुलिस की निगरानी नोई लिखशी एश लोता। थजोकची एपो नांग सक परिणाम रे रही एश। सरकार की थे एंटी चिट्टा मॉडल की थुजेगी नशा लिखची पर नांगता लांगजी पर जो चुमचा रो या तो लिखशीश दरुंग ससर ससर राज्य जो रो थे मॉडल की बोंठे चर्चा लिखशीश। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की क्षेत्र कार्यालय जी हिमाचल प्रदेश रो थे बोंठे रिपोर्ट दर्ज रोलो शीश। राज्य सरकार चिट्टा चौक से नशा बंद लिखचा बोंठे नांग नशा लिखचिपा के खिलाफ थे एंटी चिट्टा अभियान की दूसरा चरण चुकची तैयारी लिखचुम लोता। एंटी चिट्टा मॉडल की तहत चिट्टा कारोबार लिखशी चु मी छाई के खिलाफ कार्रवाई लिखचुश लोता। दरुंग पीड़ित कई पर जो पुनर्वास की बोंठे ध्यान दचुम लोता। धर्मशाला की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रोथन आईपीएल मुकाबला रो पंजाब किंग्स नांग मुंबई इंडियंस की मुकाबला को मैच के अमिंश। धर्मशाला रो आईपीएल सीजन की थे दूसरा मुकाबला इश थे मैच थन फितो 7:30 रो चूमिश। करीब 16,000 फुट की ऊंचाई दो बारालाचा ला रोकची नी चू दर्चा सिरचू अमची मोटर जो रो एल्डे बोंठे आलची हेजलोता। लाहौल स्पीति जिला प्रशासन नांग सीमा सड़क संगठन की 70 आरसीसी इकाई की मेहनत की लेन यम्पोथे ग्यूनशी इचो अमची रो मोटर की आमचा बोंठे बहाल लिखशीश। उपायुक्त किरण बढ़ाना जी लोशीश की रमिन सुर सुमी दिन रो नम एपोजो नांग थे अमची तेजी तेजी मोटर जी बोंठे रे आलचुम लोता। दरुंग थे अमसी पर्यटन की बढ़ावा रो बढ़ावा दचा बोंठे रे एपोहिश लोता। दथे नंग यंपो थन की समाचार ख्या खोम गते। दथे प्रोग्राम की आखिर लला हिन कते ललई मिन हिश जिसपे आंगमो परदेसी लला थीर चिपा नीरू चांदनी।

थे प्रोग्राम गी अंतो बेते जो नांग शर्बा नचुंग मजो रो लोकेत खा लेन तिली नांग पूरा शिंडा दर्जी मेहनत यम पु लिखचुश बार बार कोशिश लिखचुश यू न निराश क्या में मेन छो असफल क्या मेन गी गेर हिंग जो नांग ची वंच गुनशीश मेहनत लिखशी चु अमची रो बारदो कई कई नांग बारदो रे रमेश मगर थजुई परिणाम हमेशा हिंग जो एपो खुकशुश थे लबजा नांग यांपो थे फेस क्या खूम गए थे दरगीज इनी जी तत्मजोनी गीज द छाई दो लबजा रोचा न हित बुचे गुंशी दरु मेहनत नांग कोशिश लिखचा बुचु मेंश द गिरो इजाज़त दनी चुले नमस्ते।

0: लाहौली कार्यक्रम अभी आपने सुना, इसके साथ ही हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम अब संपन्न होते हैं। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 7:05 होने को है। अंग्रेजी समाचार अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान और बागवान भाई बहनों को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं अश्विनी शर्मा।
1: और मैं हूं राजेंद्र।
0: राजेंद्र जी, क्या हाल है आपके?
1: जी अश्विनी जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, और हम आशा करते हैं कि हमारे किसान और बागवान श्रोता भी ठीक ठाक होंगे, इस समय हमारा कार्यक्रम ध्यान से सुन रहे होंगे। क्योंकि अश्विनी जी, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हर रोज एक महत्वपूर्ण विषय कृषि, बागवानी और पशुधन से संबंधित साझा करते हैं, और हमारे किसान भाई इस जानकारी का काफ़ी लाभ भी उठाते हैं।
0: जी, बात करें आज के कार्यक्रम की, तो आज के कार्यक्रम में काम की बातों में हमारा विषय रहेगा थ्रेशर का प्रचालन और रखरखाव। साथ ही सुनाएंगे पहाड़ी लोकगीत और सुनाएंगे एक जानकारीपूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक खेती।
1: जी अश्विनी जी, बात करते हैं काम की बातों में थ्रेशर का प्रचालन और रखरखाव के बारे में। तो देखिए, अनाज के दानों को पौधों से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेशिंग या गहाई भी कहते हैं, जिसमें दानों को कम से कम अंदरूनी या बाहरी नुकसान पहुंचे, ऐसा कार्य करने वाली मशीन को थ्रेशर कहते हैं। आमतौर पर थ्रेशर ड्रमी टाइप, बीटर, हैमर मिल, सिंडिकेटर, रासपवार और एक्सियल फ्लो प्रकार के होते हैं। थ्रेशर द्वारा फसल की गहाई, सफाई और छंटाई करके बोरों में भरने के लिए हमें कुछ एक इकाइयों के बारे में बात करते हैं, जैसे भरण की इकाई होती है, गहाई की इकाई होती है, सफाई और छंटाई की इकाई होती है, हैंडलिंग यूनिट होती है, और इसके अतिरिक्त भी इसमें कुछ अन्य सहायक भाग भी होते हैं। अश्विनी जी,
0: जी भरण इकाई की बात करें तो थ्रेशर की वह इकाई जिसकी सहायता से फसल को गहाई इकाई में भेजा जाता है, भरण इकाई कहलाती है। यह इकाई भिन्न भिन्न थ्रेशरों में भिन्न भिन्न बनावट की होती है। भरण इकाई मुख्यतः पतनालानुमा, हॉपरनुमा, घनात्मक फीड रोलर टाइप फीडिंग पतनाला, कन्वेयर फीडिंग पद्धति तथा चेन टाइप फीडिंग पद्धति की होती है। गहाई इकाई की अगर हम बात करें तो थ्रेशर की वह इकाई जिसमें फसल की बालियों या फलियों से दाना अलग किया जाता है तथा साथ ही साथ कुछ में फसल के डंठलों का भूसा बना दिया जाता है, गहाई इकाई कहलाती है। गहाई इकाई के तीन मुख्य भाग होते हैं, गहाई सिलेंडर, कनकेब और सिलेंडर का ढक्कन।
1: जी हाँ, अगर बात करें गहाई सिलेंडर की, तो इस इकाई में आने वाली फसल तेजी से घूमते हुए गहाई सिलेंडर से टकराती है और उसकी चोट से अधिकतर दाने फसल से अलग हो जाते हैं। शेष गहाई रगड़ द्वारा उस समय हो जाती है जब फसल सिलेंडर और कनकेव जाली के संकरे झिरी मार्ग से ये गुजरती है। थ्रेशर में आमतौर पर खूंटीदार यानी स्पाइक टूथ, हथौड़ी नुमा बीटर या हैमर मिल और सिंडिकेटर किस्म की गहाई सिलेंडरों का प्रयोग किया जाता है।
0: जी, कनकेव की अगर हम बात करें तो थ्रेशिंग सिलेंडर के नीचे का भाग जो लगभग उसके निचले आधे भाग की परिधि को घेरे रहता है, कनकेव कहलाता है। यह आकार में अवतल रूप में बना होता है। कनकेव और सिलेंडर में सबसे बाहरी परिधि के बीच की संकरी झिर्री को कनकेव क्लीयरेंस कहते हैं। यह झिर्री सामान्यतः अच्छे किस्म के थ्रेशरों में घटाई या बढ़ाई जा सकती है। आमतौर पर जाली नुमा छिद्रयुक्त, रास्पबार टाइप तथा खूंटीदार कनकेव प्रयोग में लाए जाते हैं।
1: जी हाँ, बात करते हैं सफाई और छंटाई इकाई की। थ्रेशर की ये इकाई गहाई इकाई से आए हुए दानों, फसल के डंठल, भूसे के मिश्रण से दाने को अलग करती है, छंटाई करती है। सफाई और छंटाई इसे इकाई भी कहा जाता है। इस इकाई के मुख्य तीन भाग होते हैं, पंखा, ब्लोअर या चूषक पंखा, छलनिया या चलनिया, छलनिया हिलाने वाला शेकर तंत्र। अगर बात करें पंखा ब्लोअर की, कुछ थ्रेशरों में दाने के साथ जब भूसे व अन्य हल्के पदार्थों का मिश्रण सफाई छलनियों पर गिरता है तो हवा के वेग से उसे बाहर उड़ा दिया जाता है। ये कार्य पंखा ब्लोअर द्वारा होता है, परंतु ज्यादातर थ्रेशरों में ये कार्य हवा द्वारा चूषण करके किया जाता है, जिसे एस्पिरेटर भी कहते हैं।
0: जी, छलनिया और चलानिया की अगर हम बात करें तो थ्रेशर के दानों की सफाई और छंटाई के लिए ऊपर से नीचे की ओर दो या तीन छलनियाँ लगी होती हैं। ये छलनियाँ कोनियाँ लोहे के चौकोर फ्रेम में फिट रहती है। छलनियाँ लोहे की चादर में आवश्यक नाप के छिद्र बनाकर तैयार की जाती है। फ्रेम से जुड़ी इन छलनियों के बीच की इच्छित दूरी 50 से 60 मिलीमीटर रखकर मुख्य फ्रेम के साथ फिट कर दी जाती है। यह पूरा फ्रेम बोल्ट की मदद से थ्रेशर की फ्रेम से लटका रहता है। इन बोल्टों की मदद से छलनियों को ढाल में समायोजित किया जा सकता है। छलनियों को हिलाने वाले

0: तंत्र की बात करें तो थ्रेशर की छलनियों को दोलन गति देने के लिए क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड शेकर तंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्रैंक को चलाने वाली पुली बदलकर दोलन गति को घटाया या बढ़ाया जा सकता है।
1: देखिए, गहाई कार्य से पहले थ्रेशर की जांच और सर्विसिंग के बारे में अगर बात करें, थ्रेशर की आपको सफाई करनी है, ढीले नट बोल्टों को कस लेना है, बियरिंग और अन्य घूमने वाले पुर्जों पर संतुति ग्रेड का ग्रीज और स्नेहक तेल देना है, थ्रेशर सिलेंडर को हाथ से घुमाकर देखना है कि वो मुक्त घूम रहा है या नहीं। यदि मुक्त ना घूम रहा हो तो दोष मुक्त करके ही थ्रेशर चलाना चाहिए। सामान्य दशा में सिलेंडर मुक्त ये घूमना चाहिए। थ्रेशर का समतलीकरण स्प्रिट लेबल से जांच लें। पट्टों में उपयुक्त कसाव की जांच करें। ढीले पट्टों को कस देना है। थ्रेशर और शक्ति स्रोत की अलाइनमेंट को भी आपको ठीक करना है।
0: जी, इसके अलावा थ्रेशर और शक्ति स्रोत को पक्की तरह से स्थित कर लें। उपयुक्त आकार की जाली का प्रयोग करें। जाली की ढाल, दोलन गति और स्ट्रोक की लंबाई निर्माता की संस्तुति के अनुसार रखें। थ्रेशर को चलाने के लिए उपयुक्त एवं समर्थ शक्ति स्रोत का प्रयोग करें। शक्ति स्रोत की जांच करनी हो तो बिजली की मोटर से नंगे बिजली की तारों में इंसुलेशन टेप लगा लें। मुख्य स्विच तथा स्टार्टर जमीन से कुछ ऊपर परंतु थ्रेशर के चालक की पहुंच के अंदर रखें। यदि शक्ति स्रोत ट्रैक्टर या इंजन हो तो उसे साफ कर लें तथा पानी, तेल और ईंधन की जांच कर लें। थ्रेशर को शक्ति स्रोत से खाली चलाकर सिलेंडर की चाल और घूमने की दिशा देख लें। थ्रेशर की चाल और दिशा निर्माता की संस्तुति के अनुरूप ही होनी चाहिए। कनकेव क्लियरेंस की जांच करें और संस्तुति की गई नाप ही रखें। फसल की जांच, फसल की गहाई करने से पहले यह देख लेना चाहिए कि वह भली प्रकार से सूखी हो। गीली फसल थ्रेडिंग सिलेंडर को अवरुद्ध कर सकती है और इससे थ्रेशर पर अधिक लोड पड़ता है और ऊर्जा की भी हानि होती है। सामान्य तौर पर गेहूं की बाल जब हाथ से मोड़ने पर आसानी से टूटने लगे तो वह गहाई के लिए उपयुक्त मानी जाती है।
1: जी, हम बात करते हैं थ्रेशर की दिशा की। थ्रेशर के भूसा निकासी द्वार की दिशा हवा के बहने की दिशा के समानांतर होनी चाहिए ताकि गहाई के समय भूसा हवा के साथ चला जाए, नहीं तो भूसा मजदूरों के ऊपर गिरेगा और उनकी कार्यक्षमता भी कम होगी। थ्रेशर का काम करते समय स्थिर होना भी अनिवार्य है, इसलिए थ्रेशर को स्थिर करने के लिए पहियों के नीचे लगभग आधा फुट गहरे गड्ढे खोद दिए जाते हैं जिससे थ्रेशर स्थिर हो जाता है। खूंटियां गाड़कर थ्रेशर की टांगों को रस्सियों द्वारा बांध लेने से थ्रेशर स्थिर हो सकता है।
0: जी, थ्रेशर के प्रचालन संबंधी कुछ सुरक्षा सावधानियां भी रखनी आवश्यक है। जैसे थ्रेशर के द्वारा गहाई कार्य को कम समय, कम खर्च, कम मेहनत और सुविधा अनुसार किया जा सकता है। थ्रेशिंग के समय जरा सी भी असावधानी बरतने पर भारी क्षति भी हो सकती है। प्रतिवर्ष गहाई के समय मशीनों के बढ़ते प्रयोग के साथ साथ दुर्घटनाएं भी बढ़ रही है। इनसे बचने के अगर हम तरीकों की बात करें, थ्रेशर में सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग बेहद आवश्यक है और थ्रेशर प्रचालन संबंधी सुरक्षा सावधानियों की पूरी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। ज्यादातर दुर्घटनाएं कारिंदों की लापरवाही, प्रशिक्षण की कमी, नशीली वस्तुओं का सेवन, ढीले ढाले कपड़े के पहनने तथा घटिया थ्रेशरों के इस्तेमाल के कारण होती है। इन दुर्घटनाओं से कुछ उपायों को अपनाकर बचा जा सकता है। जैसे हमेशा अच्छे और सुरक्षा उपकरण लगे थ्रेशर ही खरीदें। थ्रेशर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त किए बगैर उसे ना चलाएं। काम करते समय चुस्त पोशाक पहनें। थ्रेशर पर काम करते समय नशीली वस्तुओं का सेवन ना करें और थ्रेशर में काम करते समय हमेशा सचेत और जागरूक रहें।
1: किसी भी मजदूर को दिन में 8 से 10 घंटे से ज़्यादा काम पर ना लगाएं। फसल डालने वाले मजदूरों को थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपस में बदलते रहें। शारीरिक रूप से कमजोर श्रमिकों को खास तौर से फसल डालने के लिए ना लगाएं। सूर्यास्त के बाद समुचित रोशनी की व्यवस्था के बिना थ्रेशर ना चलाएं और थ्रेशर के पास की जगह को रोशनी अवरोधों से मुक्त रखें। गीली फसल की गहाई करने से थ्रेशर बंद पड़ सकता है, इससे फसल को डालने में ज़्यादा ताकत भी लगानी पड़ती है और दुर्घटनाओं के आसार भी बढ़ सकते हैं। फसल का ढेर बिजली की तारों के नीचे बिल्कुल भी ना लगाएं। बिजली के जोड़ों को ढीला और खुला ना रखें। विद्युत मेन की मेन स्विच थ्रेशर चालक की पहुंच के अंदर होनी चाहिए। खलिहान में हुक्का, बीड़ी और सिगरेट ना पिएं। आग से दुर्घटना की रोकथाम के लिए खलिहान में बालू और धूल के ढेर, बाल्टियां रखें। बड़े कृषकों को अग्निशामक यंत्र भी रखने चाहिए। छोटी मोटी चोट के उपचार के लिए प्राथमिक उपचार बॉक्स भी खलिहान में अवश्य रखना चाहिए।
0: जी,
1: तो देखिए अश्विनी जी,

0: सुना ये पहाड़ी सहगान। आइए अब आपको सुनाते हैं एक जानकारीपूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण। बातचीत का विषय है जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक खेती। बातचीत में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर रविंद्र जसरोटिया और उनसे जानकारी हासिल कर रहे हैं लेखराम शर्मा।
1: डॉक्टर रविंद्र जसरोटिया जी नमस्कार।
2: जी नमस्कार।
1: डॉक्टर साहब आपका हमारे आकाशवाणी स्टूडियोज में हार्दिक स्वागत है।
2: जी धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम किसानों और बागवानों के लिए हर रोज कार्यक्रम में नए विषयों से संबंधित जानकारियां लेकर आते हैं, तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन का हमारे जीवन पर, हमारी खेती बाड़ी पर, बागवानी पर खासा असर पड़ता जा रहा है। आज कार्यक्रम में विषय यही है कि जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक खेती, इस विषय से संबंधित हम किसानों के लिए आपसे कुछ एक जानकारी हासिल करेंगे। ये हम सभी जानते हैं कि जैसे रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से हमारे खेतों की मिट्टी खराब होती जा रही है, हमारे पर्यावरण पर हमारा जल स्रोत दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है, तो कौन कौन से वो समस्याएं हैं जो हमारे सामने दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे रहेगा कि जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक खेती है क्या।
2: जी धन्यवाद। सभी श्रोताओं का मेरा प्यार भरा नमस्कार। कृषि का पर्यावरण के साथ सदियों से गहरा नाता रहा है। खासकर भारत जैसे देश में कृषि के अनुकूल आबो हवा परिस्थिति ने इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई।
1: जी
2: कृषि क्षेत्र न केवल देश की रीढ़ है बल्कि 70% आबादी को रोजगार भी उपलब्ध करवाता है। यही नहीं देश की अर्थव्यवस्था में भी इसका योगदान 17% से ऊपर है। मगर पिछले कुछ दशकों से मौसम में आ रहे बदलाव कृषि पर प्रभाव डाल रहे हैं। फसल बुवाई किस बार लंबा होता सूखे का दौर, बढ़ती गर्मी से नमी में कमी, सिंचाई के साधनों का सिकुड़ना तथा फसल कटाई से पहले वार्षिक खेती की मुश्किलों को बढ़ा रहा है।
1: जी बिल्कुल।
2: साथ ही बेहतर उत्पादन और फसल सुरक्षा हेतु रसायनों का बढ़ता प्रयोग भी स्थिति को बदतर बना रहा है। अंततः अस्थिर उत्पाद और बढ़ती लागत से तंग आकर धीरे धीरे लोग खेती से भी पलायन कर रहे हैं।
1: बिल्कुल जी। और देखिए ये कुछ एक वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि समय पर ना तो बारिश हो रही है और ना ही गर्मी पड़ रही है। ऐसे में हमारे किसान और बागवान चिंतित है, सभी विश्व के सभी लोग भी, वैज्ञानिक भी निरंतर खोज कर रहे हैं इस विषय में।
2: जी अगर हम बात करें ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत जलवायु परिवर्तन में सबसे अधिक प्रभावित 10 शीर्ष देशों में शामिल है।
1: अच्छा जी।
2: जलवायु की बदलती परिस्थितियां कृषि को सबसे अधिक प्रभावित कर रही हैं। वैश्विक स्तर पर हो रहे अनुसंधान साफ करते हैं कि जलवायु परिवर्तन और कहर बरपाएगा जिसका सबसे ज्यादा असर विकासशील देशों के कृषि क्षेत्र पर होगा। जानकार कहते हैं कि भारत में 2039 के बीच जलवायु परिवर्तन के कारण लगभग 4.5% से 9% के बीच उत्पादन में गिरने की संभावना है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया गया।
1: अच्छा जी।
2: इस खेती का मुख्य उद्देश्य जो है किसी भी फैक्ट्री निर्मित उत्पाद जैसे कि कृषि रसायन उर्वरक इनका इस्तेमाल नहीं करना।
1: अच्छा।
2: इसके लिए एक ये जो खेती है ये शुद्ध रूप से देसी गौ आधारित खेती है।
1: अब डॉक्टर साहब बात आती है कि प्राकृतिक खेती की जरूरत हमें क्यों महसूस हुई और ये जो प्राकृतिक खेती है ये है क्या।
2: प्राकृतिक खेती कृषि की ऐसी विधि है जो पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाते हुए कम लागत में खेती की तकनीक है। ये तकनीक रसायनों को हतोत्साहित कर देसी गाय के गोबर, गोमूत्र और स्थानीय वनस्पतियों पर आधारित आदानों के प्रयोग का अनुमोदन करती है।
1: जी।
2: ये खेती तकनीक किसान की बाजार पर निर्भरता को कम करती है। इस खेती का मूल मंत्र है गांव का पैसा गांव में और शहर का पैसा भी गांव में।
1: बिल्कुल जी बहुत बढ़िया बात है। तो देखिए हमारे किसानों की बचत भी होगी, आमदनी भी अच्छी होगी और हमारी जो खेत की मिट्टी है वो भी सुरक्षित बनी रहेगी।
2: जी जी जी। प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभ हैं। बीजामृत, ये सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा बीजोपचार किया जाता है। इसके अंतर्गत जो भी बीज या कोई भी हमारा नर्सरी है या पौधे हैं वो जब खेत में लगाएं तो बीजोपचार से उसका किया जाए बीजामृत से।
1: अच्छा जी।
2: इससे क्या होता है कि एक तो बीज को और पौध को कीटाणुओं से लड़ने में सक्षम हो जाते हैं, दूसरा जो बीमारियां होती हैं उससे भी ये बचे रहते हैं।
1: अच्छा।
2: दूसरा जो है हमारा वो है जीवामृत एवं घन जीवामृत।
1: जी।
2: प्रकृति ने बहुत सारे ऐसे किसान के हितकर सूक्ष्म जो जीव हैं वो उपलब्ध हैं।
1: अच्छा।
2: जब हम किसी रसायनों का इस्तेमाल करते हैं तो ये जीव उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं।
1: बिल्कुल।
2: उनको वापस बुलाना होता है। ये एक ऐसी फैक्ट्री है जो निरंतर मिट्टी में काम करती रहती है जिसमें मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ावा देती है।
1: जी।
2: तो जो बीजामृत है उसके बाद ये जीवामृत है, ये घन जीवामृत है, ये इन कीटाणुओं की संख्या में बढ़ावा देते हैं और ये कीटाणु जो है किसान के हितकर होते हैं।
1: अच्छा।
2: जो कि अनुपलब्ध पोषक तत्व है उनको उपलब्ध करके जड़ों को उपलब्ध करवाते हैं।
1: तो वैसे भी डॉक्टर साहब देखिए जैसे हमारे जो किसान है जब रसायनों का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे कीट भी होते हैं जो फसल को नुकसान करते हैं, तो उस

0: को खत्म करने के लिए हमारे किसान भाई रसायनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो ऐसे मित्र कीट होते हैं जो फसल की सुरक्षा करते हैं, किसानों के लिए फायदेमंद सिद्ध होते हैं, तो वो भी मर जाते हैं
1: जी।
0: ऐसे में हमारे किसान भाइयों को बचना चाहिए।
1: इसमें जो है कि कोई भी जब हम किसी रसायन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हमारे आसपास में जो वनस्पति होते हैं, पत्ते होते हैं, पौधे होते हैं, ऐसे पौधों को हम छांटते हैं जिनको हमारे पालतू जानवर नहीं खाते हैं।
0: अच्छा जी।
1: उनका जो अर्क निकाल कर उसमें से हम जैसे कि नीमास्त्र, नीम के पत्तों से नीमास्त्र बनाते हैं, अग्निअस्त्र बनाते हैं, ब्रह्मास्त्र बनाते हैं। ये जो ये अस्त्र हैं ये कीड़ों की रोकथाम में सहायक होते हैं।
0: अच्छा।
1: और जो जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की, कीड़े का कीड़े के द्वारा समाधान किया जाता है। मित्र कीट जो होते हैं वो हमारे जो शत्रु कीट हैं उन पर निर्भर करते हैं और उनकी संख्या को नियंत्रित में रखते हैं ताकि हमारी फसलें बची रहती हैं।
0: बिल्कुल जी। और ऐसे पौधे जो हमारे किसान भाई जिन्हें बेकार समझते हैं
1: जी, जी।
0: तो उन पौधों का भी इस्तेमाल करके, उन पत्तियों का भी इस्तेमाल करके हमारे किसान भाई अपने लिए फायदेमंद प्राकृतिक खेती करके
1: जी, जी, जी।
0: जो उत्पादन है वो ले सकते हैं।
1: जी जी। हमने ऐसे पाया है विगत 5 वर्षों में कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका की प्राकृतिक विधि से उसका इलाज नहीं किया जा सकता, रोकथाम नहीं की जा सकती। ऐसे कीट भी हमारे जो नियंत्रित में रहते हैं और पैदावार भी अच्छी होती है। किसानों को बस समझने की जरूरत है कि प्राकृतिक खेती में वो सब कुछ है जो किसान को चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: गुणवत्ता पूर्वक उत्पाद मिलेगा, खेती की जो हमारी मिट्टी की बनावट है, मिट्टी में उपजाऊ शक्ति है वो बढ़ जाएगी, उसमें अच्छी बनेगी, उसमें आसानी से हम कृषि कार्य कर सकते हैं। इसके साथ जो है हमारा एक और इसका स्तंभ है जो आच्छादन है कि मल्चिंग करते हैं, ऊपर में एक पत्तों की या जो ऐसे घास फूस होते हैं उसकी एक लहर तय बिछा देते हैं
0: जी, उसके क्या फायदे रहते हैं?
1: उसके फायदे होते हैं, एक तो जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कभी बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी होती नहीं है, तो जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो जो पानी है वो रिस रिस टपक टपक जमीन के भीतर जाता है और जमीन में नमी बनाए रखता है।
0: अच्छा जी।
1: और दूसरा, जब बारिश नहीं होती है तो जमीन के अंतर्गत जो पानी होता है वो छोटी छोटी नालियों के माध्यम से ऊपर आता है, वो जो पौधे की जड़ों को उपलब्ध होता रहता है। इससे केंचुए, जो देसी केंचुए होते हैं, जमीन में काम करते हैं, उनकी गतिविधियां भी बनी रहती हैं, उनको ह्यूमस खाने को मिल जाता है, ऑर्गेनिक मैटर मिल जाता है, और उसमें से जो है वो एक किसान का मित्र बन के काम करते हैं। असंख्य नालियां जो हैं खेती में उसमें जमीन में बनती हैं जिससे कि ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर होता रहता है, जिससे कि पौधों की जड़ों को पोषक तत्वों की उपलब्धता बनी रहती है।
0: बिल्कुल। तो यानी कुल मिलाकर डॉक्टर साहब हम कहें कि हमारे आसपास हमारे परिवेश में जो भी वस्तुएं हैं उसका इस्तेमाल करके हम खेती बाड़ी के अंदर उसका इस्तेमाल करें।
1: जी, इसमें जी हमने विगत, और हमारे एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक रहे हैं महाराष्ट्र से, श्री सुभाष पालेकर जी ने, उन्होंने वर्षों की मेहनत के बाद कुछ इसको स्टैंडर्डाइज किया गया है कि कितनी मात्रा में कौन सा तत्व डालना है, कौन सी वनस्पति कितनी मात्रा में डालनी है, जिससे कि हमारे अग्निअस्त्र, ब्रह्मास्त्र और ये दशपर्णी अर्कों की निर्मित करते हुए हम कीड़ों की रोकथाम भी कर सकते हैं और बीमारियों की रोकथाम भी कर सकते हैं।
0: जी, बहुत बढ़िया। तो देखिए डॉक्टर साहब, बातचीत हमारी रोचकता की ओर बढ़ती जा रही है। जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक खेती पर क्या परिवर्तन पड़ता है?
1: प्राकृतिक खेती जो है जलवायु परिवर्तन को सहने की क्षमता रखती है। प्राकृतिक खेती, अगर हम किसान कोई प्राकृतिक खेती अपना रहा है तो उसमें एक तो जमीन से पोषक तत्वों की उपलब्धता में कोई कमी नहीं आती है।
0: जी।
1: दूसरा जो है जमीन में नमी बनी रहती है। नीचे जो है जब हम मल्चिंग करते हैं तो हमारे बहुत सारे असंख्य माइक्रोब जो है वो नीचे काम करते हैं जो कि पौधे के लिए लाभदायक रहते हैं।
0: अच्छा।
1: दूसरा, जो जो पौधा होता है प्राकृतिक खेती से, उसकी जड़ें विकसित होती हैं, अच्छे से बनी होती हैं और उनमें नीचे से पानी सोखने की क्षमता रहती है।
0: अच्छा।
1: दूसरा, अगर कोई ज्यादा बारिश हो जाए, हमने पाया है कि जब बहुत सारी तूफान या आंधियां आती हैं, प्राकृतिक खेती से जो फसल पैदा होती है वो उनमें ये सारी चीजें सहन करने की क्षमता होती है, वो नहीं गिरते हैं।
0: अच्छा।
1: इसी के साथ जो उत्पाद में अच्छी रहता है, जब भी कोई जलवायु परिवर्तन होता है, जलवायु परिवर्तन के मायने है कि समय पर बारिश ना होना, लेट बहुत ज्यादा बारिश हो जाना, ऐसे कोई झंझावत या तूफान आ जाना, इन सभी चीजों से जो प्राकृतिक खेती के अंतर्गत फसलें जो तैयार हो रही होती हैं उनमें रसायन विधि से जो हमारी रासायनिक खेती है उसके वनस्पत उससे हम तुलना करें तो प्राकृतिक खेती में जलवायु परिवर्तन में और अच्छा करने की क्षमता है।
0: जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर साहब, मेरा अगला प्रश्न आपसे रहेगा कि अगर हम अपने प्रदेश की बात करें तो हमारे प्रदेश में प्राकृतिक खेती की कुछ संभावनाएं हैं क्या?
1: जी जी जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया। हमारे हिमाचल प्रदेश में जब हमने ये शुरुआत करी थी प्राकृतिक खेती की, वर्ष 2018 में, तब से लेकर

0: आज तक लगभग 1,80,000 के लगभग किसानों ने इसको कुछ ने आंशिक रूप से कुछ ने पूर्णतः रूप से इसको अपनाया है,
1: अच्छा
0: और एक भी किसान से ऐसी कोई हमें रिपोर्ट नहीं मिली है कि उत्पादन में कमी आई हो। और जो हमारा इसमें क्षेत्रफल है प्राकृतिक खेती के अंतर्गत 29,000 हेक्टेयर के आसपास है।
1: अच्छा
0: इसमें बड़ी रोचक बात यह है कि जो हमारे बागवान ये समझते थे कि बिना रसायन के बागवानी, ज्यादातर सेब की बागवानी नहीं की जा सकती, वहां पर भी हम इसमें ये समझाने में सफल हुए हैं। प्राकृतिक खेती के अंतर्गत जो सेब उत्पादन होता है वो उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है, उसमें कोई कमी नहीं, पैदावार में कमी नहीं होती है, उसमें बीमारियों से लड़ने की ज्यादा क्षमता होती है, उसमें पत्ते का गिरना भी कम रहता है, और वो जो पैदावार है, जो उत्पाद है हमारा, बहुत अच्छा, एक किस्म से चमकीला और बहुत बढ़िया रहता है।
1: जी
0: तो लगभग 10,000 से ऊपर जो बागवान है वो भी प्राकृतिक खेती के साथ जुड़े हुए हैं।
1: जी तो डॉक्टर साहब, हमारी जो बातचीत है वो कार्यक्रम में अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है, तो ऐसे में आप हमारे किसानों के लिए कुछ कहेंगे?
0: जी जी जी जरूर जी, हमारे जो श्रोता किसान भाई बहन या बागवान भाई बहन हमें सुन रहे हैं, मेरी उनसे एक प्रार्थना है और उनसे ये प्राकृतिक खेती के बारे में पूरी जानकारी लें। हम 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर भी किसान के खेतों में जाकर लगाते हैं, उसमें वो भाग लें और इसमें जो विभिन्न उनके मन में जो भी प्रश्न है या कुछ भी शंकाएं हैं वो सारे का सारा उनका निपटारा वहां पर हो जाएगा।
1: जी बिल्कुल,
0: हम किसानों के लिए, जहां जो किसान अच्छा कर रहा है प्राकृतिक खेती में, उसके जाकर उसके खेतों में जाकर देखें, उससे सीखें कि उसने विभिन्न बीमारियां, रोकथाम, कीड़ों का रोकथाम कैसे किया है, उससे भी बातचीत कर सकते हैं। किसान के द्वारा करते हुए देखकर और भी ज्यादा प्रेरणा मिलती है। मेरा उनसे सुझाव है कि जरूर इस तरह से आप, हम एक्सपोजर विजिट्स भी कंडक्ट करवाते हैं, हमारे पास साहित्य भी रहता है, किसी को अगर चाहिए, हमारे यूट्यूब के में भी है, सारी सारी लगी हुई है, किसानों की सफलता की कहानियां भी हमने बनाकर रखी हुई है।
1: तो डॉक्टर रविंद्र जसरोटिया, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक खेती पर आपने हमारे सभी श्रोताओं को बहुत बढ़िया जानकारी मुहैया करवाई, ये सब जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।
0: मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
2: अभी आपने सुनी जानकारीपूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण, जिसका विषय था जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक खेती। डॉक्टर रविंद्र जसरोटिया से बातचीत कर रहे थे लेखराम। हम आशा करते हैं कि आप इस जानकारी का पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। तो अश्विनी जी, अब कार्यक्रम में पुनः समय हो चला है मनोरंजन का, आइए सुनते हैं लेखराम पाल की आवाज में ये प्यारा सा लोकगीत।

0: किसान भाइयों, लेखराम पाल की आवाज में अभी आपने सुना ये पहाड़ी लोकगीत। अब इसी लोकगीत के साथ कार्यक्रम का समय भी संपन्न हो चला है, आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार।
2: FM शिमला पर अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत कार्यक्रम। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मेरी वे पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। 7:45 होने को हैं। अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ ही FM बैंड 103.7 MHz, मोबाइल ऐप और रेडियो की DTH सेवा पर भी सुना जा सकता है।
1: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है, वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में, सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
2: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, प्रदेश के चार नगर निगमों सहित 51 शहरी निकायों

0: चुनाव प्रचार जोरों पर, कांग्रेस व भाजपा ने अपनी अपनी जीत का किया दावा। नगर निगम व शहरी निकाय चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी, 360,800 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे प्रयोग। राज्य सरकार द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे एंटी चिट्टा अभियान के सकारात्मक परिणाम आए सामने, एनसीबी ने सरकार से मांगा विवरण। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा, प्रधानमंत्री के आह्वान पर 140 करोड़ भारतीय हर आवश्यक त्याग व सहयोग के लिए तैयार। और शिमला शहर में सफाई कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों व वेतन बढ़ोतरी को लेकर कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के चार नगर निगमों मंडी, धर्मशाला, पालमपुर व सोलन और स्थानीय शहरी निकायों में 17 मई को मतदान होगा। ऐसे में इन चुनावों के लिए प्रचार अभियान चरम पर है। नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने आज पालमपुर नगर निगम के विभिन्न वार्डो में नुक्कड़ सभाओं व रोड शो के जरिए मतदाताओं से कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील की। इधर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने सोलन नगर निगम चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस की जीत का दावा किया। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि नगर निगम चुनावों में कांग्रेस को जनता का अच्छा समर्थन मिल रहा है। शिमला में आज उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बीते 3 वर्षों के कार्यकाल के दौरान कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जो हिमाचल के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।
1: भाजपा के पास विपक्ष में कोई मुद्दा सरकार के खिलाफ नहीं, न कोई भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ, न कोई बड़ा मुद्दा। विपक्ष हिमाचल प्रदेश में मुद्दाहीन। ये चार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो चुनाव है, ये पार्टी से मतलब है, इसको उस तरह से लड़ा जा, पार्टी के लोग सभी लोग इसमें काम कर, और हमें उम्मीद भी है हिमाचल प्रदेश के लोगों का समर्थन पहले भी मिला है, और जब सरकार गिराने का प्रयास किया गया उस वक्त भी द्वारा लोगों ने कांग्रेस सरकार को मजबूत किया, और अब भी लोगों का समर्थन मिलेगा। वोटों की दृष्टि से हमारी सरकार काम नहीं कर, हम हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए काम करना, और वो अच्छे परिणाम आ रहे हैं।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज नगर निगम मंडी चुनावों के तहत राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता व विधायक राकेश जम्वाल ने आरोप पत्र जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में मंडी की जनता को केवल उपेक्षा, अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। राकेश जम्वाल ने कहा कि कांग्रेस ने मंडी के प्रति हमेशा सौतेला रवैया अपनाया है और 2025 की आपदा के दौरान ये पूरी तरह उजागर हो गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि मंडी नगर निगम चुनाव में जनता कांग्रेस सरकार को करारा जवाब देगी और भाजपा को अपना आशीर्वाद देगी। पूर्व मंत्री व विधायक विक्रम ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि धर्मशाला में विकास कार्य ठप पड़े हैं और लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम क्षेत्र में लोगों पर लगातार टैक्स का बोझ बढ़ाया जा रहा है और निगम की संपत्तियों पर कांग्रेस पार्षदों व वर्तमान मेयर द्वारा कब्जा किया गया है। विक्रम ठाकुर ने दावा किया कि इन चुनावों में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलेगा और जनता कांग्रेस को करारा जवाब देगी।
2: नगर निगम की जो संपत्ति है उसके ऊपर किस प्रकार से कब्जा किया हुआ है, किस प्रकार से उसके ऊपर भ्रष्टाचार किया हुआ है, और उस घोटाले के कारण से सरकारी खजाने के ऊपर लगभग 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो है उसका नुकसान हुआ है। धर्मशाला नगर निगम में लोकतांत्रिक कामकाज लगभग ठप हो गया है। 2 वर्षों से सदन की कोई बैठक नहीं हुई और जो महत्वपूर्ण मुद्दे विकास से जुड़े हुए हैं और जनता की जो शिकायतें हैं वो लंबे समय से लंबित पड़ी हुई हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी यहां पे अपना परचम लहराएगी।
0: प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष विपिन परमार ने पालमपुर नगर निगम चुनावों को लेकर कांग्रेस सरकार व कांग्रेस शासित नगर निगम पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पालमपुर नगर निगम भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, प्रशासनिक लापरवाही और जनता से धोखे का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस सरकार के कुशासन का पूरा सच जनता के समक्ष लाएगी। इस बीच भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन और नए दौर के नाम पर जनता को गुमराह किया। उन्होंने आज नाहन में कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में विकास कार्य पूरी तरह ठप हैं।
3: जिन वादों को करके ये सरकार सत्ता में आई थी, 3.5 वर्ष बीत गए लेकिन एक भी वायदा ये पूरा नहीं कर। ये बात करते थे नए दौर की, ये बात करते थे व्यवस्था परिवर्तन की, ना वो नया

0: दौर आया ना व्यवस्था परिवर्तन हुआ अपितु व्यवस्था का पतन जरूर हो गया। तो झूठे वायदे इन्होंने किए थे, वो चाहे महिलाओं से किया गया 1500 का वायदा था, या युवाओं से किया गया 1,00,000 सरकारी नौकरी देने का वायदा था, या हर घर को 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात थी, लेकिन ये वायदे 3.5 वर्षों में हवा हवाई हो गए।
1: प्रदेश के 4 नगर निगमों सोलन, पालमपुर, मंडी व धर्मशाला सहित 25 नगर परिषदों व 22 नगर पंचायतों में 17 मई को वोट डाले जाएंगे। मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नगर परिषद और नगर पंचायतों के मतों की गणना मतदान वाले दिन 17 मई को ही की जाएगी, जबकि चारों नगर निगमों के मतों की गणना 31 मई को होगी। इन 51 शहरी निकायों में कुल 360,859 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव के लिए 589 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। मतदान को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे एंटी चिट्टा अभियान के तहत पुलिस की निगरानी बढ़ाई गई है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश में चिट्टे की समस्या से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने के निर्देश दिए और इसके तहत चिट्टे में संलिप्त अपराधियों के साथ साथ पंचायत स्तर पर मैपिंग की गई है। सरकार का एंटी चिट्टा मॉडल जहाँ अपराधियों पर नकेल कसने में कामयाब हो रहा है, वहीं अन्य राज्यों में भी इस मॉडल की चर्चा होने लगी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय ने इस बारे में हिमाचल प्रदेश से रिपोर्ट मांगी है। राज्य सरकार चिट्टा जैसे नशे से निपटने और चिट्टा तस्करी का समूल नाश करने के लिए जल्द ही एंटी चिट्टा अभियान का दूसरा चरण शुरू करने जा रही है। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय आह्वान का समर्थन करते हुए कहा है कि 140 करोड़ भारतीय प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं और राष्ट्रहित में हर आवश्यक त्याग व सहयोग के लिए तैयार हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील पूरी तरह स्वैच्छिक, एहतियाती व दूरदर्शी सोच पर आधारित है और देश में किसी भी आवश्यक वस्तु की कोई कमी नहीं है। हर्ष महाजन ने कहा कि विपक्षी दल इस संबंध में भ्रम और डर फैलाने की राजनीति कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री द्वारा की गई इस अपील से देश की अर्थव्यवस्था और संसाधनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। शिमला शहर में चल रहे स्वच्छता सर्वेक्षण के बीच सफाई कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों और वेतन बढ़ोतरी को लेकर कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी व समान कानून लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
2: सफाई कर्मचारियों का कहना है कि कर्मचारियों को मिलने वाली हर साल की 10% वेतन वृद्धि इस बार रोक दी गई है, जिसे मई महीने की सैलरी के साथ बहाल करने की कर्मचारी मांग कर रहे हैं। हड़ताल की चेतावनी के बाद नगर निगम शिमला के आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने कहा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान हड़ताल पर जाना उचित नहीं है और इससे शहर में सफाई व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। यदि कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो प्रशासन एस्मा के तहत कार्रवाई करेगा। अदालत के आदेशों के तहत शहर की सफाई व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है, लेकिन कर्मचारियों ने साफ कहा है वे पिछले 18 वर्षों से शिमला शहर को स्वच्छ रखने में योगदान दे रहे हैं, लेकिन अब उन्हें डराया और दबाया जा रहा है। यदि मांगे नहीं मानी गई तो कर्मचारी भूख हड़ताल तक का रास्ता भी अपना सकते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
1: राज्यसभा सांसद प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कालखंड में भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है। भाजपा द्वारा आज सोलन में आयोजित प्रबुद्ध जन संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में हुआ अभूतपूर्व विकास और भारत की सुदृढ़ होती अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया के साथ मजबूती से प्रतिस्पर्धा कर रही है। डॉ सिकंदर कुमार ने उपस्थित प्रबुद्ध वर्ग से मोदी सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान भी किया। उन्होंने नगर निगम सोलन में होने वाले चुनाव में भाजपा की जीत का दावा भी किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 4 नगर निगमों सहित 51 शहरी निकायों में चुनाव प्रचार जोरों पर। कांग्रेस व भाजपा ने अपनी अपनी जीत का किया दावा। नगर निगम व शहरी निकाय चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी। 360,800 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे प्रयोग। राज्य सरकार द्वारा नशे

0: के खिलाफ चलाए जा रहे एंटी चिट्टा अभियान के सकारात्मक परिणाम आए सामने, एनसीबी ने सरकार से मांगा विवरण। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा, प्रधानमंत्री के आह्वान पर 140 करोड़ भारतीय हर आवश्यक त्याग व सहयोग के लिए तैयार। और शिमला शहर में सफाई कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों व वेतन बढ़ोतरी को लेकर कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार।

मोबाइल ऐप और रेडियो की डीटीएच सेवा पर भी सुना गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव आरएफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुने देशगान।

0: देशगान अभी आपने सुना, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
1: आप ट्यूनिंग है 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला के साथ। समय हो गया है भूले बिसरे गीतों का।

0: जी दोस्तों, भूले बिसरे गीत हिंदी सिनेमा के वे सुनहरे सदाबहार और क्लासिक गाने हैं जिन्हें अक्सर भुला दिया जाता है, लेकिन जब इन्हें हम सुनते हैं तो पुरानी यादें, पुराना संगीत फिर से जीवंत हो उठता है।
1: मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे हैं, झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन झनन पे विराजे हैं। जन नन जन नन जन नन नन नन मोर मुकुट सर कानों में कुंडल कर में मुरलिया

इतने में सूरज डूब गया, इतने में सूरज डूब गया, राधा की पायल जाग उठी। दोनों में कला की लाग उठी, धा धा तय कै थूंगा, धागे दे कैता धा धिनता।

आप ट्यून इन है 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला पर और प्रोग्राम चल रहा है भूले बिसरे गीत। अभी आपने सुना झनक झनक पायल बाजे, आवाज़ें थी लता मंगेशकर और मन्ना डे की, हसरत जयपुरी के बोल थे और वसंत देसाई का संगीत।

0: ಗದಗಿನ ಸಾ ಗದಗಿನ ಸಾ ಗದಗಿನ ಸಾ.
1: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
2: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का.
1: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत. आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल. सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें.
2: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा. पहले मतदान, फिर बाकी काम. राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी.

आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर। भूले बिसरे गीत पुरानी दौर के जो सामाजिक, पारिवारिक और सांस्कृतिक मूल्यों का एक प्रतीक है, और जब हम इन्हें सुनते हैं तो पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती है, एक सुखद यादें हम जो है फील करते हैं। आइए अब सुनाते हैं आपको अगला गीत। फिल्म है शी 420, आवाज़ें हैं मनाडे और साथियों की, शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत। सुनते रहें, मुस्कुराते रहें, बने रहें 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला के संग।

0: आप ट्यून इन है 103.7 एफएम शिमला पर।
1: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
2: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
3: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज इस बार।

0: कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
1: राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: FM शिमला पर आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत। भूले बिसरे गीत जिन्हें हम भूल चुके हैं, अनसुने पुराने लेकिन मधुर गानों का खजाना है ये। जी हाँ, अगला गीत आपकी नज़र फिल्म है उड़न खटोला। आवाज़ है लता मंगेशकर की, शकील बदायूनी के बोल हैं और नौशाद का संगीत।

0: आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत FM शिमला पर।
1: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में, सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
2: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान, राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: भूले बिसरे गीत में अगला गीत आपकी नजर फिल्म है यास्मीन, आवाज तलत महमूद की है, सी रामचंद्रा का संगीत और सी रामचंद्रा का ही जो है संगीत और इन कंपोज दोनों किया है।

0: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है, वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
1: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर। भूले बिसरे गीत केवल गाने नहीं हैं, बल्कि एक युग की यादें हैं जो तेज दौड़ भाग वाली जिंदगी में हमें सुकून पहुंचाते हैं।

0: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
1: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
2: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
3: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: FM शिमला पर आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति फिल्म है मयूर पंख। आवाजें हैं लता मंगेशकर और आशा भोसले की, शंकर जयकिशन का संगीत है।

0: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है, वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में, सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
1: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आप ट्यूनिंग है 103.7 मेगाहर्ट्ज FM शिमला पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म है रंगीला, आवाज आशा भोसले की है, बोल महबूब के और संगीत AR रहमान का।

0: आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला।
1: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
2: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
1: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
2: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: आप ट्यून इन हैं 103।

107.7 मेगाहर्ट्स एफएम शिमला पर और प्रोग्राम चल रहा है फिल्म संगीत। अगला गीत आपकी नजर, फिल्म है फिर तेरी कहानी याद आई। आवाजें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की, बोल हैं समीर के और संगीत अन्नू मलिक का। सुनते रहें, मुस्कुराते रहें, बने रहें 103.7 मेगाहर्ट्स एफएम शिमला के साथ।

0: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
1: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
2: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
3: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला पर। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति आपकी नजर फिल्म है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। आवाज उदित नारायण की, आनंद बख्शी के बोल हैं और जतिन ललित का संगीत।

आप ट्यून इन हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे 8:45 पर समाचार संध्या और 9 बजे न्यूज एट 9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। होर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार

0: पर निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: भारत के यूए को एक्सपोर्ट्स अब 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूए से भारत आने वाली सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
2: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर उनसे संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने VD सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को CPM के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर उन्हें SP वेलुमड़ी के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 AIADMK विधायकों ने OS मनियन द्वारा जारी व्हिप की अवहेलना करते हुए TV के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेसवार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
4: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और

0: एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
2: एन इंडियन डो
3: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
2: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर एक वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।
4: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
5: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे।
4: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षित कुमार वैद्यान।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज बीजिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमरीका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
2: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
1: इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को

0: आए हैं, हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
1: इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। श्री रूबियो ने ताइवान को लेकर चीन की धमकी पर कोई जवाब देने से परहेज किया है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव और संघर्ष हो सकता है। ये टिप्पणियां दोनों देशों के बीच ईरान संघर्ष, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे व्यापक मुद्दों पर हुई बातचीत के दौरान आई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says under India's chairmanship this year BRICS to aim for multilateralism and more inclusive world order. Election Commission announces Special Intensive Division Phase 3 to be conducted across 16 states and 3 union territories. In Keralam, Congress leader V.D. Satishan meets governor to stake claim to form government. In Uttar Pradesh, over 70 people killed due to rain, storms and lightning in the last 24 hours. U.S. President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping hold talks in Beijing, stress on opening of Strait of Hormuz. And in Asian Senior Weightlifting Championships, Ajit Narayan clinches double bronze in men's 71 kg at Gandhinagar, Gujarat. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience,

आप ट्यून इन हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर विवेक शर्मा के साथ। आइए अब सुनते हैं एक फिल्म से, और आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे फिल्म बॉम्बे की। जी, ये फिल्म रिलीज हुई 1995 में। इसके मुख्य कलाकार अरविंद स्वामी और मनीषा कोइराला है। अरविंद स्वामी जो कि शेखर नारायणन की भूमिका निभा रहे हैं, मनीषा कोइराला शैला बानो बनी है, प्रकाश राज जो कि कुमार का किरदार निभा रहे हैं, नस्सर शेखर के पिता हैं। इसमें टीनू आनंद और सोनाली बिंद्रे भी अपनी भूमिका निभा रही हैं। ये फिल्म मणिरत्नम द्वारा निर्देशित क्लासिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। ये कहानी हिंदू युवक और मुस्लिम युवती की प्रेम कहानी पर आधारित है, जो परिवार के विरोध के बाद शादी कर लेते हैं। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं। जी, फिल्म बॉम्बे है, क्योंकि बात ही हम बॉम्बे की कर रहे हैं।

0: जी आज हम बात कर रहे हैं फिल्म बॉम्बे की। एआर रहमान का उत्कृष्ट संगीत जो है इस फिल्म में है। इस फिल्म का म्यूजिक एआर रहमान के करियर के बेहतरीन कार्यों में से एक है। इसके गीत जैसे तू ही रे, हम्मा हम्मा, कुची कुची आज भी लोगों की जुबान पर है। फिल्म नफरत और विभाजन से ऊपर उठकर मानवीय मूल्यों, प्रेम और शांति का संदेश देती है। ये बताती है कि किसी भी धर्म के ऊपर इंसानियत और आपसी भाईचारा है। शेखर नारायणन, जो एक हिंदू पत्रकार हैं, को अपने गांव में शैला बानो मुस्लिम लड़के से प्यार हो जाता है। दोनों के परिवार इस रिश्ते के सख्त खिलाफ हैं। परिवार की इच्छा के विरुद्ध जाकर दोनों शादी कर लेते हैं और फिर वो बॉम्बे चले जाते हैं और वहाँ खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं।
1: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है, वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
2: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
2: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
1: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
2: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: जी कार्यक्रम चल रहा है एक फिल्म से और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म बॉम्बे की।

0: जी आज हम बात कर रहे हैं फिल्म बॉम्बे की। अरविंद स्वामी जो कि शेखर की भूमिका में हैं और मनीषा कोइराला जो कि शैला की भूमिका में हैं, मुख्य किरदारों में उन्होंने शानदार और भावनात्मक अभिनय किया है। मूल रूप में ये तमिल में बनी इस फिल्म को हिंदी में डब किया गया था और इसने बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त सफलता हासिल की।
1: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
2: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
3: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
4: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: जी तो आज हम बात कर रहे हैं फिल्म बॉम्बे की, जो कि 1995 में रिलीज़ हुई और बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इस फिल्म के जो गाने हैं, सभी गाने जो है काफ़ी हिट हुए हैं।

तो आज प्रोग्राम में इतना ही। आप ट्यून इन है 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर। आइए अब सुनते हैं दिल की आवाज भी सुन।

0: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है, वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में, सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
1: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान, राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: प्रोग्राम का पहला गीत आपको हम सुनवा रहे हैं, फिल्म है बंटी और बबली। आवाजें हैं सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की, गुलजार के बोल हैं और शंकर एहसान लॉय का संगीत। जी, ये है एफएम शिमला का अंदाज और एफएम शिमला की आवाज खास आपके लिए। आप सुन रहे हैं दिल की आवाज भी सुन।

0: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
1: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
0: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
1: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्स एफएम शिमला, और अभी आपने गीत सुना फिल्म परनीता से। जी, आवाजें थी चित्रा और सवानंद की, बोल सवानंद के थे और संगीत शांतनु मोइत्रा का।
1: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
2: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
3: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
4: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: आप सुन रहे हैं दिल की आवाज भी सुन, 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला पर। आइए सुनते हैं फिल्म है क्यों की। आवाज है कुणाल गांजावाला की, समीर के बोल हैं हिमेश रेशमिया का, संगीत।

0: आप सुन रहे हैं दिल की आवाज भी सुन 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर।
1: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में, सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
2: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान, राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: दिल की आवाज भी सुन रहे हैं आप एफएम शिमला पर। अगला गीत आपकी नजर, फिल्म है आशिक बनाया आपने। आवाजें हैं हिमेश रेशमिया, कृष्णा और आहिर की, समीर के बोल हैं और संगीत हिमेश रेशमिया का।

0: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
1: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
0: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
1: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: दिल की आवाज भी सुन कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति फिल्म है चॉकलेट। आवाजें सुनिधि चौहान और कैलाश खेर की है, देव कोहली के बोल हैं और प्रीतम का संगीत।

0: दिल की आवाज भी सुन प्रोग्राम में आज इतना ही।
1: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
2: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
3: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
4: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है, वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
3: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

आप ट्यून इन हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला के साथ। समय हो गया है गजलों का, आइए सुनते हैं गुलाम अली को।

0: अगर युवा ही चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा?
1: अब वक्त है मोबाइल से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचने का।
0: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में हर युवा बनेगा बदलाव की ताकत। आपका एक वोट तय करेगा आपके शहर का आने वाला कल। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जरूर करें।
1: युवा जागेगा, हिमाचल आगे बढ़ेगा। पहले मतदान, फिर बाकी काम। राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

ये सुहाना सफर चल रहा है गजलों का 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर। आइए अब सुनते हैं कमार सिंह को।

0: एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं गजलें।
1: दादाजी, हमारा शहर और बेहतर कब बनेगा?
2: जब हर घर से एक वोट निकलेगा बेटा।
3: 17 मई को नगर निकाय चुनाव में अपने शहर के भविष्य के लिए 100% मतदान का संकल्प ले। एक वोट, साफ शहर, बेहतर सड़क, पानी और विकास की नई उम्मीद। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने मतदान केंद्र जरूर जाएं। घर घर से निकलेगी आवाज, इस बार कोई नहीं छूटेगा। 100% मतदान, मजबूत हिमाचल की पहचान।
4: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: आप ट्यूनिंग है 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला के साथ, सुन रहे हैं गजलें। ये गजलें जो बयां करती है कुछ कहानी, कुछ सुनी, कुछ अनसुनी, मोहब्बत की बातें, मोहब्बत की मुलाकातें।

0: कुछ लोग वोट की कीमत पैसों, शराब या लालच से लगाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता जानती है वोट बिकता नहीं, वोट भविष्य बनाता है। 17 मई को नगर निकाय चुनाव में ना किसी दबाव में आए, ना किसी प्रलोभन में, सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने विवेक और अधिकार से मतदान करें।
1: स्वच्छ सोच, निष्पक्ष मतदान, राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: FM शिमला पर अभी आप सुन रहे थे गजलें, आइए अब सुनते हैं सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे। अभी आपने सुना फिल्म जब जब फूल खिले का गीत, आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की, बोल थे आनंद बख्शी के, और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का।

जी, सदाबहार नगमों की बात करें तो ये कई पीढ़ियों से लोकप्रिय हैं और जो आज भी लोगों को पसंद आते हैं। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हिमालय की गोद में, आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और उषा और साथियों की, आनंद बख्शी के बोल हैं और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

FM शिमला 103.7 MHz पर आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे। अगला गीत आपकी नज़र फिल्म है काजल, आवाज़ है आशा भोसले की, साहिर के बोल हैं और रवि का संगीत।

आप सुन रहे हैं 103.7 FM पर सदाबहार नगमे। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म है दो बदन, आवाज लता मंगेशकर की, बोल हैं शकील बदायूनी के और संगीत रवि का।

आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे 103.7 एफएम शिमला पर। अगला गीत आपकी नजर फिल्म है तीसरी कसम। आवाज है मुकेश की, बोल हैं हसरत जयपुरी के और संगीत शंकर जयकिशन का।

आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति है, फिल्म है लव इन टोक्यो। आवाज लता मंगेशकर की है, शैलेंद्र के बोल हैं और शंकर जयकिशन का संगीत।

आप ट्यून इन है 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला के साथ। 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालय प्रेसवार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के 3रे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।

0: केरला में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में वीडी सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और केरला में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि चीन और अमरीका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव हो सकता है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम में आए अचानक बदलाव ने उधर उत्तर प्रदेश में भी भारी तबाही मचाई। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई। और खेलों में गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi today, Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS foreign ministers' meeting, which is being held in New Delhi. Earlier, in his opening remarks at the BRICS Foreign Ministers meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
2: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
1: The theme of the event is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. It draws inspiration from Prime Minister Narendra Modi's Humanity First and People-Centric Vision for BRICS. In this session themed on BRICS at 20, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar highlighted that BRICS has expanded its agenda and membership in response to changing global realities while remaining focused on people-centric development and practical cooperation. The minister said BRICS is strong because it is independent and includes diverse countries. He said the group supports change and reforms, reflects a multipolar world, helps countries reduce the risks by expanding partnerships, and believes in mutual respect and equal rights for all nations. Prime Minister Narendra Modi will arrive in United Arab Emirates capital Abu Dhabi tomorrow on the first leg of his five-nation visit. He will later visit the Netherlands, Sweden, Norway and Italy. Our West Asia correspondent reports India and the UAE are